0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड, अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: सुप्रभात, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपके शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। और सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? आप दिल्ली रोड जा रहे हैं या स्टेशन रोड, या आप जा रहे हैं गागन, या आप जा रहे हैं पागवाड़ी की साइड? मैं कह रहा हूँ आप कहीं भी जा रहे हैं, आप जहाँ भी जा रहे हैं ना, इस स्टेशन को आपको सुनकर बहुत आनंद आने वाला है। आनंद के साथ है आप, और सुबह सुबह का जो समय होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। और आज का इस सुबह का जो समय है और भी स्पेशल है, क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने स्टूडियो में लेकर आ गया हूँ आपकी फिटनेस का राज। वो कौन है? बिल्कुल मेरे साथ योगा एक्सपर्ट रुचि मैदान जी स्टूडियो में मौजूद है। हमने उनको आमंत्रित किया है आपके लिए स्पेशल। सुबह सुबह मैंने उनको परेशान कर दिया है, हालांकि उनकी क्लासेस होती हैं, बट स्पेशली वो मेरे लिए आई हैं। आई एम सो हैप्पी। तो मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में हमारे एफएम मुरादाबाद के बिंदास मॉर्निंग प्रोग्राम में। कैसी है रुचि जी आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
2: हाँ, वो बिल्कुल आपको देख के भी लग रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह सुबह जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वो अपने दिन की शुरुआत में कौन कौन से योगा की एक्सरसाइज को ऐड कर सकते हैं?
3: देखिए, पहले जैसे आपको बताया था कि सूक्ष्म व्यायाम को हम अपनी एक्सरसाइज में, हम अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी की सारी स्टिफनेस दूर हो जाती है और हम अपने डेली रूटीन के काम आराम से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा समय भी ना हो तो हम 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का सूक्ष्म व्यायाम करें और उससे हमारी बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। बाकी जैसे आप कहीं ड्राइविंग पे हैं या फिर ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप आराम से लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। अगर हम अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाते हैं तो भी हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है और हमारी पूरी दिनचर्या अच्छे से बीतती है। तो आप गाड़ी में बैठे बैठे आप कुछ तो नहीं कर सकते, तो अपनी श्वासों से कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हम कभी अपनी श्वासों पे ध्यान नहीं देते।
2: बिल्कुल, एग्जैक्टली।
3: तो जैसे जिन श्वासों से हमारा पूरा जीवन चल रहा है, जो श्वासें हमारे लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उन पे कभी अवेयर नहीं होते, उन पे कभी ध्यान नहीं देते। तो हम लॉन्ग एंड डीप इनहेल और एक्सहेल करेंगे अगर हम ड्राइविंग करते टाइम, तो हमारा माइंड भी बैलेंस रहेगा, फोकस्ड रहेगा, और हमारी ड्राइविंग भी अच्छी रहेगी, हम अपने जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे।
2: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया मैम। और इसके अलावा सुबह सुबह और कौन कौन सी चीजें हैं, क्योंकि आजकल लाइफ बड़ी सुपर फास्ट हो गई है, बहुत ही लोगों को जल्दी रहती है हर चीज की, तो एक्सरसाइज में भी जल्दी होती है, तो क्या योगा करते टाइम भी हमें जल्दी मचानी चाहिए, बड़ी शांति के साथ करना चाहिए?
3: देखिए, हमें कोई भी एक्सरसाइज और कोई भी आसन हमें कभी भी जल्दी में नहीं करना चाहिए। अगर दो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो आप बिल्कुल नॉर्मल होके करें, ऐसा नहीं है कि आप उसको जल्दीबाजी में करें, क्योंकि जल्दी करने से उसमें प्रॉब्लम हो सकती है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और इन चीजों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम आपको चाहिए,
3: टाइम तो होना ही चाहिए।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो ओनली 15 मिनट्स कर लें। उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम के बाद सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हैं, बाद में अपने रिलैक्सेशन के लिए आप मरकट आसन कर सकते हैं, तो जो बहुत पावरफुल है उससे आपको कोई प्रॉब्लम।
2: कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो सुबह सुबह हम जरूर अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं और वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है?
3: देखिए, मुद्राएं में तो ये है कि आप ज्ञान मुद्रा होती है,
2: ठीक है,
3: तो उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से हमारा माइंड फोकस्ड रहता है और माइंड बैलेंस रहता है, वो हम ज्ञान मुद्रा हमारा उसमें ध्यान भी लग जाता है। हम अपनी जब लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा को लेकर चल सकते हैं, तो उससे हमारा माइंड फोकस्ड रहता है।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करके
3: मैं आपको एक मुद्रा और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है,
2: प्लीज,
3: और सबके लिए बहुत नेसेसरी है, वो बताना चाहती हूँ, वो है वायु मुद्रा।
2: वायु मुद्रा,
3: तो वायु मुद्रा से जैसे हमारी बॉडी में पेन्स होते हैं, जो भी किसी को कोई भी पेन्स है, हेडेक है, सियाटिका है, स्लिप डिस्क है, कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी में पेन है, तो अगर हम वायु मुद्रा 15 मिनट्स के लिए लगा लें तो हमारी बॉडी हील होने लगती है और हमारी बॉडी के पेन्स चले जाते हैं।
2: वाओ, क्या बात है, ये तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज भी है कि आप मतलब इन चीजों से भी अपने आप को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। स्ट्रेस का कितना जो है योगा से बेनिफिट होता है?
3: देखिए, स्ट्रेस का तो 100% बेनिफिट होता है।
2: ओके।
3: अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं
2: जी,
3: तो उससे भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट्स पे के लिए अवेयर होते हैं और आपका स्ट्रेस योग करने से अपने आप ही चला जाता है। आप आधा घंटा योग करके देखें, आपका स्ट्रेस एकदम से ही गायब हो जाएगा। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
2: वाओ, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच। सुबह सुबह आपने हमारे सुनने वालों को तमाम जानकारियां दी, आपने मोटिवेट किया। मैं जाते जाते,
3: मेडिटेशन तो है ही भाई आपको स्ट्रेस से दूर करने
2: के। कई लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं कि हमारा ध्यान बहुत भटकता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बड़े सारे ख्याल आते हैं और मन जो है लगता ही नहीं स्थिरता के साथ।
3: देखिए, मेडिटेशन करने का एक तरीका होता है जो हम गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं,
2: ओके,
3: उसमें डेफिनेटली 100% ध्यान लग जाता है,
2: ओके,
3: और बैठे बैठे अपनी मैट पे जिस भी जगह पर जाना चाहे वहाँ जा सकते हैं।
2: क्या बात,
3: हमें कहीं मंदिर और गुरुद्वारों में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो अपनी मैट पे ही बैठ के मेडिटेशन आराम से कर सकते हैं।
2: अरे वाह, इससे अच्छी बात तो फिर कुछ हो ही नहीं सकती है। रुचि मैम, थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आप आए और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत ही बेहतरीन लाजवाब जानकारियां दी, स्पेशली हेल्थ को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगी जाते जाते, कोई संदेश आप देना चाहें?
3: मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि हमें अपनी दिनचर्या में, जैसे हम अपने डेली और अपने कार्य करते हैं, वैसे ही हमें योग को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपने दैनिक कार्य आराम से कर पाएंगे। इसमें यह भी बोलना चाहती हूँ, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करते हुए, कि ये भगवत गीता में भी बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि योगा कर्मसु कौशलम।
2: अरे वाह,
3: योग करने से हमारे कर्मों में कुशलता आती है।
2: क्या बात है।
3: तो अगर हमने योग कर लिया और उसके बाद जब हम अपना कोई भी वर्क करेंगे, ये मेरा खुद अपनाया हुआ, ये देखा हुआ है सभी के प्रति, मैंने जो भी लोग मेरे यहाँ आते हैं तो उनके कार्यों में अपने आप ही कुशलता आने लगती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उनके काम सारे अच्छे होने लगते।
2: ये तो खैर मुझे भी नहीं पता था मैम, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बता दी। अच्छा मैम, आप एक विमेन हैं और एक विमेन के लिए इतनी सारी चीजें करना, इट्स नॉट इजी, है ना?
3: Yes,
2: हर किसी के पीछे एक इंसान का हाथ तो होता है जब वो सक्सेसफुल होता है। आज आपको इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है, आपने शेयर की हमारे सुनने वालों के साथ, तो मतलब इसके पीछे किसका क्रेडिट है और क्या मतलब आपको कभी घर से कैसा सपोर्ट रहा है आपका?
3: देखिए, मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है।
2: अरे वाह, क्या नाम है सर?
3: मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर मनीष मदान।
2: अरे वाह, क्या बात है।
3: आरसी मदान गैसेज एंड क्रॉकरीज के मालिक है वो।
2: अरे वाह,
3: तो उनका बहुत कोऑपरेशन रहता है मेरा योगा। उनका पहले उनका इंटरेस्ट रहता था कि मैं उनके आउटलेट्स पर बैठूं, शोरूम पर उनका साथ दूं, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया कि हाँ मेरा इंटरेस्ट योग की तरफ ज्यादा है, उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया।
2: लवली।
3: और जब मैं अपनी स्टडीज भी कर रही थी, जब एक्चुअली मैंने आफ्टर मैरिज अपनी स्टडीज कम्प्लीट की थी योग की, तो उन्होंने मुझे काफी कोऑपरेट किया।
2: नवली, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है।
3: सुबह योगा भी करवाती हूँ, योगा स्टूडियो के लिए। तो मतलब जैसे मैं उनको बोल देती हूँ कि यार आप टाइमिंग पे, मतलब अपनी टाइमिंग्स पे सब चीजें कर लीजिएगा, मुझे जाना है उधर, अपने टाइमिंग्स पे ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ आप कर लीजिएगा। हाँ, तो वो मेरा मतलब
2: कंपनी देती है, सपोर्ट करते हैं। बाकी जो पुरुष सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनिएगा भाई, कल हो सकता है आपकी वाली मैडम भी यहाँ बैठ के आपकी तारीफ करे, तो थोड़े से जो है आप भी लग जाओ बस काम पे, फॉलो करो। बाकी जो महिलाएं और पुरुष आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहती है?
3: यही कहना चाहती हूँ कि अगर हस्बैंड्स अपनी वाइफ को सपोर्ट करें तो उन्हें डेफिनेटली आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
2: ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दी, बहुत ही मजेदार वाली, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए भी बचा के रखते हैं रुचि मैम।
3: हाँ जी,
2: चलिए मैम, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू गाइस, एफएम मुरादाबाद 89.6।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव JK सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
5: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीना।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फिलिस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
6: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
7: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पालाकाड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
8: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ,
3: चावला टायर
1: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
4: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
4: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं सबसे।
2: खासियत क्या
3: है? हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: उससे क्या स्वाद है?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके यहाँ हमेशा बनी। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: तो बहुत धन्यवाद है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा है,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा है वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आँच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है,
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
4: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
5: कॉल 8826213131।

0: గోళ చతుర ఏక పేరైనా యా గోళ బోల్నా యా చతుర బోల్నా.
1: ఇక చతుర నారే.

0: nagagaya.
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली किरण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ का, बहुत देखने
3: हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, लोग हम लोग बहुत अच्छे आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है,
2: तो उससे क्या स्वाद है?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खा के देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके यहाँ हमेशा बनी हुई। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है, तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: तो बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा है, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा है,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है,
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है, तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींच कर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार कारण पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यवसायिक तकनीकों जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रचार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय स्वादों

0: संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
1: सही कहा, यहाँ की चाट वाली खाने सिर्फ खाना नहीं बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
2: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
5: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7066002430।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाओं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

बहुत ही बेहतरीन गाना। 10:17 हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सोनू निगम, सुनिधि चौहान की आवाज।

क्या बात है, तौबा तौबा करते करते मैं भी पहुंच गया हूँ भाई। गर्मी बहुत भयंकर हो रखी है बाहर, और इस गर्मी से बचते बचाते मैं आ गया हूँ आपसे ढेर सारी बातचीत करने आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। वेरी गुड मॉर्निंग, आई नो दैट हर संडे आपको खुशी मिलती है, लेकिन आज मैं आ गया हूँ जी स्टूडियो क्लॉक में 10:17 संडे की सुबह, ढेर सारी बातों का पिटारा लेके आपके बीच पहुंच गया हूँ 7 जून की मॉर्निंग में। थोड़ा सा लेट क्या करें यार, संडे मतलब आराम वाला डे होता है, लेकिन आज मेरा काम वाला डे हो गया, ढेर सारा काम निपटा के पहुंच गया हूँ आपके बीच आपसे मुखातिब होने। आप सभी का इस्तकबाल करते हुए आपसे पूछूंगा, हाँ जी कैसे हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी में, सब फर्स्ट क्लास है, वेरी नाइस यार, एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग बोलते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोग सबसे पहले तो ये बताओ कैसे हाल चाल है आपके, सब बढ़िया है ना, संडे है, रिलैक्स वाला दिन है, आराम से उठ रहे हो, बहुत ही बढ़िया, कुछ हैवी ब्रेकफास्ट बना रहे हो, बनाओ यार, बहुत ही बढ़िया बात है। मैं भी एकदम नहा धोके परफ्यूम मार के आपके बीच आ गया हूँ स्टूडियो में आपसे ढेर सारी बातचीत करने। आज मैं क्या स्पेशल बना के आया हूँ डेफिनेटली आपको बताऊंगा यार, और वो बनाते बनाते ना मेरी हालत भी खस्ता हो गई थी यार। चलो जी, फिलहाल शुरुआत हो गई है आपके फेवरेट प्रोग्राम की, आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। हाँ, माय नेम इज आनंद, डोंट यूज खुशी, बिकॉज खुशी इट्स नॉट हियर टुडे, आई एम हियर, हम आपके साथ हैं, खुशी इट्स नॉट अवेलेबल, तो आरजे आनंद आपके साथ है, आप आनंद को याद

करो, आनंद से बात करो, आनंद ही आनंदित रहो यार। Yes, here we go। आज का बड़ा सुंदर सा एक थॉट में पढ़ रहा था कि भैया वो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर अपने मन में संकल्प ले लो कि मुझे जीतना है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। जब तक आप खुद से ये संकल्प नहीं लेंगे तब तक आपको मैं सच बता रहा हूँ भैया, आपकी जिंदगी में बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता। तो संकल्प लेना है पॉजिटिविटी का, संकल्प लेना है सकारात्मक सोच का, अच्छे विचारों का। जब अच्छी सोच अच्छे विचार अपने अंदर लाओगे, अच्छे विचारों का समावेश करोगे तो यकीन मानिए जिंदगी में रास्ते बनते चले जाएंगे और आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते चले जाओगे। इसीलिए बहुत प्यारी बात कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में ठान लिया कि मैं हार जाऊंगा, मेरे से ना हो पाएगा, तो यकीन मानिए फिर भैया दुनिया का कोई भी आदमी आके, ऊपर वाला भी आके आपके सामने बोलेगा ना बेटा कर ले, तू जीत जाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे। और अगर आपने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं मुझे जीतना ही है, मैं कर ही लूंगा, मुझे भरोसा है अपने आप पे, अपने काम पे भरोसा है, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बस खुद पे भरोसा रखिए, बिलीव इन योरसेल्फ। इसीलिए आगे बढ़िए, संडे की सुबह एक नई एनर्जी के साथ मॉर्निंग आई है, नॉक नॉक कर रही है आपके दरवाजे पर। जरा दरवाजे खोल के तो देखिए भाई साहब। चलिए फिलहाल आप लोग जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट। अगर आप गाड़ी में मुझे सुन रहे हैं तो मैंने कहा जी वेरी गुड मॉर्निंग है संडे की सुबह। आप ढेर सारी बातचीत के लिए आरजे आनंद को ट्यून इन रखिए। आई नो दैट आप लोग अभी कोई भैया ऑटो चला रहे हैं, कोई भैया अभी सब्जी के स्टॉल लगा रहे हैं, कुछ भैया अपने फ्रूट्स के ठेले पे मुझे सुन रहे हैं, तो कुछ भाभी अपने घर में आराम से ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं आपको एक सुपर डुपर वाला गुड मॉर्निंग है। थैंक यू वेरी मच आज की सुबह इतना फैबुलस ये वाइब देने के लिए। आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़िए आज की मॉर्निंग 9837896896। हाँ आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, आपसे बात करो, वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लो, कंजूसी मत किया करो। हाँ वेरी गुड। चलो एक बेहतरीन गाना निकाल रहा हूँ आज की सुबह, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। जरा सी देर में लौट कर आएंगे, फिर आपकी गानों की और आपकी ढेर सारी बातचीत करेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फटाफट से व्हाट्सएप कर दो मुझे मेरे ब्यूटीफुल नंबर पे, नंबर मैंने आपको बता दिया है। एक अच्छे से गाने के साथ करते हैं आज के संडे की शुरुआत। ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ एक बेहतरीन गाने के साथ शुरुआत, लेकिन ये गाना जो मैं प्ले कर रहा हूँ ये भी बहुत ही बढ़िया गाना है। चलो इस गाने को जो है सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना है। संडे है, आनंद आपके साथ है। अब आप कोई बहाना मत बनाओ, सीधा मुझे मैसेज करो 9837896896। वेरी गुड मॉर्निंग। स्टूडियो क्लॉक में 10:21।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्रेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय, न्यूरो केयर सेंटर। संपर्क करें 9548539705।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
6: मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ?
1: अरे तो भाई, चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
6: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: तो भाई साहब, आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
7: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉय, श्रोताज ध्यान दें, जितने भी श्रोताज मुझे सुन रहे हैं, जितने भी मेरे प्यारे लिसनर्स सुन रहे हैं, प्लीज अटेंशन लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 संडे की सुबह। इस गाने के बाद आपसे ढेर सारी बातचीत करूंगा, कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, वॉल्यूम को सेट करके रखो यार।

वेलकम बैक है वंस अगेन, गुड मॉर्निंग है जी, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। झूमने के लिए तो आप मेरे साथ तैयार रहिए इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर, जहां मैं हूं, आप हैं और ढेर सारी बातें हैं। 7 जून की सुबह स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 10:32। जुड़ चुके हैं आप इस वाले स्टेशन पर जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक वाली। ये है आपकी शहर का स्टेशन ऑफ द नेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम। आप सभी का खुली बाहों के साथ वेलकम बैक है जी। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ढेर सारे श्रोता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे प्यारे मित्र जुड़े हैं, इनका नाम है प्रीतम। हाय गुड मॉर्निंग प्रीतम, लिखते हैं आनंद जी, सुबह सुबह रेडियो पर आपको सुना, बड़ा आनंद आया, थैंक यू सो मच आने के लिए। एक मैसेज आ गया है जुल्फी भाई का, लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी, जिंदगी में इंसान को सिर्फ एक चीज पर जो है बिलीव करना चाहिए, वो है अपने आप पर, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर बिलीव रखें, अपने आप पर बिलीव रखें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और उस पे ही काम करते जाएं। क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज वर्ल्ड पोहा डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पोहा दिवस। पोहा भारतीय में, मतलब जो है ना, हम इंडियंस में एक खास बात है, जब भी ब्रेकफास्ट का नाम आता है तो सबसे पहले दिमाग में पोहा आता है। भाई चलो इमिडिएटली बन जाएगा, क्विकली बन जाएगा, इंस्टेंट बन जाएगा पोहा, और हम सभी का बड़ा फेवरेट सा भी होता है पोहा, है ना। वैसे मुरादाबाद की सड़कों में मैंने पोहा नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप इंदौर जा रहे हैं तो आप

0: वहाँ पोहा मिलेगा, आप महाराष्ट्र जा रहे हैं तो आपको वहाँ पोहा मिलेगा, आप दिल्ली चले जाओ आपको पोहा मिलेगा, लेकिन अपने मुरादाबाद में मैंने पोहा नहीं देखा यार। कहीं मिलता हो तो जरूर बताना, बढ़िया सा जरूर चेक करेंगे। आज वर्ल्ड पोहा डे है, हर साल 7 जून को विश्व पोहा दिवस मनाया जाता है। तो इसी पे लगे हाथ एक सवाल पूछता हूँ, पोहा कहाँ की डिश है, कहाँ पर इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, कहाँ का है सबसे ज्यादा फेवरेट पोहा? आप मुझे मैसेज करके बताइएगा पोहा कहाँ की फेवरेट डिश है, कितने लोगों को पता है जरा हम भी देखेंगे आज की सुबह। 9837896896 दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। पोहा कहाँ का फेवरेट है, कितने लोगों को पता है जरा बताओ यार मेरे को मैसेज करके। 9837896896 क्या यार आनंद, सुबह सुबह काम दे दिया आपने तो है भाई साहब, दिमाग ना दिमाग इसको घुमाना, इसके घोड़े दौड़ाना चाहिए, टक टक करके घोड़े दौड़ाओ, जितना दिमाग चलाओगे उतना ही बढ़िया होगा, मतलब अच्छी चीजों में चलाओ यार। आज क्या स्पेशल है 7 जून को, चलिए एक नजर डालते हैं इतिहास के पन्नों में क्या कुछ खास रहा है। आपको बता दें 1663 में लंदन रॉयल नाम का पहला थिएटर खोला गया था श्रोताओं आज ही के दिन। और आपको बता दें अमेरिका के बोस्टन में रंगीन टीवी यानी कि कलर टेलीविजन का पहला सफल प्रसारण किया गया था 1953 में आज ही के दिन 7 जून को। तो ये दो बड़ी कमाल की बात मैंने आपको बता दी। और इसी बीच 1975 में इंग्लैंड में पहला क्रिकेट विश्व कप शुरू हुआ था आज ही के दिन 7 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करने के लिए ये दिन हर साल 7 जून को इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही स्पेशल दिवस है। जी हाँ श्रोताओं, अभी हम आपसे आज के दिन के बारे में बात करें, आज के दिन के कोटे के बारे में बात करें, आज का दिन क्यों खास है, क्यों महत्वपूर्ण है, आज का ये दिन क्यों स्पेशल बनाया जाता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं गाइस, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे को मैसेज करना है। आज का मौसम क्या कर रहा है मैं आपको बता रहा है, बहुत तेज धूप हो रही है बाहर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आज के दिन जन्म में कुछ खास लोगों की। भाई साहब तो आपको बता दें सुमित अंतल भारत के पहले भल्ला फेंक पैरा एथलीट हैं, 1998 में इनका भी जन्म हुआ था। महेश जी का जन्म हुआ 1974 में, भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं श्रोताओं, आज के दिन इनका जन्म हुआ था। तो ये हो गई आज के दिन के बारे में विशेष बात, बाकी आपके आसपास कुछ विशेष कुछ खास कुछ स्पेशल तो बताओ ना मुझे, मैसेज करो 9837896896। आपके आसपास क्या ऐसा चल रहा है जो देश दुनिया में सब तक पहुंचना चाहिए, मुझे चुपके से बता दो मैसेज करके यार, मैं सबको बता दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं जी, कुछ सुनना चाहते हैं तो मैसेज करने का मेरे को, लेकिन मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बाबू शाह ये दुनिया बहुत कीमती है, इसमें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आज जो है 7 जून को मनाया जाता है विश्व पोहा दिवस, तो बरखुरदार हम आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल, मैसेज करो बाबू शाह, ये जो पोहा है पोहा वो कहाँ का फेवरेट है, कहाँ का है ये फेवरेट डिश बताओ मुझे मुकेम्बो, खुश नहीं हो रहा है अभी। चलो मेरे को मैसेज करो 9837896896 इस नंबर पे मैसेज करके बताओ ये जो पोहा है वो कहाँ का फेवरेट है, कहाँ का डिश है ये पोहा। जब तक आप मुझे जवाब दोगे तब तक मैं आपके फेवरेट गाने निकालूंगा, लेकिन उससे पहले एक गाना सुनो जो मेरी पसंद का गाना है, इसको सुनोगे तो आप भी फ्लैशबैक में चले जाओगे। बहुत बेहतरीन गाना निकाल रहा हूँ भाई, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ आपको बता देते हैं मौसम का हाल, बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है, इसमें तो कोई दो शक नहीं, दो राय नहीं, दो शक नहीं होते, दो राय होती है, कभी कभी मैं भटक जाता हूँ बातों से। गाना अच्छा है भाई, 34 डिग्री सेल्सियस, ना अच्छा नहीं है मुन्ना, ऐसे में इतनी गर्मी में तो क्या करें,
1: तो प्यार दो,
0: हाँ यार
1: प्यार दो,
0: क्या बात है। ऐसे लोग ही तो होते हैं जो हम बच्चे को बिगाड़ते हैं। चलिए जरा हवा की बात कर लेते हैं बाबू साहब, हवा कैसी चल रही है आज? हवा बहुत अच्छी खासी चल रही है, नहीं नहीं पाजी हवा ठीक ठाक ही रहने वाली है आज की। फिलहाल टेम्परेचर थोड़ा सा मुझे लग रहा है डरावना पाजी, मतलब दोपहर के बाद गर्मी और बढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है यार मेरे को। फिलहाल चलो सीरियस बात बताता हूँ, एयर क्वालिटी है 124, हवा की अगर मैं बात करूँ तो 7 किलो प्रति मीटर घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी, इन हवाओं में मैं उड़ तो नहीं जाऊंगा। चलो अभी लौट कर आ रहे हैं, तब तक आप मुझे व्हाट्सएप करो पोहा कहाँ का फेवरेट डिश है, कहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है पोहे को, बताओ जरा।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना। अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है, क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
1: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
1: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: देखो यार, संडे में मुझे नहीं पता आपकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है, घर में लगी हुई है या घर के बाहर, बट मेरी ड्यूटी संडे में घर में भी लगी हुई थी और घर के बाहर भी लगी हुई थी। आज सुबह उठती ना, मेरे साथ बड़ी अनहैपनिंग चीज हो गई यार। उसके बाद फिर मतलब ऐसी चीज होगी मैं आपको क्या ही बताऊँ। आज एक आलू का पराठा नहीं बना पा रहा था मैं यार, कुछ गड़बड़ हुआ था मुझसे, बताऊंगा अभी आपको। अगली बार आप मत करना है गलती। लेकिन फिलहाल गाना अच्छा निकल गया है और ये गाना किसी की रिक्वेस्ट पे निकाला है मैंने। मैसेज आ रहा था ना मेरे पास, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं।
1: जाग उठी है, जाग उठी है,
0: संडे है, जाग जाओ प्यारो, लेट मत सोया करो।
1: सो रहा है, सो रहा,
0: कौन सो रहा है सर?
2: ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है?
0: झाड़ू पोछा
2: हो रहा है? अरे
0: सर मैसेज पढ़ रहा हूँ।

0: गुड मॉर्निंग है भाई साहब, ताबड़तोड़ मैसेज आपके आ रहे हैं। 10:50 हो गए हैं हमारे स्टेशन क्लॉक में, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच। इतने ब्यूटीफुल मैसेज के लिए आपका हम दिल से थैंक यू करना चाहते हैं, इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप आप लोग कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, एंड आई एम सो हैप्पी। इतने प्यारे मैसेज आप ऐसे ही करते रहो यार, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।
1: ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है
0: सर, मैसेज पढ़ रहा हूँ अब आपके।
2: नहीं कुछ नहीं प्यार हो रहा।
0: ये गाना सुनीति जी ने मुझे पहुंचाया था लाइन पार से, ये मेरे साथ जुड़ी है फर्स्ट टाइम, लिखती है आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज सुन के बहुत मजा आया मुझे, थैंक यू सो मच। और ये लिखती है कि रेडियो तो बहुत टाइम से मैं सुन रही थी, लेकिन स्टेशन से आपके आज मतलब पहली बार व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ी हूँ। अयो जी ऐसे बोलना था ना, नींद पूरी ना हो तो
2: प्यार प्यार
0: ये तो नहीं होता यार, एंग्जायटी होने लगती है मुझे।
1: अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो।
0: चलो आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग है, आप सभी का स्वागत अभिनंदन 89.6 आपने ट्यूनिंग किया है, आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद, और ढेर सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज की सुबह, थैंक यू वेरी मच। ये प्यारे प्यारे व्हाट्सएप करने के लिए आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं जी? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और ये मैसेज हमारे पास कहाँ से पहुंचा है ये मैं नहीं बताऊंगा भाई साहब, ये तो मैं ही बताऊंगा, मजाक कर रहा हूँ। चलो आपके मैसेज की तरफ बढ़ेंगे, रुक करेंगे आपके मैसेजेस की ओर, ढेर सारे मैसेज हमारे पास पहुंचे हैं। डॉक्टर सैयद शारिकली जी जुड़ चुके हैं करूला मुरादाबाद से, लिखते हैं आजाद नगर से गुड मॉर्निंग, और साथ में इनके फ्रेंड्स अरशाद हुसैन अंसारी जी, इन्होंने गाने की रिक्वेस्ट की है। गुड मॉर्निंग आनंद जी, गुड मॉर्निंग। मेरे साथी कौन जुड़े हैं आज, इन्होंने मुझे मैसेज किया है ये

0: जो कैंसर के बारे में आपने जिक्र किया है ना जनाब, डेफिनेटली इस पर हम चर्चा करेंगे और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे आप भी अपनी वॉइस नोट पहुंचाएं जनाब। ये लिखते हैं आनंद जी, राम राम, कैसे हाल चाल है? 7 जून का दिन है आज और आप जो है इस टॉपिक पे डेफिनेटली थोड़ी बात करें। बिल्कुल डेफिनेटली अवधेश चौहान जी मेरे साथ जुड़े हैं अवंतिका कॉलोनी MDA से। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। डेफिनेटली सर हम बात करना चाहेंगे इस पे। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? आपके गाने बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच जनाब, ये मुझे नाम नहीं लिखा इन्होंने। अमरपाल ठाकुर जी लिखते हैं, हेलो आनंद भाई, कैसे हालचाल है? वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम गुड। बहारुल हुसैन साहब जुड़ गए हैं अमरोहा से, गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं शिफाली, गुड मॉर्निंग पहुंचा रही है मुझे। ये जुड़ी हैं खुशालपुर से, लिखती हैं आनंद जी पोहा यहाँ का फेवरेट है। अरे वाह क्या बात है। हेलो गुड मॉर्निंग सर, आपको सुबह सुबह सुन के बहुत अच्छा लगता है। रेडियो पर आप आते हैं तो ढेर सारी वाइब आ जाती है पॉजिटिविटी वाली, क्या बात है। सुखविंदर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं संडे की सुबह में एंड रेडियो वाला आनंद को गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। विक्की सागर जी लिखते हैं, संडे मॉर्निंग में रेडियो वाले आनंद के साथ आनंद आ गया है। आनंद जी क्या हाल चाल है? विक्की सागर बात कर रहा हूं मैं, गुड मॉर्निंग। और इन्होंने लिखा है गुजरात का फेवरेट है गोवा का। गोवा, अरे भाई गोवा लिखना था या पोहा लिखना था? आपके भैया पैसे काटेंगे, आपने गलत जवाब दिया है। बता रहे टैक्स भी लगाएंगे, GST भी भरवाएंगे आपसे, ऐसे थोड़ी होता है यार। आपने गोवा मतलब पोहा को गोवा कर दिया भाई, ये कोई राइमिंग सिस्टम थोड़ी चल रहा था यार। मतलब इन्होंने तो यार कमाल कर दिया यार, अलग ही लेके पहुंच गया ये भाई साहब। चलो कोई नहीं, समझ सकते हैं आप जो कहना चाह रहे थे, मैंने समझ लिया आपका जो है आंसर। लेकिन यार ये गुजरात में जो आपने लिखा है थोड़ा मुझे संकट में डाल रहा है, हम थोड़े से ना मतलब इसे संकट में जा रहे हैं। चलो मैंने आपका गाना निकाला है लेकिन नए वर्जन में निकाला है विक्की जी, आप इसको सुनेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा।
1: म्यूजिक MG
0: आगे बढ़ते हैं म्यूजिक MG के साथ।
1: सड़क में रोक के दूंगा मौके।
0: हेलो प्रिय मित्र आनंद जी को वेरी गुड मॉर्निंग। इन्होंने लिखा है पोहा, ये एग्जैक्टली ये है सही जवाब, इन्होंने सही लिखा है इन्होंने। ये मेरे पास मैसेज आया नोनेश कुमार का, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं और इन्होंने एकदम एब्सोल्युटली अल्टीमेट जवाब दिया है।
1: तुझे मौके तेरी फ्रेंड बोले तू।
0: मेरे पास मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, संडे इट इज द फन डे, रविवार के दिन भी आपको सुनने का अवसर मिल रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकती है। आपकी शानदार बातें और सकारात्मक ऊर्जा पूरे दिन को बेहतर बना देती है। एंड इन्होंने लिखा है पोहा भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यहाँ का है और इसे गर्मा गर्म जलेबी के साथ और नमकीन के साथ इसका सेवन किया जाता है। क्या बात है सर, मुँह में पानी आ जाएगा, बच्चे को बिगाड़ो। वैसे आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे यार, सुबह सुबह आलू का पराठा, संडे मतलब मेरे लिए आलू का पराठा होता है। मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, हर संडे में कुछ ना कुछ नया बनाने की ट्राई करता हूँ। आई नो आलू का पराठा नया नहीं है बट हम जैसे नए लड़कों के लिए बहुत नया है। बाजार तो मैं अकेली जाता हूँ बॉस, कोई दिक्कत नहीं है,
1: अकेली ना बाजार जाया।
0: चलो ये गाने सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। विक्की सागर जी ने पहुंचा इस गाने की
1: रिक्वेस्ट,
0: आप बताओ मुझे पोहा कहाँ का फेवरेट है, कहाँ पर सबसे ज्यादा उसे पसंद किया जाता है। खास बात बताऊँ, यहाँ पर इसे लोग जलेबी के साथ बहुत ज्यादा खाते हैं। आप तो बता दो यार, सारे क्लू दे दिए मैंने। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, संडे की सुबह स्टेशन क्लॉक में वक्त हो गया है 10:56। चलो गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1।

0: तो 40 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
3: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
2: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
2: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
4: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

ये गाना मैंने प्ले किया था, एक बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट बहुत देर से इस गाने की आ रही थी मेरे पास, आनंद जी प्लीज प्ले माय ट्रैक, प्लीज प्ले माय सॉन्ग। तो भैया ये लीजिए, हमने आपका गाना प्ले कर दिया, शुभ ने मुझे रिक्वेस्ट की थी इस गाने की, एंड थैंक यू सो मच। शुभ मेरे साथ जुड़े थे इस वक्त कांट रोड से, और ये लिखते हैं सर मैं शॉपकीपर हूँ, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही अच्छी स्टॉल लगाई हुई है, प्लीज यू हैव टू कम, डेफिनेटली डू शेयर योर एड्रेस एंड आई विल ट्राई, आई एम 100% श्योर कि मैं यहाँ पर आऊँ, अगर कुछ अच्छा है तो डेफिनेटली आना तो बनता है यार। थैंक यू शुभ, थैंक यू सो मच, ये ब्यूटीफुल गाना हमें हम सभी को डेडिकेट करने के लिए और साथ में मेरे साथ जुड़ने के लिए, आई एम वेरी हैप्पी यार। हेलो हेलो, कैसे हालचाल है दोस्तों, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, संडे की सुबह है, 11:05 हो गए, आप लोग भी कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं 9837896896। आज बहुत ही अच्छा कैंपेन हुआ, वर्ल्ड साइकिल डे स्पेशल सेलिब्रेशन था, साइकिलिंग सेलिब्रेशन आज हुआ था, ये कंपनी बाग में इसकी शुरुआत हुई थी, मैंने कल भी आपको बताया था, हमने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया था, उसी खास मौके पर इसका एक सेलिब्रेशन आज हुआ था, कंपनी बाग में इसकी शुरुआत हुई थी और बहुत सारे लोगों ने आज साइकिलिंग करी, बहुत मज़ा आया उस कैंपेन में। एक्चुअली मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि लोग ना मुरादाबाद के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब उनके लिए कुछ नई और बढ़िया चीज़ आती है, तो लोग डेफिनेटली जाना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मुरादाबादी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के इस कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करने के साथ साथ लोगों ने जो है अपनी रुचि दिखाई, इंटरेस्ट लिया, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुरादाबाद के अंदर ऐसी बढ़िया चीजें होती रहती हैं यार, नो डाउट, और अपना मुरादाबाद है ही इतना कमाल का यार। और आपको बता दें इसकी शुरुआत हुई आदरणीय एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह सर ने जो है, और साथ में अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार सर जी ने मतलब हरी झंडी दिखाकर जो है इसको रवाना किया, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया गया, बहुत ही मज़ा आया इस सेलिब्रेशन में। एंड आई एम श्योर गाइज, आप लोग भी साइकिल अगर आज नहीं चला पाए तो ज़रूर चलाइए, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ यार, साइकिल को हम भूलते जा रहे हैं यार। आज विश्व पोहा दिवस मनाया जाता है, वही मैं आपसे पूछ रहा था कि आप मुझे बताओ पोहा कहाँ का फेवरेट है, कहाँ की फेवरेट डिश है पोहा, यही मैंने आपसे पूछा था। एंड जेन्युइनली बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हैं मेरे पास, थैंक यू वेरी मच। देश दुनिया में क्या चल रहा है जरा आपको फटाफट बताते हैं भैया, अगर अब अखबार में खाना परोसा तो हो जाएगी कार्यवाही। यस, आपको बता दें FSSAI ने जो है रोक लगाई है देश के सभी खाद्य विक्रेताओं को, रेस्टोरेंट मालिकों से स्पेशली जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको भी खास अलर्ट किया गया है जारी, कि भैया बिजनेस फूड बिजनेस ऑपरेटर को जो है सख्त चेतावनी जारी कर दी गई है। भैया देखिए, खाने पीने की चीज़ों को अखबार में पैक नहीं करना है, और अखबार में अगर पैक किया गया तो भैया फिर उसके ऊपर बड़ी कार्यवाही हो सकती है। वैसे मुझे भी लगता है कि अखबार में खाने पीने की चीज़ हमें नहीं रखनी चाहिए भूलकर भी, कई बार हमारी मम्मियाँ भी जल्दबाजी में अखबार में ही रोटियाँ पराठा रोल करके हमें दे देती हैं, बट ये एक्चुअली तो नहीं करना चाहिए यार। आप इसके अलावा टिश्यू पेपर, वो कौन सा पेपर, सिल्वर पेपर भी आता है एक बहुत ही बढ़िया, वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, आप इसका इस्तेमाल तो मत ही करो। न्यूज़ पेपर को हमें लगता है ना, अरे वीस्टी तो है लाओ यार दे दो फटाफट से, मम्मी ने जो है भैया कैस्ट्रोल में रखा उसके अंदर गर्मा गर्म पराठे रखे, लेकिन यार ये बहुत खतरनाक है आपकी सेहत के लिए भाई साहब। चलो भाई एक लाइन दे रहा हूँ, इसको पूरी करके बताओ, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, इसके आगे की लाइनिंग आप बता दो यार, मजा आ जाएगा। इसकी आगे की लाइन जरा मुझे फटाफट बनाओ, मैसेज करके बताओ आगे क्या जोड़ने वाले हैं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, आगे लाइन आपको जोड़नी है और ये राइमिंग को पूरा करना है, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और इसके आगे दो लाइन जोड़ोगे तो एक बढ़िया लाइन बन जाएगी, तो देखते हैं आप लोग क्या इंक्लूड करने वाले हैं। चलो छोटा सा काम दे दिया, 11:08 हो गए, आज विश्व पोहा दिवस पर एक बड़ी धाकड़ न्यूज़ निकल कर आई है भैया, नागपुर में वर्ल्ड पोहा डे के मौके पर शेफ विष्णु मनोहर ने जो है 3,000 किलो तरी जो है मतलब उसका पोहा बना डाला, और शेफ विष्णु मनोहर ने कहा कि इसका मकसद पूरी दुनिया को ये दिखाना नहीं है कि नागपुर का पोहा हमारा गौरव है, बल्कि ये तो बताना है ही, साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है कि भैया ये जो पोहा है ये हम सभी की दिलों से जुड़ा हुआ है। नागपुर में तो है ही मतलब जो है दिल के करीब पोहा, लेकिन एक जगह और है जो दिल के बहुत करीब है, कहाँ पर है दिल के करीब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ जरा मुझे व्हाट्सएप करके 9837896896, अभी भी आपके पास एक अच्छा चांस है, मैसेज कर सकते हो आप। चलिए आपके मैसेज की तरफ आगे बढ़ेंगे, और भी ढेर सारे श्रोता जुड़े हैं, क्या क्या पहुँचा रहे हैं जरा जानते हैं आपके मैसेज के माध्यम से।
अलका वर्मा जी जुड़ी है बुद्धि बिहार से, लेकिन इन्होंने जो मैसेज किए वो गायब हो गए, आई डोंट नो कैसे। मैम प्लीज दोबारा मैसेज कर दीजिएगा आप। हाय गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सुहानी, शिवपुरी मुरादाबाद से जुड़ी है। हेलो सुहानी, आपके आते ही सुहाना हो गया यहाँ का मौसम। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका एंड गुरप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ में गुरशब्द सिंह। राहुल लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल है आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, आई होप आप भी अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज और आ गया मेरे पास। हेलो गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हालचाल है? आपका प्रोग्राम सुन के बड़ा मजा आता है और संडे में आप आए हो तो और भी मजा आ रहा है, एंड हमारा संडे तो सुपर डुपर अमेजिंग हो गया। अरे क्या बात है सर, थैंक यू सो मच। निका चिका हो गया ना। एक और मैसेज आ गया है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, इन्होंने लिखा है पोहा यहाँ का फेवरेट है, वैसे तो इसे पूरे भारतवर्ष में ही लोग शौक से नाश्ते में इसका इस्तेमाल करते हैं, एंड ये बट यहाँ का बहुत फेवरेट है। कहाँ का मैं अभी नहीं बता रहा यार। ये मैसेज आ गया हमारे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से, इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली, महराज अंसारी एंड बाबू अंसारी लिखते हैं आदाब आनंद जी, आप कैसे हैं? संडे मॉर्निंग मसाला शो में आपको सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमें एक गाना सुनवा दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर जनाब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आप लोग भी फटाफट से मुझे बता सकते हो ये जो पोहा है ये कहाँ का फेवरेट है। जय श्री राम आनंद जी, आप कैसे हैं? दुर्गेश सैनी जी ने मुझे सही जवाब दे दिया है, क्या बात है सर, पोहा यहाँ का फेवरेट है। एक मैसेज आया मेरे पास, हेलो जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हाल चाल हैं आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, थैंक यू सो मच। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह एंड साथ में प्रखर शाह, कुशल शाह जी ने मैसेज किया है विद फैमिली, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस टाइम पे। नासिर हुसैन जी लिखते हैं आनंद जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के नासिर भाई। एक मैसेज और आ गया, हेलो आनंद जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब है, प्लीज हमारे गीत को भी जरूर शामिल करिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ढेर सारे मैसेज करो यार, इंतजार कर रहे हैं हम आपके मैसेजेस का। और अभी एक गाना निकाल रहा हूँ जो मेरा आपका हम सभी का फेवरेट है, एंड आई एम श्योर ये गाना आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में ले जाएगा। मौसम तो थोड़ा गर्म है लेकिन गाना बहुत कूल है यार, बहुत प्यारा गाना है, आई रियली लव दिस ट्रैक। यू नो ये गाना सुबह सुबह मैं अपने प्लेलिस्ट में भी सुन रहा था अपने घर में, जब मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था तो मुझे लगा कि आज भी स्टेशन जाऊंगा तो ये गाना जरूर सुनवाऊंगा, तो ये गाना मेरी तरफ से आप सभी के लिए। बादल यूं गरजता हाय हाय है ना, खूबसूरत ट्रैक। डर कुछ ऐसा लगता है, बादल यूं गरजता है। म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर डी बर्मन साहब, लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार साहब की आवाज, बहुत ही खूबसूरत गीत, साथ में एंजॉय करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
6: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
5: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
7: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

ये जो गाना अब आ रहा है ना, जो भी आपके लिए मैंने प्ले कर दिया है, ये गाना सत्यमेव जयते 2 से है। ललिता कश्यप नवीन नगर से हमारी बड़ी प्यारी लिसनर रेगुलर वाली हैं, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये गाना है। उन्होंने लिखा है, आनंद जी ये गाना प्लीज प्ले कीजिए, आज मैं अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती हूँ। क्या बात है, तो आपके हस्बैंड के लिए निकल गया है मेरे रेडियो स्टेशन से एक बहुत ही बेहतरीन गाना। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6, कहीं और बिल्कुल मत जाना, ये आपके शहर का अपना मोस्ट हैपनिंग रेडियो, साथ ही साथ आपके अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसे सामुदायिक रेडियो, बातें होती है वही जो आपका दिल चाहता है। आनंद विद यू लेडीज एंड जेंटलमैन।

संडे वाली फील मेरे को मंडे वाला मॉर्निंग दे रहा है यार। ऐसा लग रहा है सोमवार में आके बैठ गया हूँ मैं। वेल आज जो मैंने मेरे साथ हुआ है ना वो क्या हुआ था मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा यार। लेकिन YouTube ना बड़ी कमाल की चीज है, कैसे बताता हूँ थोड़ी देर में ना। इस गाने के बाद इस गाने को सुनते हैं। ललिता जी आपके लिए मैंने निकाल दिया है, आपके हस्बैंड के लिए। आई होप जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी मजा आएगा इस गाने में सुनते हुए। आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, हाँ सीट बेल्ट लगा लो यार।

0: बेहतरीन गाना। और ये गाना अभी आप सुन रहे थे ललिता कश्यप जी की रिक्वेस्ट पे, इस गाने को हमने प्ले किया था। ये गाना हम सभी का फेवरेट होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया लिरिक्स है, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरती से गाया गया है। चलो जी, इस गाने के बाद वेलकम बैक है आप सभी का। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। संडे की सुबह है, स्टेशन क्लॉक में 11:23 हो रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज 7 जून को यूं तो अपने आप में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, लेकिन एक हम सभी का फेवरेट हो सकता है ये, आई डोंट नो आपका है या नहीं, मतलब मेरा भी थोड़ा थोड़ा मतलब 100 में से 30% तो है यार। आज नेशनल चॉकलेट आइसक्रीम डे मनाया जाता है, मतलब चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाने वाला डे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, भैया उनको चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम दो यार, अब उनको वो मांगता, अब उनको ये नहीं मांगता, अब उनको वो मांगता, अब उनको वो नहीं मांगता, अब उनको ये मांगता। वेल आज जो है नेशनल चॉकलेट आइसक्रीम डे भी मनाया जाता है, बहुत ही स्पेशल डे होता है ये। इसके अलावा आज एक और चीज है जो बहुत ही खास है, जो सेलिब्रेट की जाती है आज ही के दिन। आज नेशनल VCRD भी मनाया जाता है। इसके अलावा आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है, इस पे हमने बात भी करी थी थोड़ी देर पहले, आपको बताया भी था। तो ये कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से दिवस जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आपके साथ मिलके। और अभी भैया मैंने आपसे पोहे के बारे में एक सवाल भी पूछा था, आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज किए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुल मैसेज डिलीवर करने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग मैसेजेस। लेडीज एंड जेंटलमैन आगे बढ़ते हैं, आपके मैसेज वैसे मैं छोड़ के नहीं जाने वाला, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, सब पढ़ के जाऊंगा। आप जो ये मैसेज मुझ तक डिलीवर कर रहे हो मैं डेफिनेटली उनको आप तक पहुंचा कर ही जाऊंगा, डोंट वरी। और अभी मैं आपको कुछ खास चीजें फटाफट से बता देता हूँ और आप ही के काम से जुड़ी हुई हैं, आप लोग मैसेज कर रहे हैं वो मैं डेफिनेटली पढ़ लूंगा, और आप जो गाने भेज रहे हैं वो भी मैं प्ले करूंगा, देखो सब कुछ मैं कर दूंगा। लेकिन अभी देश दुनिया की बात करें तो भैया आपको बता दें, UPI ने बदल दी है भारत की तस्वीर, मई 2026 में बना एक नया रिकॉर्ड। यस, आपको बता दें भैया, मतलब इतनी तगड़ी ट्रांजेक्शन हुई है मई के महीने में 2026 के अंदर। यस, 2026 मई स्पेशल हो गया है भाई साहब, इसने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, एंड इतनी तगड़ी करोड़ों में ट्रांजेक्शन की गई है कि भैया भारत बना है दुनिया का डिजिटल पेमेंट पावर हाउस, अनबिलीवेबल यार। अब आप सोच रहे हैं, मतलब आज भारत में चाय की दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह QR कोड नजर आता है। UPI ने डिजिटल भुगतान को इतना आसान बना दिया है कि लोग अब बिना नकदी के भी रोजमर्रा के अधिकांश काम निपटा रहे हैं। ये जो मई था ना पाजी, मई 2026 का, इसमें UPI ने जो है एक तगड़ा ट्रांजेक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया भर को जो है अपनी ओर खींचा है, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। एग्जैक्टली लेडीज एंड जेंटलमैन, UPI की सफलता के पीछे मुफ्त सेवा, आसान उपयोग, सस्ते स्मार्टफोन, सुलभ इंटरनेट और बढ़ती डिजिटल जागरूकता के प्रमुख जो है ये कारण माने जाते हैं। और आपको बता दें कोविड काल में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो सिचुएशन, लेकिन आपको बता दें जब से QR कोड वाला फंडा शुरू हुआ है काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है चीज़ें करने में। हाँ, इसकी लोकप्रिय भी जो है इसकी लोकप्रियता काफ़ी पॉपुलर हो रही है, नो डाउट। लेकिन मई 2026 का बहुत ही स्पेशल एक नया ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है मई ने, जिसमें सबसे ज़्यादा UPI इस्तेमाल किया गया है, और इसीलिए भारत जो है अब डिजिटल पेमेंट का पावर हाउस माना जा भी रहा है यार। बट जो लोग अभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं UPI, मैं तो कहूंगा आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो जमाने के साथ चलता है उसकी जिंदगी में हमेशा बल्ले बल्ले होती है ना, तो आप भी समय के साथ जमाने के साथ चलिए यार, बहुत जरूरी है। आपको बता दें रसोई गैस 29 रुपीज महंगी हो चुकी है, लेकिन अभी ये दिल्ली में महंगी हुई है भाई साहब। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट LPG सिलेंडर, रसोई गैस जो है वो 29 रुपीज महंगा हुआ है दिल्ली के अंदर। आई डोंट नो मुरादाबाद में होगा या नहीं, सीरियसली आई हैव नो आइडिया, अगर होता है तो आप मेरे को बता देना यार, ऑलरेडी इतना महंगा चल रहा है आनंद, और कितना कराओगे, ये कह रहे हो आप मेरे को यार, आई डोंट नो, इधर कोई भी न्यूज कुछ भी आ जाती है, आई हैव नो आइडिया, मतलब कब क्या हो जाए नेक्स्ट डे कुछ नहीं पता। वेल थैंक यू सो मच आप लोगों के मैसेजेस के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ये छोटी छोटी अपडेट मैं आपको पहुंचाता रहता हूं ताकि आप भी थोड़े से अलर्ट रहें और आपको पता चलता रहे क्या चल रहा है आपके आसपास। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, इसके आगे की लाइन आपने जोड़ के बतानी थी मेरे भाई, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, थैंक यू सो मच। एक मैम ने लिखा है नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, RJ आनंद हमारा किसी से कम नहीं, वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ये जो बटर पॉलिश किया ना आपने, बहुत ही अच्छी बात है, वेल राइमिंग अच्छी थी यार, कुछ और बढ़िया पहुंचाओ, मुरादाबाद के लिए भी आप इसमें जोड़ सकते हो। आपको एक क्लू दे रहा हूँ, हाँ जी, एक लाइन मैंने दी है, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, इसके आगे की लाइन आपने बोलनी है। कंप्लीट करनी है आपको लाइन। चलो आगे बढ़ते हुए आपके मैसेज की तरफ फटाफट से जो है मतलब दिमाग लगाते हुए आपके मैसेज को पढ़ते हैं, नहीं तो फिर आप मेरे को बोलो कि यार आनंद आपने मैसेज पीछे छोड़ दिए, बातें इतनी ज्यादा हो गई हैं, वैसे बातें इंटरेस्टिंग हो रही है ना। थैंक यू सो मच यार, मुझे पता है आपको पसंद आ रही है, मेरे को भी बहुत अच्छी लग रही है आपकी बातचीत, ये जो आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाई गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ आर यू, कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, आई एम एब्सोल्युटली गुड। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, आनंद जी थैंक यू सो मच, आप संडे में आए हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी सुबह को और भी अमेजिंग बना दिया यार, अनबिलीवेबल कि कितने सारे लोगों को लगता है कि मैं संडे को आ जाऊं। भाई संडे को मेरे को आराम का दिन होता है यार, संडे मत बुलाओ मेरे को, मतलब चलो ठीक है आज आ गया हूं क्योंकि आप लोगों ने शायद दिल से याद किया। मेरे साथ यहां पे कौन जुड़ी है? अलका वर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बुद्धि विहार से। अलका वर्मा जी मुझे एक वॉइस नोट पहुंचा रही हैं, जरा इनका वॉइस नोट सुनते हैं आज क्या कह रही हैं सुबह सुबह अलका जी। जी मैम राधे राधे, प्लीज कहिए।
1: राधे राधे आनंद जी, मैं अलका वर्मा।
0: जी मैम,
1: आनंद इंदौर का सबसे ज्यादा फेमस पोहा है, अभी हम लोग गए थे वहाँ पर खाए थे, वहाँ पर 56 करके एक मार्केट है, वहाँ पे खाने के बहुत ही तरह तरह के आइटम और बहुत ही टेस्टी मिलता है, जब भी कभी आप जाइएगा तो 56 जरूर जाइएगा, 56 नाम है मार्केट का।
0: थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां अलका जी, आपने ये बताकर हमारा मन जो है प्रसन्न कर दिया है और आपने हमें जो है इतना ज्यादा एक्साइटेड कर दिया कि हम शो छोड़ के जा रहे हैं। 56 लौट कर आएंगे, फिर 56 भोग में क्या क्या था ये आप जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच मैम, लवली टॉकिंग टू यू, सो स्वीट मैम। और ये जो मैम ने बोला ना आप जरूर जाइएगा, क्या मतलब, मतलब लहजा देख रहे हैं मैम का कितना बढ़िया, मजा आ गया। ये गाना इसी बात पे आप सभी के लिए, इस गाने की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, बता दूं नाम, चलो बता देता हूँ, ये मुझे पल्लवी जी ने मैसेज किया है कि आनंद जी मुझे गाना सुनवा दो,
2: तुझे रोज
0: दम लगा के, हर्षा का गाना। अब भूमि जी बहुत प्यारी लगी थी इस गाने में और अब भी बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन अलका जी थैंक यू सो मच, आपने ये बिल्कुल सही बताया है, पोहा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी, बड़े ही अजीब कायदे हैं मेरे, अरे वाह क्या बात है,
2: उन्होंने
0: नाम नहीं लिखा यार अपना।
2: तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करा।
0: मित्रपाल चौधरी जुड़ गए हैं आज की सुबह। रोहताश जी मेरे साथ जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं? मेरे क्या बात है, गुड मॉर्निंग, मैं आपको सुन रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर। और ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, आज मेरे शाम बाबू जी जीजा जी एक गाना सुनना चाह रहे हैं, प्लीज आप उनका नाम जरूर लीजिएगा और उनको एक गाना सुनवाइएगा। रोहताश यादव जी थैंक यू सो मच, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आपके जीजू, ये आप जरूर लिख के बताएं, मैं ट्राई करूंगा उनका गाना डेफिनेटली प्ले करूँ आज की सुबह। मेरे पास और भी मैसेज पहुंच रहे हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, पोहा जो है वो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मुख्य व्यंजन है, वैसे तो इसे पूरे भारतवर्ष में ही लोग बहुत ही शौक के साथ नाश्ते में खाते हैं। बिल्कुल अवधेश जी आपने सही कहा। आगे बोलते हैं,
3: तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करा।
0: खुशालपुर पुलिस चौकी के पास से मेरे पास मैसेज पहुंच गया है, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल हैं आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी। इन्होंने लिखा है, पोहा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खाया जाता है, बिल्कुल
3: जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा।
0: बाकी आप लोग जो सुनना चाह रहे हैं वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया मैसेज करते रहिए यार।
3: तुझे रोज
0: नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, इसके आगे की लाइन जरा जोड़ के बताओ।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: टायर लो सोना जीतो।
4: क्या?
3: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
5: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
7: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, अपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
8: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
9: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस, नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
10: कॉल 8826213131।
11: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
12: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
13: यात्री

0: खूबसूरत गीत अभी आप एंजॉय कर रहे हैं।
1: अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार।
0: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में भी आप एंजॉय कर रहे थे खूबसूरत गीत साहब। ये गाने की फरमाइश आई थी इरशाद हुसैन अंसारी जी की, अपने दोस्तों के साथ सुनना चाह रहे थे मंसूरी कॉलोनी से, एंड आई होप उन्होंने इस गाने को डेफिनेटली एंजॉय किया होगा। अब आप एंजॉय करेंगे आरजे आनंद की कॉन्वर्सेशन को। विश्व पोहा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है और इसी पर आज हम आपसे ढेर सारी बातचीत कर रहे थे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है, स्टूडियो की घड़ी में 11:40 और अब फटाक से मैं आपको बता देता हूँ भैया, विश्व पोहा दिवस जो जैसे कि मैंने बताया हर साल 7 जून को मनाया जाता है। पोहा चावल से बनाया जाता है, चावल को भिगो कर बताया जाता है, दबाकर और सुखा कर पतला किया जाता है, जिससे हमें पोहा यानी इसे हम चिवड़ा भी कहते हैं ऐसा बताया जा रहा है। भाई साहब मैंने जब ये मतलब पढ़ा तो मुझे भी लगा ओ माय गॉड इसका एक और नाम है। भैया एक और चीज़ आपको बता दें, पोहा खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखिए एक तो सबसे पहले ये बड़ी आसानी बहुत ही इजीली बहुत ही आसानी के साथ पच जाता है। पोहा हल्का भोजन है इसीलिए ये पेट में एकदम बोझ जैसा नहीं लगता, बहुत हैवीनेस आपको फील नहीं देता है। साथ ही साथ ऊर्जा का एक अच्छा सूत्र माना जाता है, अगर आप इसको लेते हैं तो ये आपके शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है, यानी कि आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। वजन नियंत्रण रखने में काफ़ी आपको हेल्प करता है। कम तेल और ज़्यादा सब्जियों के साथ बनाया गया है पोहा आपके वजन को कंट्रोल रखने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। आयरन का अच्छा सूत्र माना जाता है, पोहे में आयरन से जो है मतलब आयरन से भरपूर ये होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है पोहा। आपको बता दें भारत के अलग अलग राज्यों में पोहा अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन जैसे कि मैंने पूछा था पोहा कहाँ का फेवरेट है, एग्जैक्टली पोहा का जो सही जवाब है वो इंदौर का फेवरेट है, मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। इंदौर में तो इसको बहुत ही प्रसिद्ध माना ही जाता है, वहाँ पर पोहा और जलेबी बहुत ही यू नो चाव के साथ लोग खाते हैं, उनका फेवरेट होता है पोहा एंड जलेबी। आपको बता दें इंदौरा जो ये इंदौर का पोहा है बहुत ही फेमस है, इंदौरी पोहा पूरे देश में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। महाराष्ट्र में कांदा पोहा बहुत ही लोकप्रिय है ना, और कई जगहों पर पोहा और जलेबी का जो कॉम्बिनेशन है जैसे कि मैंने बताया स्पेशली ये इंदौर में बहुत ज़्यादा इसका कॉम्बिनेशन फेवरेट है लोगों का, ये बहुत ही पसंद किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको बताते चलें पोहा भारत की सबसे लोकप्रिय और किफ़ायती नाश्तों में से एक माना जाता है। तो देखिए पोहे के अल्टीमेट फ़ायदे हैं और बहुत ही अलग अलग यू नो शहरों में अलग अलग तरीके से पोहे को खाया जाता है। पोहा जो है भाई साहब एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही बेहतरीन डिश है जो बहुत इमिडिएटली बन जाता है, बहुत ही क्विकली आप बना सकते हैं ना। तो आज आपने पोहा तो नहीं बनाया ब्रेकफास्ट में, वेरी नाइस बनाया तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या कहा आनंद जी, हमें पता ही नहीं था आज वर्ल्ड पोहा डे है, यही तो रेडियो का कमाल होता है भाई साहब। आपको बता दें पोहा सिर्फ नाश्ता नहीं है बल्कि भारत के अलग अलग स्वाद और संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक स्वादिष्ट व्यंजन है। चलिए जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ, पोहे की इन्फॉर्मेशन हमने तो शेयर कर दी है, आई एम श्योर आप लोगों को भी तमाम जानकारियां मिली होंगी आज के हमारे इस प्रोग्राम से। 11:43 का समय हो गया है और आप लोगों के मैसेजेस के लिए मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आप जुड़े और इतने खूबसूरत मैसेज आपने जो है शेयर किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके व्हाट्सएप की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं, डेफिनेटली शामिल करेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, लेकिन मेरे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर। ललिता जी ने एक और मैसेज किया है, आज गर्मी भयंकर वाली हो रही है, पानी पीते रहिएगा, और हम भी अभी नाश्ता कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। इन्होंने अपने मिच्छू की पिक्चर शेयर की है, ये अपने मिच्छू को भी जो है हमारा स्टेशन सुना रहे हैं, वेरी नाइस, और ये बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्या बात है। ललिता जी लिखती है, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा आरजे आनंद किसी से कम नहीं, अयो रही अयो राम जी, थैंक यू सो मच ये लाइन भेजने के लिए, थैंक्स लॉट। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हाल चाल है। रिजवान खान साहब मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। रिजवान भाई मुझे लिखते हैं, आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप ने जो पूछा है उसका जवाब देते हैं कि नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा FM मुरादाबाद 89.6 लंदन से कम नहीं। अयो जी आपने तो मेरे को लंदन पहुंचा दिया, अभी मैं लंदन जैसी बात करेगा तो आप मेरे को स्टेशन से बाहर कर देगा, तो मैं लंदन जैसा भाषा नहीं बोलेगा। आनंद जी हमारी पसंद का सॉन्ग भी प्ले कर देना, डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा सर, थैंक यू वेरी मच। अभी डॉक्टर शैयद शारिक अली जी की रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही बेहतरीन गाना, बहुत ही फैबुलस ट्रैक मैं निकाल रहा हूँ। ये भी बहुत ही उम्दा ट्रैक है, बहुत ही बेहतरीन गाना है। इसको सुनेंगे आपको भी आनंद आ जाएगा। और आपके फेवरेट जो गाने होते हैं बड़े कमाल के होते हैं यार। बेहतरीन गीत निकल गया है भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत आवाज। इस गाने को सुनेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। सच बताऊं तो आप खुद फर्स्ट टाइम सुन रहा है यार। चलो चलो सुनते हैं और कुछ टेक्स्ट मैसेज आए वो भी फटाफट शामिल करेंगे। 11:45 हो रहे हैं स्टूडियो की घड़ी में। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। सुनते रहिए आरजी आनंद को। ये है एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9837896896। एक लाइन पूछी थी, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, और आगे की लाइन आपको ऐड करनी थी। ढेर सारे मैसेज आए हैं, मैसेजेस की बारिश हो रही है। जरूर अभी हम आपके मैसेज को शामिल करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: अंकल जी
2: कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
3: बताइए
4: मैं सारा।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपके शहर में मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
5: अमेरिका में होता होगा, यहाँ
3: इंदौर है। क्या बात है, कौन?
0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो। अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है। पापा अरे बेटा बस मैं यूं गया और यूं आया।
6: घर में बता दूं क्या?
0: You know what, ये बताकर नहीं होती। सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
7: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
8: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
9: टायर लो सोना जीतो।
10: क्या?
9: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
11: अपोजिट
9: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
12: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
13: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
14: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
13: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप एंजॉय कर रहे थे। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, और ऐसे ही खूबसूरत गीतों का आनंद आप उठाते हैं आनंद के साथ। फिलहाल किशोर कुमार की आवाज, और ये गीत अभी आपने सुना था रिजवान खान जी की रिक्वेस्ट पर। स्वागत है आपका, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 वंस अगेन संडे की सुबह। बहुत बहुत स्वागत है। 11:54 हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे मेरा जो समय है वो यहाँ से खिसक रहा है। मेरे को कह रहा है बेटा यहाँ से आपको बाहर भी निकलना है, क्योंकि अभी जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे, है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ टेक्स्ट मैसेज आए हैं, फटाफट वो भी पढ़ लेता हूँ मैं आपके। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, एंड थैंक यू सो मच, सुबह सुबह आपको सुन के बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू सो मच। सृष्टि का मैसेज मेरे पास पहुँच गया है, गुड मॉर्निंग सर आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और इन्होंने एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट की है मुझे, थैंक यू सो मच, मैं ट्राई करूंगा डेफिनेटली। नमस्ते आनंद जी, कैसे हाल चाल हैं? आनंद भाई मैं बहुत ही बढ़िया हूँ जी, मुझे एक सॉन्ग सुनवा दीजिएगा। कुंदनपुर मुरादाबाद से मैसेज आया है मोहिनी मैम का, थैंक यू मोहिनी जी, मैं ज़रूरी गाना प्ले करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। हेलो आनंद सर आप कैसे हाल चाल हैं? आलिया खान ज़िला शाहजहाँपुर से मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू सो मच आलिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने गाना तो नहीं बताया लेकिन आपने मैसेज किया, उसके लिए आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। ये कुछ टेक्स्ट मैसेज लगातार मेरे पास पहुँच रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के मैसेज को ज़रूर शामिल किया जाए भाई जाते जाते। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच गाइज, आप सभी का दिल से थैंक यू करना चाहते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा मुरादाबाद किसी लंदन से कम नहीं। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। इन्होंने लिखा है नीम का पेड़ किसी से कम नहीं और संडे सफाई अभियान से कम नहीं। भाई मतलब ऐसे लग रहा है मेरे दिल पर नमक छिड़का जा रहा है ये तो, थैंक यू सो मच। ये पूनम जी का मैसेज मेरे पास पहुंचा था, बड़ी अच्छी टाइमिंग इन्होंने पहुंचाई है। गायत्री नगर से कुसुम जी ने लिखा है नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और मंडे की सुबह की नींद किसी और दिन से कम नहीं, मतलब ये मेरे को थोड़ा सा जवा नहीं मैडम, लेकिन थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेजेस के लिए। ढेर सारे मैसेज आपने किए उसके लिए आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच, आपने इतना स्पेशल टाइम निकाला और हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते चलते बस इतना ही कहूँगा, आने वाली 20 जून दैट इज वेरी स्पेशल, लेडीज के लिए हम एक बहुत ही अच्छा कैंपेन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सखी सुरक्षा फ्री हेल्थ कैंप होने वाला है 20 जून को सैटरडे, रामगंगा बिहार, 11 से 2 के बीच। अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। और ये जो कैंपेन है स्पेशल लेडीज के लिए है, बहुत स्पेशल कैंपेन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सुनने को जानने को मिलेंगी। इनफैक्ट बहुत सारे क्विज कॉन्टेस्ट आप खेल सकते हैं, बहुत सारे प्राइज भी जीत सकती हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है, आप जरूर आइएगा 20 जून सैटरडे 11 से 3। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट सखी सुरक्षा कैंपियन। मोर डिटेल्स के लिए डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम आईडी रेडियो वाला आनंद 95 नाम से मिलता हूँ, ऑफिशियल आईडी फॉलो करें एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम के नाम से, रेडियो वाला आनंद के नाम से तो मेरी आईडी है और एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से हमारी ऑफिशियल आईडी है, ठीक है जी। इन आईडीज पे आप आके सारी डिटेल्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अभी लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, मिलेंगे आपको इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर फिर जल्दी, मेरी आपकी मुलाकात होगी, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही जुड़े रहिए, टिके रहिए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना ब्यूटीफुल रेडियो स्टेशन, दिस इज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और दिल से कहिए जियो बिंदास। आरजे आनंद के साथ थे आप, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, फिलहाल समय और इजाजत नहीं दे रहा है, जल्दी आपसे मिलेंगे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो के सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। चलिए बाय बाय, टेक केयर, खूब सारा ख्याल रखिए, ढेर सारा पानी पीते रहिए, प्लीज पानी पीना बहुत जरूरी है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस धूप में यार पहले तो अवॉइड ही करो, ना निकलो तो ही जरूरी है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो पानी की बॉटल साथ लेकर जाओ, छाता भी लेकर जा सकते हो यार, ठीक है। बाकी बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वेरी वेरी सून, अभी के लिए हैप्पी संडे, हैव अ फैबुलस

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
4: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
3: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
5: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
1: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
0: माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ?
1: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले। तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
9: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

0: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क चावला टायर्स कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास। यहाँ मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
6: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी खुशी और श्रोताओं श्रीमती ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद जनपद द्वारा हीट वेव यानी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसका अर्थ है कि तापमान सामान्य से बढ़कर लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आस पास पहुँच चुका है और गर्मी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे में के बीच संतुलन बनाकर रखें, धूप में निकलने से बचें, पर्याप्त पानी पीते रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
7: मैं ममता मालवीय, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व मुरादाबाद, आप सभी जनपद वासियों को सूचित करना चाहती हूं कि राज्य स्तर से हीट वेव लू संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब जनपद का तापमान सामान्य तापमान 40 के आसपास पहुँच गया है।

0: प्रोग्राम पसंदीदा सेहत सही लाभ कहीं और मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद। सच कहूँ तो आज आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है। अभी स्टूडियो में बैठा हूँ एसी चलाकर, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठा हूँ। सुबह जब से घर से निकला हूँ तब से ऐसा लग रहा है जैसे आज दिन थोड़ा ठीक नहीं गया मेरा, लेकिन जैसे तैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि भैया आज हालत तो खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं और लग रहा है जैसे दोपहर की एकदम घड़ी सर पर खड़ी है। तो दोस्तों, पहले सिर्फ मौसम गर्मी हुआ करती थी लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रहा है हमारे आसपास।
1: अरे आरजे आनंद, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी तो है, पसीना आएगा ही, लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है। इस बार की गर्मी वकाई कुछ ज्यादा ही तेज है और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों को भी इसमें कोई भूमिका निभानी है? सच बताऊं तो अभी गर्मी डराने लगी है, पहले जैसी नहीं हो रही है।
1: अरे आरजी आनंद, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिमी भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब तो ये है कि जो गर्म हवा है जो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल ही नहीं पाती, और जब ऊपर से बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है और उनमें नमी नहीं रहती और फिर वो गर्मी को और तेज से पकड़ती है जैसे तवा गर्म होता जाता है।
0: इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं है बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बना रहा है।
1: बिल्कुल सही समझे आप, ये एक पूरा सिस्टम है। हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ जाता है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कई ज्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
0: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं।
1: हाँ जय आनंद, यही सच्चाई है और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित है, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक होती है।
0: तो भाभी, अब ये बताइए कि लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है?
1: देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर आप हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो सकता है और उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
0: मतलब ये तो बहुत ही गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है टीकन भाभी?
1: हाँ बिल्कुल, अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही हीट लू स्ट्रोक में बदल सकती हैं, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती हैं। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इसमें व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसीलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
0: तो फिर भाभी, इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हम सब के लिए, घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
1: देखिए आरजे आनंद, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिएंगे, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसीलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ देर में पानी पीते रहे। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडक रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
0: चिकन भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। अब ये ORS क्या होता है और ये कब लेना चाहिए टीकन भाभी?
1: बहुत अच्छा सवाल है आरजे आनंद। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को पूरा करता है। जब हम बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं, शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
0: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है?
1: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी हो रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए। और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, घर पर भी घोल बनाया जा सकता है। 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत ही आसान है और हर घर में इसे कोई भी बना सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारियाँ कितनी बड़ी मदद कर सकती हैं।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों हैं जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
0: हाँ, ये तो सही बात बोली टीकन भाभी आपने। अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
1: बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाए, और जब भी निकले तो शरीर को ढककर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
0: क्या बात है टीकन भाभी, और खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसीलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा। ये ना सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
0: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए भी तो और भी मुश्किल होगा उनका ये।
1: आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदले। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी हवा मिले वहाँ थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा करें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं, तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
0: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
1: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विषय ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
0: बिल्कुल टीकन भाभी, अगर सच में किसी को लू लग जाए टीकन भाभी, तो उसे उस समय क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ऐसे में वो क्या करें।
1: ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके शरीर पर ठंडा पानी डाले या गीला कपड़ा रखे, ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
0: भाभी एक बात और बताइए, ये गर्मी तो हमें बहुत परेशान कर रही है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं?
1: अरे आरजे आनंद, जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं, बल्कि कई बार उनमें उनसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव या साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसीलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
0: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए, जो बोल तो नहीं सकते लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेलते हैं जितना हम।
1: बिल्कुल आरजे आनंद, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भरकर रख दे, तो वे किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा होता है, और यही असली इंसानियत है।
0: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाई है। गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रहा, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ी समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हम बस अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचना, हल्के और सूती कपड़े पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे जरूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, कोई बच्चा हो, या कोई मजदूर हो, या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही हमारी असली ताकत है श्रोताओं। तो याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहे हम सब तैयार, और एक बात, धूप से बचाव है जरूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। क्या बात है श्रोताओं, भाभी आपकी बातें सुनकर एक बात समझ आ रही है कि अगर हम लापरवाही करेंगे तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है हम सभी के लिए। क्या आपने भाभी कभी कोई ऐसा मामला देखा है जहाँ लापरवाही भारी पड़ गई हो?
1: हाँ आरजे आनंद, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव के पिछले साल एक छोटा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम करते थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी, लेकिन बच्चे को भी साथ ले गए। तेज धूप थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पिला देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया, और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था, और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
0: ये तो बेहद ही दुखद है भाभी।
1: हाँ अजय आनंद, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी पिला दिया जाता अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
0: सही कहा टीकन भाभी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसीलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
1: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं है, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
0: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं श्रोताओं, लेकिन जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं एक प्यारी सी शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई।
0: मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद, अब लेता हूँ आपसे अलविदा। फिर मिलूंगा इसी शो में, यानी सेहत सही लाभ कई के एक और नए विषय और एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए, और हाँ दोस्तों, पानी पीते रहिए और से रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हाँ, याद रखिए, पानी पीते रहना ही आपकी एक सही जिम्मेदारी है। छाँव में रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। अच्छा, चलिए श्रोताओं, अब मैं लेता हूँ आपसे जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।
2: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
6: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
7: कॉल 8826213131।
8: टायर लो सोना जीतो।
9: क्या?
8: जी हाँ,
10: चावला टायर
8: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
10: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
11: अपोजिट
10: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
11: ऑफर वैलिड टिल 10th June, TNC अप्लाई।
12: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, और मेरा नाम आनंद है और प्रोग्राम है खेती किसानी। आज हम बात करेंगे, अब किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी किसान भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं या जो किसानी खेती किसानी नहीं भी करते हैं, आज उनके लिए भी बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस प्रोग्राम के जरिए। तो आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज आपको तमाम सारी जानकारियां मिलेंगी। और मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि कोई ऐसा एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में जरूर होना चाहिए जिससे हम ढेर सारी बातचीत करें, कोई तो ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए जिनसे हम अपने क्वेश्चन के आंसर ले सकें। हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं जो हमारे किसान भाई लगातार हमें संदेश पहुंचाते हैं। तो आज हमने आपके सवालों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही खास मेहमान को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं श्रोताओं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पिराई त्र 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद में गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमने डॉक्टर विनय कुमार सिंह को अपने
7: स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
9: धन्यवाद सर।
7: जी सर, मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को आप एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं।
9: जी बिल्कुल सर, आपके FM मुरादाबाद के समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम और सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी गजरौला से हूं, और मैं बेसिकली आज किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर आज चर्चा करने के लिए आपके स्टूडियो में मौजूद हूं। आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने हमें अवसर दिया और अपने स्टूडियो में बोलने का मौका दिया। आज का जैसे कि आपने अभी विषय में जो है चर्चा किया है कि आज का हमारा विषय क्या है, तो गन्ना सर्वेक्षण जो कि प्रत्येक वर्ष हमारे प्रदेश में और पूरे देश में हालांकि चलता है जहां जहां गन्ना उत्पादक होता है।
7: जी जी।
9: तो गन्ना सर्वेक्षण जो है क्यों जरूरी है और इसमें किसानों की क्या भूमिका है, इस विषय के ऊपर हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे।
7: क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जो है बारे में हमारे श्रोताओं को बताया, थैंक यू सो मच। और आपने हमारे टॉपिक का भी जिक्र कर दिया इसी में, जैसे कि आपने कहा कि आज हम गन्ना सर्वेक्षण क्या है इसके विषय में तमाम सारी बातचीत करेंगे। तो श्रोता साथी जितने भी हमें सुन रहे हैं, जो भी किसान भाई हमें सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम के जरिए आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया ये जो हमारा प्रोग्राम है ये 1 मई से 30 जून तक चल रहा है ना सर।
9: जी जी जी बिल्कुल।
7: तो सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि गन्ना सर्वेक्षण आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे लिसनर्स को बताएं।
9: जी बिल्कुल, किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में समझना जरूरी होता
7: जी,
9: है।
7: जी
9: जी, गन्ना सर्वेक्षण एक प्रकार की प्रक्रिया होती है।
7: जी सर।
9: जिसके माध्यम से किसानों को खेत में बोए गए जितना भी क्षेत्रफल होता है उसकी किस्म क्या लगाई हुई है और फसल की स्थिति क्या है उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हर वर्ष किया जाता है। यह कार्य गन्ना विभाग और चीनी मिल दोनों के तत्वाधान में किया जाता है, ताकि किसानों को सही पर्ची, समय पर पर्ची, भुगतान और अन्य सुविधाएं आदि सभी चीजें मिल सकें। ये है हमारा गन्ना सर्वेक्षण का उद्देश्य।
7: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है चर्चा करी विस्तार से। सर मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि गन्ना सर्वेक्षण किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
9: जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये हमारा पॉइंट, क्योंकि सही सर्वेक्षण से किसानों का वास्तविक गन्ना क्षेत्र दर्ज होता है
7: जी,
9: जिसे उन्हें समय पर गन्ना पर्ची मिलती है और डाले गए या कह सकते हैं कि आपूर्ति किए हुए गन्ने का उचित मूल्य उनको मिलता है तथा सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है। गलत सर्वेक्षण से किसान का आर्थिक नुकसान भी हो सकता है।
7: अच्छा सर, किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, जो आपको लगता है कि छोटी छोटी सावधानियां अक्सर किसान भाई भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, तो क्या रखनी चाहिए।
9: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाई जो है सर्वेक्षण के समय बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको करवाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि आधारशिला अगर है तो हमारा सर्वेक्षण है, सर्वेक्षण अगर गलत हो जाएगा तो उनको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कुछ जो है सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं। जैसे पहला है हमारा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें, जैसे वो लोग क्या करते हैं कि स्वयं ना होकर के किसी को भेज देते हैं कि आप चले जाइए, जिसको उस गन्ने की किस्म, उस गन्ने की जो है कितना क्षेत्रफल है इत्यादि जो है जानकारी नहीं होती है, जानकारी के अभाव में वो गलत सूचनाएं वहां पे दर्ज करा देते हैं, जिसका उनको नुकसान आगे चल करके उठाना पड़ता है। तो मेरा अपील ये रहेगा कि किसान भाई खेत पर स्वयं उपस्थित रहें, और दूसरा है गन्ने का सही क्षेत्रफल बताएं। हालांकि वो सर्वे अपने आप ही करते हैं, एक्चुअल जितना भी उनका एरिया आएगा वो उनको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसी जानकारी वो मांगते हैं तो क्षेत्रफल अपना सही बताएं। और तीसरा है हमारा गन्ने की सही किस्म एवं बुआई की जानकारी अवश्य दें, क्योंकि गन्ना अभी हमारा बढ़वार के समय पे है, गन्ने की जो आइडेंटिफिकेशन होती है तो उनके कई सारे चरण होते हैं, कुछ की पौध पे निर्भर करती है, कुछ की उसके गन्ने की रंग पे निर्भर करता है, कुछ उसकी गांठों से उसकी जो है पहचान होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनको पहचानना अभी इस समय पे बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकता है, तो जो भी किस्म आपने बोई हुई है तो वो सटीक और सही जानकारी उपलब्ध कराएं। और अगला पॉइंट हमारा है कि किसी भी गलती को तुरंत जो है संबंधित अधिकारी को अवश्य बताएं। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने अधिकारी को जो वहां पे मौजूद है सर्वेक्षण के समय, तो उसको आप अवश्य बताएं। सर्वेक्षण होने के उपरांत रिकॉर्ड की जांच अवश्य करें। जितना भी रिकॉर्ड आपको स्लिप मिलता है, स्लिप में एक बार चेक कर लें। अगर उसमें कोई भी आपको त्रुटि लग रही है जिसमें या संशोधन की आवश्यकता है, तो उस चीज का आप जांच करें और तुरंत संबंधित अधिकारी या कार्यालय में संपर्क करके उसको संशोधित अवश्य कराएं।
7: किसानों को सर्वेक्षण के समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसी पर हम बात कर रहे थे अभी। बहुत अच्छे से डॉक्टर विनय कुमार जी ने इस पे चर्चा करी। सर, अगर मैं आपसे वहीं दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ूं, एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि गन्ना सर्वेक्षण की पर्ची वितरण से क्या संबंध है, इसके विषय में अगर थोड़ा आप बताएं तो।
9: जी बिल्कुल, देखिए आधारशिला हमारा सर्वेक्षण होता है
7: जी।
9: गन्ना पर्ची सर्वेक्षण के आधार पर ही जारी होती है। यदि सर्वेक्षण सही होगा तो किसान को उसकी उपज के अनुसार समय पर पर्ची प्राप्त होगी। गलत सर्वेक्षण से पर्ची कम या देरी से मिल सकती है, जिससे किसान भाई को आगामी गन्ना आपूर्ति बाधित हो सकती है
7: जी। ओके, गन्ना सर्वेक्षण में किसानों की भूमिका क्या रहती है सर, क्या है मतलब सबसे ज्यादा उनकी भूमिका?
9: जी बिल्कुल, देखिए किसानों की सक्रिय भागीदारी बहुत ही आवश्यक होती है
7: जी।
9: किसान सही जानकारी देकर, सर्वेक्षण टीम का सहयोग करके तथा रिकॉर्ड की पुष्टि करके पूरी प्रक्रिया को सफल बना सकते हैं। एक जागरूक और सफल गन्ना उत्पादक किसान सर्वेक्षण के दौरान गहनता से और बड़ी ही सूझबूझ से कार्य करता है, क्योंकि वह जानता है उसकी आगामी गन्ना आपूर्ति इसी सर्वेक्षण पर निर्भर करती है। तो सर्वेक्षण में किसानों की अहम और बहुत ही सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए
7: जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों पर जो है हमारे साथ बातचीत करी और आगे भी हम आपसे करते रहेंगे। एक सवाल है, आधुनिक तकनीकी से गन्ना सर्वेक्षण में क्या लाभ हो रहा है, इस विषय में थोड़ा सा बताइए हमारे किसान भाइयों को।
9: जी बिल्कुल, देखिए आधुनिकता दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जा रही है और जैसे कि डिजिटल इंडिया हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मोटो है और सभी लोग फॉलो भी कर रहे हैं और हमारा देश अग्रसर भी है डिजिटल इंडिया की ओर।
7: जी जी,
9: आजकल क्या है कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, डिजिटल प्रणालियां फॉलो हो रही हैं, तो हर क्षेत्र में एक जो है एक क्रांति सी आई है जब से ये डिजिटल इंडिया चला है। तो इस गन्ना सर्वेक्षण में भी आजकल मोबाइल ऐप और डिजिटल प्रणाली के माध्यम से सर्वेक्षण हो रहा है, जो कि अधिक पारदर्शी है, सुगम है और तेज है। इससे गलतियों की संभावना कम होती है तथा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा हमारा क्या है कि जैसे कि अभी जानकारी के अनुसार, जैसे सभी लोग पहले क्या होता था कि पर्चियां कार्यालय में जाके पूछते थे कब आएगी और कब हमारा भुगतान आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है गन्ना विभाग ने एक ई गन्ना ऐप लॉन्च किया है, जिसकी जानकारी आप जो है ई गन्ना ऐप से उपलब्ध रहती है। इस ई गन्ना ऐप में किसान भाई अपनी कुल सर्वे, जो कि उनका सर्वेक्षण हुआ है, तो कुल कितना सर्वेक्षण हुआ है इसकी भी जानकारी मिल सकती है, कितने उनके सर्वेक्षण में प्लॉट शामिल हुए हैं उसकी भी जानकारी रहती है, और प्रत्येक प्लॉट का एरिया कितना है वो भी उनको पता चल जाता है, कुल पर्चियां उनकी कितनी बनी है, उनका बेसी कोटा क्या है। बेसी कोटा असल में पिछले 5 वर्षों की आपूर्ति के आधार पर बनता है। इसमें रेशियो रहता है पिछले 2 वर्षों का रिकॉर्ड, फिर पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड और फिर पिछले 5 वर्षों का। इनमें से जो भी बेसी कोटा टोटल आपूर्ति जोड़ी जाती है, फिर उनको जितने ही भी वर्ष होते हैं, जैसे 2 साल है तो 2 से डिवाइड करना, 3 साल का लिया तो 3 साल से डिवाइड करना, और अगर 5 साल का लिया है तो 5 से डिवाइड करना। इनमें से जो भी जैसे मात्रा में ज्यादा होगा, जितने कुंटल उसमें ज्यादा होगा, तो उसी को ही बेस मान करके उनकी पर्चियां बनाई जाती हैं। तो इसमें बेसी कोटा की भी जानकारी मिल जाती है, कुल सप्लाई पिछले 5 वर्षों की, ये भी किसान भाई अपने आप स्वयं में ही ई गन्ना ऐप पे देख सकते हैं। तो इत्यादि जो है अनेकों प्रकार की जानकारी हमारी ई गन्ना ऐप में मिल जाती है, जिसमें उनको भुगतान, आपूर्ति और जो है सारी किस किस डेट पे निकली है, अगर उन्होंने कोई पर्ची नहीं लगा पाए, गन्ने की छिलाई किसी कारणवश नहीं हो पाई, तो वो अगर उनकी मिस हो जाती है पर्ची, तो उसकी भी जानकारी उनको मिलती रहती है। तो ई गन्ना ऐप बहुत ही सुगम और आसान और बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि हमारे लिए यूजफुल होता है, किसान भाइयों के लिए भी।
7: जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने इस पे जो है जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, यदि किसी किसान की फसल सर्वेक्षण में छूट जाए तो वो क्या करना चाहिए, वो क्या करे इस सिचुएशन में?
9: जी बिल्कुल, देखिए अहम मुद्दा है
7: जी।
9: ऐसी स्थिति में किसान तुरंत अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग
7: जी
9: अथवा संबंधित चीनी मिल कार्यालय में संपर्क करें तथा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके संशोधन करवा सकते हैं। सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के उपरांत कृषकों को एक स्लिप, जिसको कच्चा कैलेंडर भी कह सकते हैं, ये अत्यधिक उपलब्ध करा दिया जाता है, जिसमें उनको प्रत्येक जो है कह सकते हैं कि प्लॉट का जिक्र उसमें रहता है, एरिया कितना है, किस्म क्या लगाई है, तो सब कुछ उसमें रहता है। यदि किसी किसान भाई का कोई प्लॉट छूट जाता है अथवा गन्ना प्रजाति का चयन गलत हो जाता है आदि का संशोधन 15 कार्य दिवस के अंदर अपनी गन्ना समिति अथवा गन्ना विभाग में संपर्क करके उसको करा सकते हैं।
7: डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, गन्ना सर्वेक्षण का चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में थोड़ा बताएं।
9: जी बिल्कुल, देखिए गन्ना सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। सही सर्वेक्षण से चीनी मिलों को गन्ने की उपलब्धता का सही अनुमान लगता है कि क्योंकि उनके पास में क्षेत्रफल ज्यादा रहता है, कई सारे गांव रहते हैं, कई सारी गन्ना समितियां होती हैं, उन समितियों में कई सारे किसान होते हैं, तो क्षेत्र में कितनी गन्ने की उपलब्धता होती है इससे उनको अनुमान मिल जाता है। दूसरा चीज है गन्ने की पर्चियों का निर्धारण और पर्चियों को जारी करना यानी कि निर्गत करने की योजना वो आसानी से बना सकते हैं, जिससे मिल संचालन और उत्पादन योजना बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है।
7: जी बहुत ही बढ़िया। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम खेती किसानी और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विनय जी मौजूद हैं स्टूडियो में और आज हम बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं गन्ने के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगामी गन्ना पेराई सत्र 2026-27 हेतु प्रत्येक जनपद गन्ना सर्वेक्षण 1 मई से 30 जून तक चल रहा है और इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और सवाल, गन्ना सर्वेक्षण में सामान्य गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं, इस पर अगर हम एक नज़र डालें तो।
9: जी बिल्कुल, देखिए सावधानी ही हमारी जो है जागरूकता की ओर अग्रसर करती है।
7: बिल्कुल सही कहा।
9: देखिए अगर आप सावधानी से काम करेंगे तो गलतियों की संभावना नहीं रहेगी।
7: नहीं रहेगी,
9: जी। इसमें अगर फिर भी अगर सामान्य गलतियां कौन कौन सी अक्सर किसान कर देते हैं तो उनका हम जिक्र करेंगे। जैसे पहला, गलत क्षेत्रफल दर्ज हो जाना।
7: जी जी।
9: दूसरा है हमारा गलत किस्म दर्ज हो जाना या गलत किस्म उन्होंने उसमें दर्ज कर लिया है।
7: जी जी।
9: तीसरा हमारा है फसल छूट जाना, जैसे फसल का अब यहाँ पे है हमारा कि जैसे कोई फसल लगी हुई है और उन्होंने जो है उसको छोड़ दिया है तो वो प्लाट छूट जाता है, तो प्लाट आप ऐड करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या कह सकते हैं कि फसल प्रकार, जैसे कि कोई किसान है उसके यहाँ पेड़ी है तो पेड़ी की जगह पे पौधा हो गया है, या पौधा है, पौधे में भी जो है कैटेगरीज होती हैं, एक शरदकालीन होता है जिसको ऑटम प्लांटिंग कहते हैं और एक वसंतकालीन पौधा होता है जिसको हम लोग स्प्रिंग प्लांटिंग कहते हैं।
7: जी।
9: तो जैसे पौधा है, किसान ने बोया हुआ है शरदकालीन, जिसकी पर्चियां जो है अमूनता चीनी मिल पहले जो है निर्गत करती है, लेकिन अगर धोखे से वो वसंतकालीन हो जाएगा तो किसानों को वो पर्ची विलंब से मिलेगी, तो इससे किसानों को दिक्कत हो सकती है और उनका जो है प्लॉट देरी से उसकी सप्लाई हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्या गलती होती है, जैसे किसान द्वारा जैसे सही जानकारी नहीं देना, जैसे जो भी उनसे पूछा जाता है तो वो अगर सही और सटीक जानकारी नहीं देंगे तो उसमें भी जो है गलतियां हो सकती हैं। और अगला हमारा जो है सामान्यतः गलती कौन सी करते हैं, जैसे रिकॉर्ड की जांच नहीं करना, जैसे उनको स्लिप मिलता है, उन्होंने सर्वे करवा दिया, स्लिप लेकर के अपने घर पे रख लिया,
7: हाँ जी।
9: वो गलत है, आप स्लिप लीजिए, उसको आप पढ़िए, आप नहीं अगर पढ़ पा रहे हैं तो आपका घर में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो आप उसके माध्यम से अपने रिकॉर्ड की जो है जांच अवश्य करें, ताकि आपका कोई प्लॉट तो नहीं छूटा, प्लॉट छूटा तो किसी उस पर्टिकुलर प्लॉट का कोई हमारा जो है क्षेत्रफल कम या ज्यादा तो नहीं हुआ, या गन्ने की प्रजाति गलत तो नहीं हुई, या गन्ने की किस्म पेड़ी अथवा पौधा या पौधे से पेड़ी ये तो नहीं हो गया, तो इत्यादि तरीके की ये गलतियां मुमता होती हैं। इनको विशेषतः किसानों को ध्यान में रख करके अपना जो है ये सर्वेक्षण कार्य पूरा कराना चाहिए।
7: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज हमारा विषय था गन्ना सर्वेक्षण का महत्व एवं किसानों की भूमिका और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर विनय कुमार साहब से और बहुत अच्छा लगा सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, जो भी किसान भाई हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं या जो भी लोग सुन रहे हैं उनको तमाम जानकारियां जो आपके द्वारा दी गई हैं वो उनको जरूर काम में आएंगी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है आरजे आनंद और एफएम मुरादाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.9 96 MHz पे प्रोग्राम है खेती किसानी। डॉक्टर साहब, तमाम चर्चाएं हमने कर ली आपके साथ मिलकर गन्ने के ऊपर, अब मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा जो हमारे तमाम श्रोता साथी किसान भाई आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे जाते जाते इस प्रोग्राम में?
9: जी बिल्कुल, देखिए आपने जैसे ही शुरुआत में आपने जिक्र किया था गन्ना सर्वेक्षण के ऊपर,
7: जी जी,
9: तो अपने जो है उत्तर प्रदेश राज्य में प्रत्येक जनपद में जो कि हर बार हर साल होता है, ऐसे ही इस साल भी जो हमारा आगामी गन्ना पेराई सत्र है, यानी कि जो आगे आने वाला पेराई सत्र है 2026-27, इसके लिए गन्ने का सर्वेक्षण का कार्य अभी से प्रारंभ हो गया है जो कि 1 मई से 30 जून तक होना सुनिश्चित हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे 1 मई से 30 जून तक होता है, इसमें अभी क्या है टेम्परेचर ज्यादा है, धूप तेज है, तो अमूनता क्या है कि कृषि विभाग और ये चीनी मिल दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है और ये धूप की वजह से ये प्रातःकाल जो है अतिशीघ्र कह सकते हैं कि जल्दी सुबह इसको जो है किया जाता है ताकि धूप से बचा जा सके और बचना भी जरूरी है। तो देखिए ये कार्यक्रम हमारा 1 मई से 30 जून 2026 तक चलेगा
7: जी।
9: प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है, यानी कि प्रत्येक जिले में समितियां होती हैं गन्ना समितियां, किसान भाई सभी लोग जानते होंगे, तो प्रत्येक समिति में यह कार्य चल रहा है और प्रत्येक समिति में गन्ना पर्यवेक्षक गण लगे हुए हैं, इन काम को बहुत ही जो है लगन से कर रहे हैं इतनी धूप और इसकी वजह से। लेकिन फिर भी क्या है कि जो है गलतियां वगैरह होती रहती हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को अच्छी तरीके से करना है और दूसरा क्या है कि अपने क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क बना के रखना है। जो भी किसान भाई हैं क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक प्रत्येक गांव के होते हैं, उनसे संपर्क में रहना है। सभी किसान भाई गन्ना सर्वेक्षण को गंभीरता से लें। प्रत्येक गन्ना समिति में अनेक गांव होते हैं तथा प्रत्येक गांव में अनेकों किसान भी होते हैं, अतः जिस दिन आपके गांव में सर्वे का कार्य हो रहा हो तो आप सभी किसान भाई अपने प्लाट पर स्वयं उपस्थित हों, किसी और को ना भेज करके स्वयं उपस्थित हों ताकि आप सही उनको जानकारी दें। सही सर्वेक्षण ही समय पर पर्ची, उचित भुगतान और किसान हितों की सुरक्षा का आधार होता है।
7: डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी श्रोता ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको तमाम जानकारियाँ मिली हैं आपके द्वारा और मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और तमाम चर्चा आपने करी, इतनी खूबसूरती के साथ आपने जानकारियाँ दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपने इतना समय हमारे साथ साझा किया उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे भी हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए स्टूडियो में आते रहें।
9: जी बिल्कुल बिल्कुल
7: जी। सर कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है आप कहना चाह रहे हैं हमारे किसान भाइयों से?
9: देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि सही गन्ना सर्वेक्षण न केवल किसान की आय को सुरक्षित करता है
7: जी बिल्कुल,
9: बल्कि चीनी उद्योग एवं कृषि व्यवस्था को भी मजबूत बनाता है।
7: हाँ जी हाँ जी।
9: इसलिए सभी किसान भाई सर्वेक्षण कार्य को पूर्ण सहयोग करें एवं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें ताकि आपकी पर्चियों की कैलेंडरिंग सही से हो सके और आपकी आपूर्ति सुचारू रूप से चल सके। आपकी आपूर्ति ही आपकी आय का आधार होती है।
7: सर आपने ये जो लास्ट में बात बताई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण थी।
9: जी जी बिल्कुल
7: जी,
9: ये जो है क्योंकि आपकी जो भी आपूर्ति रहेगी यही आपकी आय का आधार है। आपकी पर्चियां, आपका खेत, आपका गन्ना कितना भी हो, अगर समय पर पर्ची आपको नहीं मिलेगी तो आपकी आपूर्ति बाधित होगी, क्योंकि आपूर्ति अगर आपकी बाधित हो जाएगी तो आपको भुगतान भी बाधित ही मिलेगा।
7: बहुत बहुत धन्यवाद सर और किसान भाइयों थैंक यू सो मच, आपने भी इसको बहुत ध्यान से सुना है, मुझे पता है आपको भी बहुत जानकारियां मिली होंगी, तो ऐसी जानकारियों से भरे प्रोग्राम्स आपके लिए आते रहेंगे। आप बस ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 MHz, जहां बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। डॉक्टर साहब आपको कैसा लगा हमारे ऑफिस में आके हमारे साथ ये संवाद करके, बातचीत करके, वार्ता करके?
9: जी बिल्कुल, देखिए आप लोगों ने हमें यहां पे बुलाया
7: जी,
9: मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह अपनी तरफ से, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से और आपके स्टूडियो की भी तरफ से समस्त श्रोतागणों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों से जुड़ने का एक अवसर हमको मिला और इस अवसर को उपलब्ध कराने के लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने यहां पे अवसर के लिए मुझे आमंत्रित किया है।
7: सर बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको रेडियो में आके, पहली बार आए?
9: जी नहीं, मैं जो है AIR
7: अच्छा, आकाशवाणी
9: आकाशवाणी में
7: जाते रहते होंगे
9: जी। आकाशवाणी हाँ कोटा में मैंने एक दो बार मैंने
7: प्रोग्राम्स किए
9: जी, प्रोग्राम किए हैं खेती किसानी से संबंधित। आपके स्टूडियो में मैं पहली बार
7: मुरादाबाद में
9: जी जी।
7: अच्छा, तो आप मुरादाबाद से हैं सर?
9: जी नहीं जी, मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी,
7: लखीमपुर
9: जी, उत्तर प्रदेश से ही।
7: ओके,
9: बट अभी मैं श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कृषि विभाग में अभी जो कार्यरत हूँ।
7: क्या बात है सर, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा सर, और थोड़ा सा आपके बारे में जान लिया मैंने, क्योंकि वो जब हम बातचीत करते हैं तो संवाद के दौरान हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा जो है ना वो झलकती है।
9: बिल्कुल,
7: तो आपकी लैंग्वेज में वो लग रहा था मुझे कि आप थोड़ा सा उस साइड से ही बिलोंग करते हैं शायद। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे आप दोबारा भी जरूर आए।
9: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप हमें अवसर देंगे
7: जरूर सर, जरूर, अरे जरूर सर, डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और श्रोताओं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुनते रहिए ऐसे ही आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड में कुछ और नए खास मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।

0: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
5: टायर लो सोना जीतो।
6: क्या?
5: जी हाँ,
7: चावला टायर
5: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
7: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
8: अपोजिट
7: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
8: ऑफर वैलिड टिल 10th जून।

0: दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम का नाम है खेती किसानी। जी हाँ किसान भाइयों, राम राम आप सभी को। कैसे हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं एक बार फिर से हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मौजूद है। जी हाँ, आपने इनको पहले भी सुना है, डॉक्टर विनय कुमार जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है। एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं आप ही के काम के विषय पर। जी हाँ, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में गन्ने की फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी पर बात करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर विनय जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मुरादाबाद के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर। धन्यवाद
0: जी। जी सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय एक बार फिर से निकाला और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद सर। जी
0: सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्मियों में गन्ने की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है क्या सर?
1: जी हाँ, देखिए गर्मियाँ क्या है कि सभी लोगों के लिए जल आवश्यक होता है, और फिर बेसिकली जब गर्मियाँ चल रही हो तब तो वो जो है जल मांग जो है कई गुना बढ़ जाती है, चाहे जीव हो, चाहे जीव में कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या हमारी फसलें हो, या हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, कई गुना हमारा वो बढ़ जाता है। तो जैसे गन्ने की बात करें तो गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। हल्की भूमि में सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है।
0: जी ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है क्या, और इससे पानी की बचत होती है क्या, और पौधों को पर्याप्त नमी भी मिलती है क्या?
1: जी देखिए, ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बेसिकली बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, हमारे जैसे जहाँ पे जल की समस्या होती है, सिंचाई जल जहाँ पे कम होता है, और बाकी अगर अमूनता अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि प्रत्येक किसान को ये चीजें धीरे धीरे अडॉप्ट करनी चाहिए।
0: हाँ जी,
1: क्योंकि
0: हाँ जी,
1: एकदम
0: हाँ
1: से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपलाइन पड़ती है, उसमें गन्ने की जो लाइन होती है उसी में ये पाइपलाइन डाल करके बूंद बूंद पानी डाला जाता है। इसमें अतिरिक्त जल जो होता है हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल हम पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई जैसे फर्टिलाइजर देना है, जिसको उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक देना है, या कोई और हमको जो है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी हमको देनी है, तो हम सिंचाई जल के साथ में उनको प्रेषित करके हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त जल भी हमारा बचता है और किसान की जो है कह सकते हैं कि उनको जो है अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक बार हमारी पाइपलाइन डल जाती है तो हमेशा वो यूज किया जा सकता है।
0: जी डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ता है और फसलों से पोषक तत्व और नमी भी छीन लेता है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे समय पर जो है निराई गुड़ाई आवश्यक होती है।
0: हाँ जी,
1: कोई भी फसल हो।
0: हाँ जी, हाँ
1: गन्ने की ही नहीं बल्कि कोई भी फसल हो, समय पर निराई गुड़ाई आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग जो है वीडिसाइड भी कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए।
0: जी जी,
1: और प्रयास करना चाहिए कि अगर हाथों से इस काम को कर सके, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, और हमारे अगर हाथों से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उस स्थिति में हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खेत को खरपतवार मुक्त बनाए रखना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा खरपतवार होगा उतनी ही फसल हमारी गुणवत्ता कम होगी और उसमें पैदावार भी घट जाएगी।
0: ओके अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए अर्थिंग अप जिसको हम लोग मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं।
0: हाँ जी, हाँ।
1: जब पौधे जो है हमारे बढ़वार की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें कई सारी हमको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, जैसे कि हम अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमारा बरसात या वर्षा ऋतु आने से पहले अंतिम जुताई होने के बाद हम इसमें जो है अर्थिंग अप की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी जो होती है बीज की क्यारियों के दोनों लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, वहाँ पे निराई गुड़ाई करके, और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी किस्म की करके उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिलर्स जिनको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा निकलते हैं, और मिट्टी चढ़ने से हमारा रूट एरिया मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल गिरती नहीं है, गिरने से बच जाती है। और यदि हमारी फसल गिर जाती है ऐसा नहीं, अगर हम करेंगे और हमारी फसल गिर जाती है तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, आप लगातार तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं, इसी बीच में आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक है क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए संतुलित जैसे हम लोग भी भोजन की थाली जो हम लोग लेते हैं तो उसमें भी हमको दाल चावल और रोटी सब्जी और सलाद अचार इत्यादि तरीके के हम लोग संतुलित चीजें खाएं। जितना ही संतुलित हम लोग रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ भी संतुलित रहेगी। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है, जैसे गन्ने के लिए है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश इत्यादि का संतुलित उपयोग करें। मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं, जैसा ही परीक्षण रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उर्वरक देना ही हमको लाभकारी रहता है। जिंक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होने पर उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
0: जी ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में कई प्रकार के कीट एवं रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या?
1: जी बिल्कुल, देखिए गर्मी चल रही है इसमें टॉप बोरर पायरिल्ला दीमक इत्यादि कीटों का नियमित निगरानी रखें। अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो उसका समुचित उपचार करें। रोग ग्रसित पौधों को तुरंत हटाएं। कृषि विभाग की सलाह के अनुसार दवा का अवश्य प्रयोग करें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या किसान भाई

0: और हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम नियमित ऐसा करते रहेंगे तो हमारी एक दिन भूमि बंजर हो सकती है, तो इसलिए हमको ट्रेस मल्चिंग अपनाना चाहिए। ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे गन्ने की सूखी पत्तियों को खेत में बिछाने से मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है, हमको ज्यादा अंतराल पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रेस मल्चिंग नहीं करेंगे तो हमको जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे हमारे पृथ्वी में और हमारे जो है खेत की ऊपरी सतह पे पड़ेंगी, तो उसमें जल हानि ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, ट्रेस मल्चिंग अपनाएंगे तो हमारी सूखी पत्तियां जो है उस डायरेक्ट सनलाइट को रोक लेंगी, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की नमी हमारी संरक्षित रहेगी। इससे क्या होगा कि अगर पलवार या जैसे कह सकते हैं ट्रेस मल्चिंग ऊपर पड़ी हुई है तो उसमें नीचे की तरफ से अंकुरित होने वाले खरपतवार भी कम से कम आएंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि कम खरपतवार भी जो है हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं। क्योंकि खरपतवार अगर होंगे तो वो भी सूक्ष्म जीव अवशोषित करेंगे, जल भी अवशोषित करेंगे और हमारी फसल के बीच में कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो ट्रेस मल्चिंग जो है अगर संभवतः जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ी में उसको करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार से इस पे चर्चा करी। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, यहीं अच्छी पैदावार के लिए उन्नति प्रजातियां भी महत्वपूर्ण है क्या?
0: जी बिल्कुल, अहम भूमिका रहती है उन्नतशील प्रजातियों का, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ऐसी कहावत हमारे गांव देहात में चलती है। किसान भाई सभी लोग जानते हैं प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। चीनी मिलें क्या करती हैं, जब चीनी मिल प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होता है, तो वो यही कहती हैं कि जो भी प्रजातियां हैं जो प्रमाणित हैं या अनुशंसित हैं उन्हीं को ही आप लोग सप्लाई के लिए चीनी मिल में आपूर्ति करें। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी रिजेक्ट वैरायटी को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनको तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपूर्ति का समय आता है तब उनको दिक्कत होती है। तो हमारी अपील है समस्त किसान भाइयों से कि अपना जो है गन्ना क्षेत्र जो है वो प्रमाणित और अनुसूचित प्रजातियों का ही चयन करके बोएं, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें, इससे उत्पादन और चीनी प्रतिशत दोनों ही वृद्धि होगी और दोनों को ही लाभ होगा, चाहे चीनी मिल हो चाहे किसान भाई हो, दोनों लाभकारी होंगे तभी ये जो है चल पाएगा। अगर किसान को लाभ होगा और चीनी मिल घाटे में चली गई तो वो ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो आप ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिनमें शर्करा प्रतिशत यानी कि जिसमें शुगर परसेंटेज भी हो और पैदावार भी अच्छी हो, तो दोनों के ही कोलेबोरेशन से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। तो हमारी अपील है कि प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही किसान चयन करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो आप देना चाहें।
0: जी बिल्कुल, आइए कुछ हम महत्वपूर्ण सुझावों जानते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं। जैसे खेत में जल भराव बिल्कुल ही ना होने दें, जैसे कि हमारे आज के चर्चा के विषय में ही लिखा हुआ है कि हमारा जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यानी कि हमारी जो समर सीजन चल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है, धूप की किरणें बहुत तेजी से मतलब हमारे शरीर को हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जल भराव अपने खेत में कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जल भी गर्म होगा और गर्म जल में अगर हमारा पौधा रहेगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा और वो अपनी बढ़वार को खो देगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी बढ़वार कम होती जाएगी। जब आवश्यक हो तभी जल आपूर्ति करें, यानी कि तभी उसमें सिंचाई करें। अब व्यर्थ में जल भराव ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश ना करें, जल भराव हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा है समय पर सिंचाई करें, जब आवश्यक हो तभी सिंचाई करें, संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, रोग और कीट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आपने अगर उसका निदान कर लिया और पड़ोस वाले खेत से उड़ करके आपके यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसलिए रोग और कीट का समय पर जो है उपचार जरूरी होता है, तो इसलिए उस पे नजर बनाए रखें। अगला हमारा है कह सकते हैं कि गन्ना जो पत्तियां होती हैं उनको ना जलाएं, जैसे हमने पिछले अभी अपने प्रश्न आपके प्रश्न में जो है हमने बताया था
1: जिक्र किया था
0: कि गन्ने की पत्तियां जो होती हैं उनको जलाया ना जाए, उनको आप मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कई सारी मशीनें आ गई हैं, मल्चर वगैरह आते हैं, उनको पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आपके खेत में बिखेर देता है, जिससे वो आसानी से कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाती हैं। तो गन्ने की पत्तियों को प्रयास करें कि ना जलाएं। अगर आपको नहीं रखना है तो आप वो कंपोस्ट पिट बना करके उसमें आप डाल सकते हैं, जिसकी आप खाद बना करके फिर से अपने फसल में यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है एक

0: तो बिंदु, जैसे कि कृषि वैज्ञानिकों की जो है सलाह लेते रहें, जो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, आपके यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी गण हैं, या समिति के जो गन्ना पर्यवेक्षक गण हैं, उन लोगों से संपर्क में बनाए रहें और उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस श्रृंखला में आपने तमाम जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे, कोई एक प्रेरणादायक मैसेज जो आप देना चाहें?
0: जी देखिए, अभी जैसे कि हमारे शीर्षक में ही है कि ग्रीष्म ऋतु, तो सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, गन्ने की सूखी पत्तियां जो है नहीं जलाएं, मल्चिंग जो है अपनाएं, मल्चिंग नहीं आप कर सकते हैं तो उसको कंपोस्ट पिट में उसको आप डिकम्पोज करके अपनी पत्तियों से खाद बनाएं, जिससे आपको उर्वरक में या फर्टिलाइजर में आपको अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कुछ मेरे पास सवाल भी है हमारे किसान भाइयों के, अगर आप चाहें तो उस पे भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: जी। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि मतलब एक बहुत ही अच्छे श्रोता ने हमें भेजा है, किसान भाई ने, कि गर्मी में गन्ने की सिंचाई कितने दिनों तक और कितने अंतराल पर हमें करनी चाहिए?
0: जी, जैसे कि अभी हमने पीछे बता दिया है कि गन्ना होता है तो उसमें जितनी फसलें होती हैं, सबसे ज्यादा जल मांग अगर किसी फसल की है तो वो गन्ने की है, क्योंकि ये पूरी वार्षिक रहती है, पूरे वर्ष चलती है, इसमें कई सारी सिंचाइयां करनी पड़ती हैं। अमुनता कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा यानी कि तापमान ज्यादा होने के कारण जल मांग बढ़ती है, जैसे ही हम जल मांग आती है तो वो कम दिनों के अंतराल पे ही हमको सिंचाई करनी पड़ती है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर अमूनता इसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
1: जी, एक और किसान भाई का प्रश्न आया था कि क्या गन्ने की सूखी पत्तियां हमें जलानी चाहिए?
0: जी नहीं, अब ये सूखी पत्तियां हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं, इनको हम मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इनका हम जो है जैसे अभी कह सकते हैं कि डिकम्पोज करके हम लोग इसको जो है खाद बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो रोलर एक मशीन आती है उसमें रोल बना करके इनको हम लोग बेच करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक श्रोता और है हमारे जिन्होंने हमें प्रश्न किया है, डॉक्टर साहब की सर्वेक्षण में गलती होने पर क्या करें?
0: देखिए, अगर सर्वेक्षण जैसे कि अगर गन्ना सर्वेक्षण हुआ है, गन्ने के सर्वेक्षण के समय आप जो है अपनी स्लिप अवश्य लें, स्लिप में आप कोई भी गलती अगर पाते हैं तो तुरंत ही संबंधित कार्यालय या अधिकारी से संपर्क करें और उसको संशोधन करने के लिए आप अपील करें।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला, हमारे श्रोताओं को तमाम जानकारियां दी, पूरे विस्तार से आपने चर्चा करी, तो ये एक खास बातचीत खेती किसानी के माध्यम से आप सुन रहे थे, आप एक खास बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर विनय जी के साथ, और आज हमने तमाम विषयों पर चर्चा करी, जैसे हमने गन्ना सर्वेक्षण का महत्व जाना, किसानों की जिम्मेदारी पर हमने बात करी, गर्मियों में गन्ने की वैज्ञानिक देखभाल पर हमने चर्चा करी, सिंचाई उर्वरक ओके, हमने श्रोताओं आज हमने चर्चा करी, साथ ही साथ सिंचाई उर्वरक एवं कीट प्रतिबंधन के ऊपर हमने जो है तमाम चर्चा करी, और अभी मैं डॉक्टर साहब आपसे जाते जाते ये और पूछना चाहूंगा कि आप अगर कुछ और आपको लगता है कि किसान भाइयों को आपने बताना चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते?
0: देखिए, ये जो जानकारी जो भी आपको दी गई है, इसमें हमारा जो अभी जो मौसम चल रहा है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक रहन सहन के लिए है, चाहे हम हों, पशु पक्षी हों, हमारे जानवर हों या हमारी फसलें हों, क्योंकि ज्यादा तापमान में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता।
1: Correct.
0: तो दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, जब तक बरसात नहीं होगी ऐसा ही समय रहेगा, तो इसके लिए हमको अपना और अपनी फसलों का, अपने जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय पर जैसे फसलें हैं तो उनको समय पर पानी देना चाहिए, कोई कीट, कोई रोग या कोई अन्य व्याधि हमारे खेत में अगर हमको प्रदर्शित हो रही है तो उसका अतिशीघ्र हमको जो है उपचार करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया, और श्रोताओं हमें आशा है कि आपको ये जानकारियां बहुत उपयोगी लगी होंगी और आपके लिए सिद्ध भी होंगी, तो यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन से संपर्क कर सकते, हमारे व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, 9837896896 ये हमारे स्टूडियो का नंबर है जो आपके लिए अवेलेबल है, आप इस पे हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम जरूर डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे, और मैं हूं आपका साथी। आनंद, और अब आपसे लेता हूँ अलविदा। अब आपको बोलूंगा टाटा बाय बाय। अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद सर, धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।
2: बहुत बढ़िया।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें एसएस ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।
4: प्रगति पथ पर बढ़ता देश,
5: जन जन तक पहुंचा संदेश।
6: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
7: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: स्वागत अभिनंदन नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद। श्रोताओं, लेकर हाजिर हो गया हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, एक नई शुरुआत और एक नया सफर। जी हाँ श्रोताओं, एक और नए टॉपिक के साथ जुड़ गया हूँ आपके साथ इसी प्रोग्राम में जहाँ पर हम ढेर सारी बातचीत करते हैं और आपको तमाम सारी जानकारियाँ भी देते हैं। आज के जमाने की सोच बदलना बहुत जरूरी है श्रोताओं। वेल, आज सोच बदलो में हमारा टॉपिक क्या होगा, आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं? देखिए, अगर इस विषय पर आपने अपनी सोच को नहीं बदला तो ये चीजें आपका फ्यूचर बदल सकती हैं श्रोताओं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दोस्तों, आज का जमाना ऑनलाइन का है, नौकरियां भी ऑनलाइन मिल रही हैं, लेकिन इसी के साथ बढ़ रहा है एक छोटा सा ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। जी हाँ, आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारा जो विषय है वो है ऑनलाइन जॉब फ्रॉड। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे इसके शिकार होते हैं लोग, और अगर जाने अनजाने में आप इसका शिकार हुए हैं तो कैसे आप इस चंगुल से बाहर निकल सकते हैं, इस ऑनलाइन जॉब फ्रॉड की शिकायत आप कहां दर्ज कर सकते हैं, तमाम सारी जानकारियां आज आपको मिलेंगी इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तो अभी तो सिर्फ सफर शुरू हुआ है, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। चलिए श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, यानी कि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। छोटा सा मतलब छोटा सा। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद जल्द ही आपसे पुनः मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे जिसका नाम है सोच बदलो प्रोग्राम, जो आप सुनते हैं आपके शहर के अपने रेडियो स्टेशन यानी कि अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। तो चलिए श्रोताओं, मिलते हैं जरा सी देर में एक छोटे से म्यूजिकल।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना और इस गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रोग्राम सोच बदलो में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में ऑनलाइन जॉब फ्रॉड जो हो जाता है अक्सर लोगों के साथ। इवन एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक छोटा सा वाक्य मैं जरूर साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले कल की बात बताता हूँ। कल ही एक मुरादाबाद के एक लड़के का मुझे मैसेज आया। उसने मुझे व्हाट्सएप पर मतलब जो है मैसेज किया। उसने लिखा, वर्क फ्रॉम होम है, आप डेली 2000 रुपये कमा सकते हो। सोचिए मुरादाबाद में भी ये चीज लोग कर रहे हैं, आप 2000 रुपये कमा सकते हो। उसने मुझे मतलब पूरी तरीके से ट्रस्ट दिलाया और धीरे धीरे उसने मेरे से एक रजिस्ट्रेशन फीस के लिए भी बोला। मतलब होता है ना कि जब आपको लोग कॉल करते हैं तो आपको ना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए दिल्ली, एनसीआर या मुंबई जैसे शहरों में तो ये चीज बड़ी कॉमन है, लेकिन अगर मुरादाबाद में ऐसी चीज होती है तो यार थोड़ा सा मतलब दुख होता है कि अपने शहर में भी इस तरह की चीजें हो रही है। जी हाँ, खैर मैंने तो भाई साहब उसकी बातों में आके कोई भी ऑनलाइन फीस नहीं दी और ना ही मैंने कोई रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ और सिर्फ फ्रॉडबाजी है। क्योंकि देखिए, अगर कहीं पे भी कोई नौकरी होती है या जॉब के लिए आपको कॉल आता है तो एकदम से आपसे कोई फीस या पैसे नहीं मांगता। माना कि कुछ कंपनियों की पॉलिसी होती है, लेकिन आप तो खुद समझदार हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम तरह की जानकारियां आपके पास सुबह से शाम तक आपके फोन पर आती हैं। अब ऐसे में अगर आप ऑनलाइन जॉब इस फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं तो देखिए ये तो फिर बड़ी बेवकूफी हम कह सकते हैं हो जाएगी, है ना, आपके साथ हमारे साथ। तो हमें क्या करना है ना श्रोताओं, सावधान रहना है, सतर्क रहना है। कई बार ऐसा होता है कि जब ये ऑनलाइन वाले लोग आपको कॉल करते हैं ना, जॉब को ऑफर देते हैं, आप जाने अनजाने में आके पे भी कर देते हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी दे देते हो कि शायद हमारी लाइफ चेंज हो जाए। क्योंकि देखिए, जॉब की तो हर किसी को जरूरत है, हर दूसरे व्यक्ति को काम की जरूरत है, और एक सही काम अगर उसे मिल जाए, उसके सपनों का काम मिल जाए, तो फिर उससे बेहतर क्या ही हो सकता है उसके लिए श्रोताओं। तो बस मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप इमोशनली होकर, आप ज्यादा ख्याली फुलाव ना पकाकर पहले उसकी डिटेल्स निकालें, उसके बारे में चेकआउट करें, इंटरनेट पर सारी चीजें आज की डेट में उपलब्ध हैं, अच्छे से पहले जांच पड़ताल करें, उसके बाद ही कोई शुल्क या कोई ऑनलाइन फीस आप जमा कराएं। अदरवाइज कोई भी पैसा अपनी मेहनत की कमाई का इधर उधर आप वेस्ट ना करें। इसी श्रृंखला में एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है हमारी, उनको भी हम जोड़ेंगे। उनके साथ भी एक वाक्य रहा है ऑनलाइन फ्रॉड जॉब का, उनसे हम जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए, एक छोटा सा अंतराल का समय हो रहा है, एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
0: एक बार फिर से इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, सोच आप बदलोगे तो चीजें आपकी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। वो कहते हैं ना, जब आपकी सोच बदलती है ना तो पूरी दुनिया आपकी बदल जाती है। और आज की जिंदगी को, आज की ये जो जनरेशन है, जो जेंजी है, उसका सोच का बदलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ना इतनी इंडिपेंडेंसी हमने बना ली है, हम हर चीज ऑनलाइन ही चाहते हैं, चाहे हमारा खान पान हो, हमारी शॉपिंग हो, हमारा मतलब चाहे जॉब का हो, कुछ भी व्हाटएवर, हर चीज में हमें लगता है कि यार सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन। ऑनलाइन के चक्कर में ना जो स्कैमर होते हैं, जो फ्रॉडबाजी करने वाले, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, उन्हें मौके का फायदा मिल जाता है। वो ये मौके का फायदा उठा के आप ही का बेवकूफ बना देते हैं, और कई बारी आप बेवकूफ बन जाते हैं, आपने इवन हम सब इस धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं सोच बदलो प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। श्रोताओं, इसी बीच मैंने कहा था मैं आपको एक नई आवाज से रूबरू कराने वाला हूं, तो एक ऐसी लड़की जिसके साथ ये वाक्या हुआ था, आइए जरा सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ ऑनलाइन फ्रॉड और वो कैसे फिर इससे बाहर निकल पाए, जरा जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में थोड़ा बताएं हमारे सुनने वालों को, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार, मैं कुमकुम बोल रही हूँ मुरादाबाद से। मैं काशीराम की रहने वाली हूँ।
0: जी कुमकुम, आप मुझे बता रही थी कि आपके साथ भी कुछ ऑनलाइन धोखाधड़ी होते होते बची, शायद आप भी शिकार होने वाली थी इस चीज की, तो कैसे, मतलब बताएं थोड़ा।
1: जी, जब ये स्टडी पूरी हुई तो मैं भी ऑनलाइन जॉब्स देख रही थी कि हाँ, जब घर बैठे मैं भी कुछ कर सकूं, और हर बच्चा चाहता ही है कि कुछ कर सके।
0: बिल्कुल।
1: तो इसलिए हम जॉब देख रहे थे ऑनलाइन,
0: हाँ।
1: मैं और मेरे घर सभी बच्चे, हाँ। तो सडनली एक कॉल आता है, एक कॉल आता है, जैसे कि आप कहते हैं,
0: हाँ हाँ, के लिए आप बोल रहे हो
1: जी, ऑनलाइन जॉब के लिए के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा। उसमें इंटरव्यूज वगैरह के लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे हमें। उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी 30,000 से ऊपर रहेगी और आपका टाइमिंग खाली दिन में रहेगा 2 to 3 hours। तो मैं इसको सोच के बहुत एक्साइटेड थी, पूरा दिन बहुत एक्साइटेड रही। पर नेक्स्ट डे उनकी कॉल आती है कि आपको रजिस्ट्रेशन के थ्रू पहले 5,000 rupees देने पड़ेंगे।
0: मतलब आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
1: हाँ, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आपको 5,000 rupees देने होंगे, जिसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं भी ये सोच रही थी कि 30,000 मिलेंगे तो 5,000 में क्या चला जाएगा,
0: क्या चला जाएगा। हर आदमी सोचता है चलो ठीक है, जॉब तो मिल जाएगी।
1: हाँ, जॉब भी मिल जाएगी और कम टाइमिंग।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उस हिसाब से ही मैं ये सोच रही थी कि अच्छा होगा, ये बहुत रहेगा। निखिल, मेरे भैया ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता। तेरी भाभी के पास भी कॉल आई थी ऐसे।
0: ओके।
1: पहले उन्होंने 5,000 लिए, उसके बाद 10,000 लिए।
0: अरे बाप रे, अच्छा।
1: उसके बाद जाके पता चला कि ये फेक कॉल्स हैं, इस तरह से नहीं होता ऑनलाइन। उनकी पहले पूरी जानकारी निकालनी चाहिए कि इंटरनेट में ये क्या चीज है, क्या नहीं है।
0: तो आपके साथ मतलब ये फ्रॉड होते होते
1: बच गया। मैंने
0: पेमेंट दे देती, अगर आपके भाई आपको नहीं बताते तो आप ही फंस जाती।
1: यस सर।
0: जी, तो श्रोताओं यही हमारा भी उद्देश्य है, आपको बताने का, समझाने का। देखिए कुमकुम तो बच गई है ना, मैं चाहता हूँ कि आप भी ऑनलाइन फ्रॉड जॉब से बचें, इन स्कैमर से बचें और अपनी सोच को बदलें। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपके जो आसपास की चीजें ना वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। और सबसे जरूरी चीज ये है बॉस, सोच बदलना सिर्फ इसलिए भी नहीं कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो, सोच बदलना इसलिए भी जरूरी है। जब आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच बुलंद होगी, तो आप ना बहुत सारी चीजों से बच पाएंगे और स्मार्टली काम कर पाएंगे। श्रोताओं, आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से कैसे बचे। कुमकुम ने अपनी स्टोरी शेयर करी, आप भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमें हमारे इंस्टाग्राम पे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से। वहां पर आप हमें DM करके बता सकते हैं क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, अगर हुआ है तो फिर आप कैसे बाहर निकले हैं। फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक का समय है, छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौटेंगे इसी प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: दोस्तों, एक और बहुत ही मधुर मधुर गीत आपने सुना और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जरूर पसंद आ रहा होगा, जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ, इसे आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जो है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। और इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी सी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वाला एक छोटा सा प्रोग्राम और इसी में हम शामिल करेंगे, मतलब एक छोटी सी जानकारी से भरा ये इन्फॉर्मेटिव वाला छोटा सा सेशन, जरा इसको सुनते हैं। ये भी आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला है, तो आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। और आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी से एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी को पता है कि हम स्कूलिंग और कॉलेज करने के बाद सबसे पहले तलाश करते हैं नौकरी, और जब हम नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो शायद कभी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। वो होती है जॉब से रिलेटेड फ्रॉड। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय पर। आज का विषय है फर्जी नौकरी का ऑफर, यानी नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली ऑनलाइन ठगी, नौकरी की तलाश और ठगों का जाल। चलिए आखिर वो कैसे जाल बिछाते हैं आपको बताते हैं। श्रोताओं, आज के समय में युवा नौकरी की तलाश में हैं, पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र मौके ढूंढ रहे हैं, कई लोग बेहतर नौकरी की चाह में ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसी मजबूरी और उम्मीद का फायदा उठाकर साइबर ठग फर्जी नौकरी के ऑफर देते हैं। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ। राहुल, मुझे ईमेल आया है, बिना इंटरव्यू के वर्क फ्रॉम होम जॉब दे रहे हैं और सैलरी 40,000 रूपए।
2: अरे, इतनी जल्दी नौकरी, कुछ पूछताछ की?
1: कंपनी बड़ी लग रही है, बस 2,000 रूपए रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं। लो फीस भर दी, ना तो कॉल आ रहा है ना ईमेल का जवाब, वेबसाइट भी नहीं खुल रही। राहुल समझ कि वह फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो चुकी है। फर्जी नौकरी का ऑफर क्या होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। फर्जी नौकरी के ऑफर में ठग खुद को एचआर या रिक्रूटर बताते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से संपर्क करते हैं, ज्यादा सैलरी और आसान काम का लालच देते हैं, फिर वे मांगते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, ट्रेनिंग चार्जेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सर्टिफिकेट की कॉपी, और बाद में गायब हो जाते हैं। फर्जी नौकरी के लाल संकेत, अगर नौकरी के ऑफर में ये बातें हो तो तुरंत सतर्क हो जाइए। बिना इंटरव्यू नौकरी, बहुत ज्यादा सैलरी, बहुत कम काम, नौकरी से पहले पैसे मांगना, अनजान ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, जल्दी ज्वाइन करने का दबाव। याद रखिए, असली कंपनियां नौकरी के लिए पैसे नहीं मांगती हैं। सुरक्षित नौकरी खोजने के चलिए मैं आप सभी को उपाय बताता हूँ। नौकरी के लिए आवेदन करते समय केवल भरोसेमंद जॉब पोर्टल का इस्तेमाल करें, कंपनी की वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, रिक्रूटर की जानकारी वेरीफाई करें, किसी अनजान लिंक या दस्तावेज अपलोड ना करें, आधार, पैन, बैंक डिटेल साझा करने से बचें। छात्र और माता पिता के लिए मैं खास संदेश देना चाहूँगा। श्रोताओं, फर्जी नौकरी के ऑफर के शिकार अक्सर छात्र, नए ग्रेजुएट और बेरोजगार युवा होते हैं, इसलिए माता पिता बच्चों से बात करें, हर ऑफर को सच ना माने, शक हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से जरूर सलाह लें। अगर आप ठगी का शिकार हो जाते हैं तो, अगर आप फर्जी नौकरी के ऑफर का शिकार हो जाएं, तो तुरंत कॉल करें 1930 पर, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा मदद मिलने की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए संपर्क करें www.staysafeonline.com पर। सुरक्षित रहने के 5 नियम, नौकरी के लिए पैसे मत दीजिए, बिना इंटरव्यू और पर भरोसा ना करें, दस्तावेज सोच समझकर साझा करें, जल्दबाजी में फैसला ना लें, जानकारी ही सुरक्षा है। जाते जाते श्रोताओं, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि नौकरी पाना मेहनत से होता है, लेकिन एक गलत भरोसा सब कुछ बिगाड़ सकता है। सपने देखिए, लेकिन आँखें खुली रखिए, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो सुबह से लेकर शाम तक करता है आपको एंटरटेन और साथ में देता है काम की बात।

तो श्रोताओं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज जानकारी सुनी हमारे इस प्रोग्राम में, सोच बदलो में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दी है, ये आपको जरूर कहीं ना कहीं काम आएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ऐसी जानकारियों के लिए बस आप ट्यून इन रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। जी हाँ श्रोताओं, यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। आज हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जॉब फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इन महत्वपूर्ण जानकारियों को, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर ध्यान में रखा होगा। ये छोटे छोटे बिंदु, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमें कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का शिकार होने से बचा सकती हैं। अगर अगली बार आपको कोई कॉल आए कि आपको 30,000 रुपए देंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2,000 का रजिस्ट्रेशन कराना है, तो संभल जाइएगा और समझ जाइएगा, क्योंकि समझदारी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नौकरी जरूर मिलेगी, थोड़ा वक्त लगेगा, पर गलत रास्ते से बच जाओगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सोच बदलिए, हर चीज ऑनलाइन नहीं, कुछ चीजें ऑफलाइन भी करनी है। अभी के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाजत, अलविदा। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए, कुछ और म्यूजिकल गीत के बाद आपको कुछ और नए प्रोग्राम भी सुनने को मिलेंगे। तो ऐसे ही आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070550।

0: विगत 12 वर्षों से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर

0: बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपने ट्यून इन किया है FM मुरादाबाद 89.6। आप सुन रहे हैं आपके शहर का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन। आनंद के साथ हैं आप और इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास स्पेशल गेस्ट को हमने इनवाइट किया है। श्रोताओं, देखिए आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है हमारे साथ जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं, स्पेशली छोटे छोटे दर्द जिन्हें हम कहते हैं कुछ नहीं है, हाथ में हल्का सा दर्द तो है, कुछ नहीं है, मैं एक मेडिकल से गोली लाऊंगा खाऊंगा मेरे आराम मिल जाएगा। पर वही चीज कभी कभी ना जब हम खा रहे होते हैं तो हमें लगता है हाँ आसान है, तो बहुत इजी है, बट जब आगे चल के वो चीज बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है फिर हमें समझ में आता है काश यार उस टाइम पे हम उस एक्सपर्ट को दिखा देते, उस डॉक्टर से मिल लेते तो शायद हमारे लिए ये इतनी बड़ी समस्या नहीं बनती। और आज बहुत सारी ऐसी समस्या है जैसे मैंने आते जिक्र किया शुरुआत की दर्द के साथ। तो आज हमने एक बहुत ही कमाल की स्पेशलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। श्री साई हॉस्पिटल के बारे में ऑफकोर्स आप जानते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हमारे रेडियो पे आप सुनते हैं। डॉक्टर निदा नसीम मैम को ही इन्वाइट किया जाए, बहुत सारी जो दर्दों के हमने चिट्ठा बना रखे ना जिससे भी बात करते हैं। तो मैम का वार्म वेलकम करते हैं। मैम हाउ आर यू, कैसे हैं आप? जोरदार तालियों से वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
1: थैंक यू सो मच। मैं हूं डॉक्टर निदा नसीम, इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट फ्रॉम श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पहले ही बताइए आपको रेडियो पे आके कैसा लग रहा है?
1: बहुत अमेजिंग,
0: मतलब वो हॉस्पिटैलिटी से निकल के दूसरी हॉस्पिटैलिटी में आप आज आ गए हो,
1: डिफरेंट एरा।
0: या तो मतलब थोड़ा सा कूल लग रहा है, ये कुछ नया सा है।
1: या एग्जैक्टली, इट्स वेरी एक्साइटिंग, a new thing, something new thing is.
0: थैंक यू सो मच मैम। तो देखिए हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनसे भी हैपनिंग बातें करवाई लेते हैं, ये यही तो खासियत होती है एक रेडियो जॉकी की। सो मेरे स्टूडियो में मैं मैम के साथ अकेला नहीं हूँ, दो लोग और भी हैं, उनके लिए भी मैं तालियां बजा देता हूँ। उनकी आवाज आप भले ही नहीं सुनोगे अलग है। सो सी आगे बढ़ते हैं मैम। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल जो मेरे को लगता है कि मुझे पर्सनली आपसे पूछना है, ये दर्द विशेषज्ञ डॉक्टर कौन होते हैं पहले तो मुझे बताओ मैम,
1: क्योंकि बहुत लोगों का सवाल है ये कौन हो गए, कहाँ से आ गए ये अभी। एक्चुअली देखिए दर्द दो तीन तरह का दर्द होता है, ठीक है। एक होता है अक्यूट पेन, एक होता है सब अक्यूट पेन, और फिर आता है हमारा क्रॉनिक पेन। अक्यूट पेन तो वो हो गया जो कि चार हफ्ते या चार हफ्तों से कम का दर्द हुआ, जो कि कोई जैसे चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के होने वाले बाद वाला जो दर्द होता है,
0: हाँ जी
1: वो अक्यूट में आता है।
0: ओके।
1: फिर हम आते हैं सब अक्यूट पेन में, जो कि चार हफ्ते से लेकर हमारा छह हफ्ते या आठ हफ्ते तक रहता है, ठीक है। फिर हमारा आता है क्रॉनिक पेन। अब दर्द और ज्यादा बढ़ता बढ़ता हमारा क्रॉनिक में आ गया है, जो कि 12 हफ्ते तीन महीने से ज्यादा होने वाले दर्द को क्रॉनिक पेन बोलते हैं। अब इसमें ऑपरेशन वाले पेशेंट भी आते हैं कि भाई ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन दर्द हमारा जा नहीं रहा है ना, जैसे गठिया हो गया कि घुटना हमने बदलवा लिया है बट उसका दर्द अभी भी चल ही रहा है, दर्द हमारा नहीं जा रहा है, तो वो दर्द हो गया। या फिर कोई पहले से कोई पेन हो गया, माइग्रेन हो गया, कैंसर से जुड़ा दर्द हो गया, कमर का एड़ियों में होने वाला दर्द, कूल्हे का दर्द। तो जैसा कि मैंने बताया क्रॉनिक पेन जो तीन महीने से होने वाले बाद होने वाला जो दर्द होता है वो क्रॉनिक में आता है।
0: ओके।
1: और उसी के हम विशेषज्ञ हैं, उसके लिए हम दवाइयाँ देते हैं और कुछ और भी फर्दर मैनेजमेंट होते हैं जो कि इंटरवेंशनल मैनेजमेंट में आते हैं वो हम करते हैं।
0: ओके, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये जो दर्दों का खेल है ना आज आपको पता लगेगा होता क्या है। छोटे छोटे दर्द होते हैं, वैसे इतने सारे भी दर्द होते हैं मुझे पता नहीं था मैम, आज मेरे को पता लग गया कि इतने सारे दर्द भी होते हैं, दो तीन ही सुने थे मैंने बट ये थोड़े बड़े लिस्ट आ गई है। एग्जैक्टली। सो दोस्तों अब आपको ना सारे दर्दों के बारे में तो पता चल गया है, अब जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो होता है मैम कमर दर्द। कमर दर्द एक ऐसा दर्द होता है जो किसी को भी हो सकता है, तो कमर दर्द के जो मुख्य कारण होते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अगर थोड़ा विस्तार से आप बताएं।
1: देखिए कमर दर्द के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठे हैं, कितनी देर बैठे हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, ज्यादा जैसे फॉर एग्जाम्पल आईटी प्रोफेशनल हो गए जिनको डेस्कटॉप पे बैठे रहने पड़ता है, तो उनमें क्या होता है गर्दन में होने वाला दर्द और कमर दर्द, क्योंकि दबाव पूरे शरीर का जो वेट है हमारा उस पार्ट में जाता है, तो उन लोगों में ज्यादा होते हैं। ठीक। फिर आता है हमारा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हमारा डाइट प्रॉपर नहीं है, मोस्टली फीमेल्स में होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकल लॉसेस एंड ऑल, तो क्या होता है कि एनीमिया होना क्रॉनिक, और विटामिन डी डेफिशिएंसी होना जो कि बोन्स को चाहिए, ठीक है, B12 डेफिशिएंसी होना, तो इन सारी अब आते हैं। इसके बाद होता है हमारा मांसपेशियों में होने वाला दर्द, ठीक है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। फिर आता है हमारी बोन में होने वाले जो दर्द होते हैं, जैसे कि फैसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, जो बोन में भी बहुत सारे हमारे ज्वाइंट्स होते हैं, तो उन ज्वाइंट का क्या बोलते हैं अर्थराइट बोलते हैं, फैसेट आर्थ्रोपैथी हो गया, डिस्क का पीछे की तरफ जाना जिसकी वजह से नसों में दबाव पड़ना, तो वो जो दर्द है वो कमर के साथ साथ पाँव में भी जाएगा। जो आपने सुना होगा शैटिका होती है, पाँव में झंझनाहट होना, कमर से पाँव में जाना, तो वो सारे हमारे कमर के दर्द के कारण होते हैं। चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें, आई जस्ट फॉरगॉट, कुछ पेशेंट क्या होते हैं ना, ओबेज होते हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी, वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ना, तो वो भी एक कारण इसमें आता है कि हमारा जो स्पाइन है वो मैक्सिमम लोडिंग के साथ में गुजर रहा है। तो जब ओवरलोडिंग हो जाती है वजन ज्यादा बढ़ने की वजह से, तो उसकी वजह से ये दर्द और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, क्योंकि दबाव जो है डिस्क पे, हमारे स्पाइन पे, मांसपेशियों पे, वो और बढ़ जाता है। दूसरा आता है कि पेशेंट कोई और बीमारियों से जूझ रहा है, जैसे कि हमारा डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी बीमारियां क्या करती हैं कि हमारी मांसपेशियों की जो नर्व की जो क्षमता होती है दर्द बर्दाश्त करने की, वो कम हो जाती है। थोड़ा सा भी दर्द उसको बहुत ज्यादा लगता है।
0: ओके मैम, ये तो हमने बात कर ली सिम्टम्स की, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की।
1: ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पहले पेशेंट कितने टाइम से पेशेंट को दर्द है, और दर्द किस तरह का दर्द है। नसों का दर्द में क्या होता है, पेशेंट बोलेगा कि मुझे भाई झंझनाहट हो रही है, आग सी निकल रही है, मेरा घुटना या पांव पूरा सुन हो गया है। तो ट्रीटमेंट पहले तो हमारा, हम मेडिसिन देते हैं, न्यूरोपैथिक, नोसिसेप्टिव, दोनों की अलग अलग दवाइयां होती हैं। वो देने के बाद में हम आते हैं, जांचें कराते हैं, MRI में प्रॉपर पता चलेगा कि भाई कौन सा डिस्क है, कौन से लेवल पे कितना कंप्रेशन है, कितना डायमीटर है, कैनाल डायमीटर। उसके बाद में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं इंटरवेंशन की। अब इंटरवेंशन क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि भाई कमर में सुई लगाएंगे डॉक्टर साहब तो उससे तो और भी ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि मिथ है, ये इट्स अ मिथ कि स्पाइनल देने की वजह से दर्द हमारा और ज्यादा बढ़ गया। आपने भी सुना होगा है ना, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। मैं आज ये क्लियर करना चाहती हूँ सब लोगों के साथ में। तो क्या होता है कि जो हम इंजेक्शन देते हैं, अच्छा वो जो दर्द होता था वो बहुत पहले सुइयां दूसरी आती थी, जो हम कमर में टीका लगाते थे वो सुइयां दूसरी थी। आज के जमाने में मॉडर्न एनेस्थीसिया में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल यूज करते हैं, जिसकी वजह से दर्द नहीं होता। वो जो दर्द है वो मांसपेशियों का क्या बोलते हैं ना, वीकनेस की वजह से वो दर्द होता है।
0: ओके, तो मतलब इसमें डॉक्टर की और इंजेक्शन की कोई गलती नहीं है,
1: बिल्कुल भी नहीं है।
0: ये आपने बहुत अच्छा मिथ दूर किया है।
1: और इसकी वजह से क्या होता है ना कि लोग डर गए हैं कि भाई हम तो सुई लगवाएंगे ही नहीं। आज भी कुछ कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो ये लगवाऊंगा ही नहीं, बिकॉज मुझे तो दिमाग में वो इमेज है कि इस सुई से दर्द मेरा बढ़ जाएगा। तो वो मिसकंसेप्शन है। अच्छा, बात आपके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या है वो नीडल इंटरवेंशन डिपेंड करता है कि कौन से लेवल में कितना कंप्रेशन है। हम सियाम और सियाम जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में हम उस पर्टिकुलर नर्व को टारगेट करते हैं। जिस भी लेवल का कंप्रेशन होगा हम उस नर्व को टारगेट करते हैं। तो ये इसका इलाज है।
0: मैम आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैम, आजकल कुछ दर्द के रीजन ये स्ट्रेस और ये तनाव भी है क्या?
1: बिल्कुल,
0: मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा आ रहा है, कई बार मेरे को भी जब कभी कभी प्रेशर आ जाता है ना काम का, तो मेरे को दर्द सर में होने लगता है। तो क्या मतलब, मुझे कभी कभी लगता है कि दिस इज नॉर्मली होगा, तो क्या एक्चुअली इसका रीजन ये भी हो सकता है क्या?
1: बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जो भी दर्द 3 महीने से ज्यादा प्रोलॉन्ग प्रोग्रेस करता है तो उसमें क्या होता है कि दर्द तो है
0: जी।
1: अब क्या है कि मैंने कोई गर्म प्लेट छुई, वो सर मेरे दिमाग पे आ, मुझे पता चला कि भाई दर्द हो रहा है, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। ठीक है, मैं एग्जांपल बहुत छोटा सा मैं ऐसे दे रही हूँ आपको। क्या अब क्रॉनिक पेन में होता है, बार बार वो सिग्नल ब्रेन पे जा रहे हैं। ब्रेन में क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है बार बार ना, इम्पल्स जनरेट हो रही है। अब 3 महीने से कोई भी दर्द ज्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो ट्रिगर जो फैक्टर्स हैं वो बाकी जो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है, जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, उस पे जाके वो ट्रिगर करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, दर्द हमें और भी ज्यादा पता चलता है। पेशेंट को लगेगा कि थकान हो रही है बहुत ज्यादा, बेड से उठने की इच्छा नहीं हो रही है, मन नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस होना, हमने कुछ बोला सामने वाला भूल जाएगा, बार बार चीजों का भूलना, क्या बोलते हैं ना, जिस काम में मन लगता था, सपोज आपका काम है ये रेडियो जॉकी पे काम करना, आपको अच्छा लगता है, तो आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, व्हाटएवर द वर्क यू लाइक।
0: ओके,
1: ऐसे
0: ओके मैम, सो मतलब मुझे ना ऐसा भी लगता है कई बार कि आजकल का लाइफस्टाइल भी इसका कारण बनता जा रहा है क्या?
1: डेफिनेटली,
0: जैसे आजकल तो खैर सोशल मीडिया की तो बात ही नहीं करेंगे, ये तो है ही सबसे बड़ा सरदर्द, बट फिर भी इसके अलावा आजकल लोगों का रूटीन भी बहुत चेंज हो गया है, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ चीजें, कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो दर्द को कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं मैम?
1: बिल्कुल, क्या होता है कि हम हमारा जो लाइफस्टाइल आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, सोशल मीडिया, एआई आ गया है, लोगों का जो ध्यान है, इवन नॉट अडल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो बच्चे हैं, जो जेनजी है, जेन अल्फा है,
0: बीटा है,
1: अब बहुत सारी जनरेशन आ गई है, तो क्या होता है कि इनका ध्यान सोशल मीडिया पे ज्यादा हो गया है। मैं अपने घरों में भी देखती हूँ बच्चों क्या है कि फोन देखते हैं, तो पोस्चर उनका खराब हो रहा है। पुराने जमाने में क्या होता था कि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते थे, आजकल वो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है। लोग जो हैं, जो यंग जनरेशन के हैं, वो गैजेट्स में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग अपने वर्क रिलेटेड उनको गैजेट में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, दे हैव टू गिव प्रोलॉन्ग सिटिंग, तो ये वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ना इम्बैलेंस चल रहा है बेसिकली, तो जिसकी वजह से कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं पा रहा है, तो हम अपने आप को, अपने शरीर को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो क्रॉनिक पेन का सबसे पहला इलाज मैं ये बोलूंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आप किस टाइम पे क्या खा रहे हो वो आपने ध्यान में रखना है, किस समय पर खा रहे हो ये इम्पोर्टेंट है,
0: बिल्कुल मैम,
1: और टाइम ऑफ स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना, तो हर एक चीज फैक्टर ये बहुत बड़ा रीजन है क्रॉनिक पेन का, और इलाज भी इसका यही है। जो भी पेशेंट मेरी ओपीडी में आते, सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ, डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करो, यही सब मैं बोलती हूँ।
0: मतलब लाइक मुझे भी ऐसा लगता है जैसे आजकल की जनरेशन, अब ऑलरेडी हम पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, उसके बाद हम रात को भी अपना मोबाइल देखना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए, हमारी आंखें जो
1: बीच में भी हम देखते हैं,
0: फिर भी हम देख रहे होते हैं, करेक्ट, तो कहीं ना कहीं आंखों पे उसका जब इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सरदर्द भी बनता है,
1: बिल्कुल, माइग्रेन, हेडेक होना,
0: करेक्ट। तो मैं वहीं पर आ रहा था कि माइग्रेन और सामान्य सरदर्द में क्या फर्क होता है मैम?
1: देखिए, माइग्रेन और सामान्य सरदर्द, माइग्रेन क्या होगा, एपिसोड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कितने एपिसोड दिन में आ रहे हैं और हफ्तों में कितने एपिसोड्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आप कौन सी खा रहे हो, ठीक है, और प्लस आपका लाइफस्टाइल हो गया, कितनी बार आपको हो रहा है अगर, और फिर आते हैं आपके साइंस जो हम पूछते हैं पेशेंट को कि भाई अगर माइग्रेन है आपको, तो माइग्रेन में पेशेंट को फड़फड़ाता हुआ, कुछ हेडेक होता है, पल्सेटाइल जिसे हम बोलते हैं, फोटोफोबिया होगा, ग्लेयर होगा, किसी को नॉइस से होता है कि भाई तेज साउंड से भी माइग्रेन। सामान्य सरदर्द में ये सारे सिम्टम्स लक्षण नहीं होंगे, माइग्रेन में ये फड़कता हुआ दर्द होना, लाइट से, साउंड से, किसी भी तेज चीख से, इनफैक्ट एसी की हवा से भी कभी कभी होता है ट्रिगरिंग फैक्टर, और ये तो हम माइग्रेन की बात कर रहे हैं। माइग्रेन के अलावा भी एटिपिकल फेशियल पेन्स होते हैं, जैसे कि ऑसिपिटल न्यूरलजिया, पेशेंट बोलेगा कि भाई सीधी मेरे पीछे के हिस्से में दर्द है, जिसे बोलते हैं ऑसिपिट, पीछे से वो आंखों की तरफ दबाव पड़ता है, तो हमारी पीछे की नस होती है ऑसिपिटल नर्व, तो उसका नस का घूम जाना मांसपेशियों में, या उसकी सराउंडिंग जो मांसपेशियां हैं का घूम जाना, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। तो दर्द के बहुत सारे कारण हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर निदा नसीम हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम उनसे बहुत सारे दर्द के ऊपर बात कर रहे हैं। निदा मैम, कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर साहब आपने भी देखा होगा, यू नो यूजुअली आज भी ग्रामीण इलाकों में भी ऐसा होता है, हम भी कई बार करते हैं कि छोटा सा दर्द हुआ हम अवॉइड कर देते हैं, और ये दर्द लगातार भी हो रहा होता है, कहीं बहुत टाइम से चल रहा होता है, बट हम बहुत टाइम से इसे अवॉइड करते हैं कि हमने पेन किलर लिया, मेडिकल पे गए, हमने एक पेन किलर लिया, रिलीफ मिला, देन हमने अवॉइड कर दिया, फिर दो तीन दिन बाद रिपीट हो रहा है, तो अगर ये केस में लोग ये चीज रिपीटेड कर रहे हैं तो क्या ये करना चाहिए या फिर
1: बिल्कुल नहीं करना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत कॉमन सवाल है हमारे आसपास के एरिया में, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई दर्द की दवाई खा ली और भाई अपना दर्द चला गया,
0: काम पे
1: फिर अपना काम पे चले गए, बिकॉज दे आर टू मच ऑक्यूपाइड इन देयर वर्क। फीमेल्स को मैं बोलूंगी वो अपने घरों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, उनके पास अपने लिए टाइम निकालने का वक्त ही नहीं है,
0: करेक्ट।
1: तो क्या होता है कि दर्द की दवाइयाँ कब खानी है वो इम्पोर्टेंट है। कभी कभार अगर आपके एपिसोड्स हो रहे हैं, आप दवाइयाँ खा रहे हो, ठीक हो जा रहे, दैट इज प्योरली ओके। कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा ओवर वर्क कर लेते हैं, कुछ भारी सामान उठा लिया, कुछ एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, तो जिसकी वजह से हमारा दर्द होता है वो ठीक हो जाता है,
0: ठीक है।
1: अब क्या होता है कि एपिसोड्स हमारे बढ़ रहे हैं, हम अगर पूरे हफ्ते अगर हम पेन किलर खा रहे हैं और जिसकी वजह से दर्द हमारा जा ही नहीं रहा है, या फिर 10-20% हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हम पेन किलर के सहारे कैसे जैसे हम अपना टाइम काट रहे हैं, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है।
0: तो मतलब
1: बिकॉज क्या होता है कि क्रॉनिक ये जो दवाइयां होती हैं, इन दवाइयों से हमारा जो इम्पैक्ट है, मैक्सिमम इम्पैक्ट, जैसे हम जीरोडॉल सुना होगा आप लोगों ने भी ना कि खा लेते हैं, अब इनका असर क्या होता है कि किडनी पे पड़ता है। लंबे समय तक अगर हम ये दवाई खाएंगे तो किडनी पे और बल्कि हमारा जो गट है उस पे हमारा असर पड़ता है, तो वो चीज बहुत गलत है।
0: डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, ढेर सारी बातचीत चल रही है उनसे आज, दर्द को लेके हम काफी सारे डिस्कशंस कर रहे हैं।

0: देखिए जो दर्द होता है ना, जितना आसान आपको लगता है कि गोली खा के हम उसको एकदम से जो है छू मंतर करा देंगे, उतना आसान होता नहीं है। वही दर्द का बड़ी जो है गंभीर रूप ले सकता है और बड़ी समस्या बन सकता है, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। और उन्हीं पर आज डिस्कस करने के लिए डॉक्टर निदा नसीम जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से। मैम एक बार फिर से आपका स्वागत है, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि जैसे कई बार दर्द होता है तो हम लोग ना होम रेमेडी में भी बिलीव करते हैं, घरेलू उपाय जैसे सिकाई कर लो सर के दर्द की, मम्मी ने कहा हल्दी वाला दूध पी ले कुछ नहीं होगा, ये पिएगा तो ठीक हो जाएगा, या फिर मतलब हल्की सी स्ट्रेचिंग कर ले, बाहर घूम के आ जा थोड़ा सा, इन सब से भी सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो क्या ये चीजें वर्क करती है जेनुइनली?
1: देखिए डिपेंड करता है अगेन ड्यूरेशन कितना है।
0: ऑलराइट,
1: ठीक है।
0: अच्छा,
1: जो अगर मैंने बोला कि हड्डियों का होने वाला दर्द है जो कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसमें इसका कोई भी इलाज नहीं है।
0: ओके,
1: जो इनिशियल स्टेज होती है जो कि मायोफेशियल पेन, जो कि मसल्स वाला जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है, वो हम इससे ट्रीट कर सकते हैं कि लोकल सिकाई कर लिया, थोड़ा सा बाम लगा लिया, या ऑयल जो औरतों का तेल आता है तेल लगा लिया, वो सब हम कर सकते हैं। उसमें ट्रांजिएंट पीरियड के लिए रिलीफ मिलेगा।
0: ओके,
1: लेकिन पेन अगर क्रॉनिक हो गया है, वही मैं बोल रही हूँ बार बार, क्रॉनिक पेन 3 महीने से ज्यादा होने वाला दर्द में बहुत ही ट्रांजिएंट रिलीफ मिलेगा, उसमें बस सिकाई कर सकते हैं।
0: ओके,
1: हॉट फर्मेंटेशन,
0: फिर उसका कोई अल्टरनेट तरीका है ही नहीं ना?
1: बिल्कुल नहीं है।
0: करेक्ट, वही तो दोस्तों, अगली बार अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो तो ये सब चीजें फॉलो करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें, बहुत जरूरी है। क्योंकि मैम मुझे लगता है कि सही डॉक्टर से जब तक हम सही तरीके से कंसल्टेशन नहीं लेंगे, सही इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, तब तक हम उस चीज को जड़ से खत्म नहीं कर पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि उस चीज से आपको जड़ से उसकी जो है भाई साहब वो टाटा बाय बाय हो जाए,
1: पेन में पेन को ठीक नहीं करते हम, बीमारी को ढूंढते हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: पेन का मैनेजमेंट का जो तरीका है वो होलिस्टिक अप्रोच है, माइंड बॉडी एंड सोल, और ट्रीटमेंट भी माइंड बॉडी एंड सोल पे ही काम करता है।
0: ओके मैम, कई बार बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सर में ना पूरे सर में दर्द नहीं होता, उनके आधे सर में दर्द होता है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बड़ी ऐसे आपके पास केसेस आते होंगे, तो उसका क्या रीजन है? मतलब पूरे सर में दर्द ना होके आधे सर में दर्द होता है, सर के आधे हिस्से में दर्द कई बार होने लगता है।
1: देखिए सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड, तो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में कब दर्द हो रहा है। कुछ होता है कि हम स्ट्रेस रिलेटेड जो होता है कि हम जब काम करते हैं उस टाइम पे दर्द हो रहा है, बाकी सब ठीक है।
0: ठीक है,
1: ठीक है,
0: ठीक है।
1: और जो मांसपेशियों का जो दर्द होता है वो भी हो सकता है कि हम जैसे होता है कि राइट साइड ऑफ द बॉडी हम कन्वर्ट लेके जैसे सोते हैं, तो हो सकता है कि हम राइट साइड में सो रहे हैं, हमारा पॉस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें रूल आउट करने के बाद अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, जैसे हमारा मैंने बोला कि ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया जो कि पीछे से होता है और आगे की तरफ आता है,
0: ओके,
1: और ऐसा लगता है मरीज बोलेगा कि मेरे को आंख ऐसे लग रहा है कि निकल जाएगी, इतना ज्यादा पीछे से आगे की तरफ दर्द हो रहा है, ऑसिपिटल न्यूरेल्जिया वाला जो दर्द होता है। एक पेशेंट अभी आई थी मेरे पास यहाँ पे, तो ये सारे कारण होते हैं। तो उसका इलाज डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन कितना है, कौन से टाइप का वो है पेन, किस प्रकार का पेन है। जैसे कि पेन तो क्या है कि पेशेंट बोलेगा कि बर्निंग सेंसेशन या फिर चुभने वाला दर्द है, चुभने के साथ में उसको लगता है करंट भी दौड़ रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स वगैरह हम पूरे अच्छे से असेस करते हैं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट।
0: दर्द का मानसिक तनाव से भी कुछ लेना देना है?
1: बिल्कुल है,
0: थोड़ा सा इस विषय में भी हम सोच रहे हैं आपसे बात कर लें।
1: बिल्कुल है, मानसिक तनाव, देखिए स्ट्रेस मैंने बताया ना कि स्ट्रेस जब 3 महीने से ज्यादा दर्द अगर बढ़ेगा तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो हमारे लिम्बिक जो हमारा इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है उस पे इम्पैक्ट करता है।
0: ठीक है,
1: तो जब पेन जो है क्रॉनिक हो जाएगा वो उस पे इम्पैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स और ये सारे लक्षण जो है मरीज में ज्यादा आएंगे उस टाइम पे।
0: ठीक है मैम, हमने बहुत सारे दर्द के ऊपर डिस्कशन किया आपसे, और आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया सारे दर्द के बारे में, सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है वो ये कि अभी जो लोग इस चीज से जूझ रहे कहीं ना कहीं, अब उनको डॉक्टर से कब मिलना है एक्चुअली? क्या उनको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कौन सी सिचुएशन में डॉक्टर से मिलना चाहिए?
1: देखिए आपका कोई भी दर्द जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है पूरा दिन आप पूरा महीना आपका दवाइयों से ही खा के आपका गुजर रहा है, आई एम ऑन रेगुलर मेडिकेशन,
0: ठीक है
1: मैं छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, तो आपने डॉक्टर को संपर्क करना है। या फिर आपका कोई भी दर्द जो कि 3 महीने से ज्यादा आपका प्रोग्रेस कर रहा है,
0: ठीक है,
1: उसमें आपने अपने पेन फिजिशियन को कंसल्ट करना है।
0: ठीक है, ओके मैम, मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू वेरी मच। तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगी, क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं रेडियो पर?
1: देखिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप दर्द को बर्दाश्त ना करें, नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। अगर 3 महीने से ज्यादा दर्द, क्योंकि दर्द एक ऐसा चीज है कि हर किसी के साथ होता है, हर घर में एक दर्द का मरीज जरूर होगा,
0: बिल्कुल
1: ऐसा मैं शायद एक्सपेक्ट कर रही हूँ,
0: बिल्कुल
1: ऐसा ही है
0: मैम। एक्चुअली ऐसा इसलिए भी क्योंकि आजकल मोबाइल की वजह से भी दर्द,
1: क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जो बोलते ना कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर वर्क लाइफ बैलेंस इतना ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है कि हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं।
0: बिल्कुल मैम सही बोला। इनफैक्ट मैम मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दर्द का रीजन मोबाइल तो सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ऐसे अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हमारा जो गर्दन है पूरा मोबाइल में घुसा होता है, तो कहने की उसकी वजह से भी हमारे
1: सर्वाइकल पेन, नेक पेन, मायोफेशियल पेन, ये वाला जो है ये हमारा जो आईटी, मैंने बोला आईटी प्रोफेशनल जो बैठे रहने का काम ज्यादा है, डेस्कटॉप पे काम ज्यादा कर रहे हैं, फिर फोन में लो बच्चे, बच्चों को भी आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है।
0: बिल्कुल
1: क्या होता है कि हमारा जो गर्दन है वो एकदम आगे की तरफ झुक जाता है जब हमारा
0: फोन,
1: हाँ इंटेंशनल हो जाता है, हमें नहीं पता होता। या महिलाओं में जो किचन में काम कर रही है, वो शॉपिंग किचन में काम करते हुए गर्दन नीचे झुक जाती है, तो जो सर का भार है वो तो आगे की तरफ हैंग हो रहा है, लेकिन जो उसका वेट स्ट्रेस है वो हमारे लोअर नेक पे जा रहा है।
0: ओके
1: जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये सब इसके कारण हैं।
0: ओके सो दोस्तों आपको तमाम, उम्मीद करता हूँ तमाम जानकारियाँ आपको मिली होंगी इस इंटरव्यू के माध्यम से। थैंक यू सो मच डॉक्टर निदा मैम, आपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे स्टेशन पे आप आए, आपने इतना सारा टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू सो मच मैम। कुछ और जाते जाते जो आपको लगता है कि आप हमारे रेडियो लिसनर्स को बता सकती हैं जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, कोई एक मैसेज जो आप चाहती हैं कि सबको देना चाहिए? बिल्कुल, स्पेशली वो मेडिकल से जाके हम एकदम पेन किलर ले लेते हैं,
1: बिल्कुल दर्द की दवाइयाँ आप लोग, मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेडिकल स्टोर से लेना बंद करें।
0: इवन आजकल लोग ये भी कर रहे हैं कि गूगल पे जाके, चैट जीपीटी पे जाके भी कर रहे हैं लोग,
1: AI
0: इसका इस्तेमाल भी करते हैं सरदर्द को भगाने के लिए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कुछ इंक्लूड करिएगा।
1: नहीं सरदर्द देखिए, गूगल आपको आधी नॉलेज देता है, ठीक है, जो डॉक्टर इतनी पढ़ाई करके, फेलोशिप की ट्रेनिंग करके, एक्सपर्टाइज होके अब वो आया है, अगर आपको वो बोल रहा है कि भाई दर्द की जो दवाइयां हैं वो लंबे समय तक नहीं खानी चाहिए, कभी कभार आप खा लो, लंबे समय तक खाएंगे तो उसका किडनी पे, आपकी आंतों पे आपका असर पड़ेगा,
0: बिल्कुल,
1: जो आपको अभी नहीं, मे बी लेटर ऑन आप जब 40-50 साल की उम्र हो जाएगी तब पता चलेगा, वो अभी हमें पता नहीं चल रहा है, तो वो खाना बिल्कुल बंद करें, अपने लाइफस्टाइल पे काम करें, किस टाइम पे आप क्या खा रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, अपनी 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें, और अगर आप 3 महीने से या फिर ज्यादा दर्द से जूझ रहे हैं तो अपने नियरेस्ट पेन फिजिशियन को जल्द से जल्द संपर्क करें, मैं यही बोलूँ।
0: थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा आपने जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी और इतने अच्छे से आपने बताया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और हम आशा करते हैं कि थैंक यू मैम, हम आशा करते हैं आप अगली बार भी जरूर जल्द आएंगे, फिर कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम, बहुत अच्छा लगा। और गाइज आप कहीं मत जाइए, ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातों के लिए प्लीज ट्यून रखिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी के लिए मैं लेता हूँ डॉक्टर निदा मैम से इजाजत, मैम थैंक यू,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच, और गाइज आपसे भी इजाजत, फिर जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
2: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
3: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
2: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई।
5: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
6: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
5: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
6: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
7: कॉल 7500153841।
8: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
9: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6। और समय की बात करूँ तो 3:36 हो चुके हैं। और देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ आज, मतलब संडे को मोस्टली आप मुझे नहीं सुनते, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो मैं कहीं घूमने भी नहीं गई हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी के बीच बात करने के लिए आ जाऊँ। ढेर सारी बातें लेकर आ गए हैं। और देखिए, इस वक्त मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ है प्राची। हाँ जी, कैसी हो आप?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ रीना, थैंक यू सो मच। आप और अभी हमने श्रोताओं के साथ जुड़ के और भी ज़्यादा खुश हो गए हैं। तो आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और खूब सारी मस्ती और खूब सारा आज हमें मज़ा आने वाले।
0: ये पता है, ये कंफ्यूज थी लड़की, इसको ये नहीं पता था कि आज संडे है। इसको अभी पता चला है गाइस कि आज संडे है।
1: वैसे मुझे बताया भी कैसे होता है, क्योंकि हमारा ऑफिस तो डेली खुलता है ना।
0: देखिए डॉग, वो तो है, वो तो ओपन रहता है हमारा ऑफिस डेली। तो श्रोता, हम दोनों आप सभी के बीच में आ गए हैं, ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल आपके भी दिल में है कुछ बातें, कुछ मैसेज करना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, तो हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9837896896।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है बिंदास बोल शो में। और सच बताऊँ, आज संडे का दिन है। प्राची, तुमने क्या सोचा है? मतलब आज मोस्टली हर कोई कहता है कि संडे फ्री वाला डे होता है, मतलब रेस्ट करने का डे होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी कहीं रेस्ट करने वाला दिन होता होगा।
1: हाँ, बिल्कुल सही कह रही है रीना जी आप, क्योंकि संडे के दिन, वो भी आजकल, अब बाकी डेज हमारे वर्किंग होते हैं, तो जो भी हमारे ऐसे काम होते हैं जो हम हमेशा ना टालते रहते हैं कि हमें आज नहीं करना है, वो सब हमारे से हम वो सब के लिए टाइम संडे ही में ही मिलता है। तो संडे भी इतना फ्री डे नहीं होता, पर हाँ रिलैक्सिंग होता है कि हम अपनी मर्जी से अपना शेड्यूल कर सकते हैं अपने कामों को।
0: पर हो नहीं पाता, पर संडे को बहुत लेट हो जाता है।
1: हाँ, क्योंकि पहले सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि अरे आज तो भाई बहुत आराम से उठना है।
0: मतलब मेरा संडे कैसे जाता है, मतलब पूरा घर का सफाई करना है पहले, ठीक है, फिर उसके बाद जितने कपड़े होते हैं उसकी धुलाई करना, फिर बाद में खाना बनाओ, फिर नहाओ, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ। पता ही नहीं चलता संडे कब खत्म हो जाता है। मतलब संडे
1: हाँ
0: खत्म नहीं होता, मंडे वापस आ जाता है।
1: हाँ बहुत जल्दी मंडे वापस आ जाता है ना। और ये भी होता है कि हम सोचते हैं सैटरडे की, अरे आज तो लेट नाइट, अपना सैटरडे जो है लेट नाइट तक जग लेते हैं, क्योंकि संडे तो आराम से उठना है, पर संडे में वो नींद ही नहीं आती जो और दिन आती है ना।
0: या ये तो सच में तुमने बहुत अच्छी बात कही है। एक्चुअली जब भी मेरे 12 बजे का सुबह का टाइम होता है, मतलब ऑफिस में आने का, और उसी टाइम मेरे को नींद आती है।
1: हाँ, और भाई वही जो दिन होते हैं ना संडे से अलग, बाकी सुबह अच्छे से नींद आती है और दिन नहीं आ पाती।
0: और आज मुझे नहीं आई सच में। 12 बजे मैं देख रही थी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। जब मैं स्टूडियो जाती हूँ तब तो मेरे को नींद आती है, आलस में भरी रहती मैं। लेकिन आज मतलब संडे वाले दिन में एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। बॉडी को भी ये पता चलता है कि आज रेस्ट वाला दिन है, लेकिन तेरे से रेस्ट नहीं करवाएंगे। तो श्रोताओं, आप भी बता सकते हैं आज आपका संडे कैसे जा रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ खास कहीं पर घूमने गए हैं तो भी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हमारा प्यारा सा नंबर है 9837896896। और एक हमारे पास मैसेज भी आता है, ये मैसेज है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, और इनके दोस्त हैं सैयद सारिक अली, और कहते रीना जी आदाब, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए। और आज पहली बार संडे में बिंदास बोल शो में आपको सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच जी, गाने भी बहुत अच्छे प्ले कर रही हो। और ये गाना सुनना चाहते हैं जुगनी जुगनी, क्या बात है, ये गाना हम सुनवाएंगे। लेकिन आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि आज आप संडे का दिन है तो आज आपने कुछ खास क्या किया है, आप मैसेज करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ, कुछ और चुलबुली बातें लेकर कनेक्ट होंगे, है ना प्राची?
1: बिल्कुल
0: तो चलिए श्रोताओं, पहले हम गाना एंजॉय करते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं आप सभी के।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी

0: पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
2: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
1: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
3: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है अर्जेरीना के साथ और प्राची मेरे साथ है. सो आप सभी को बिंदास शो में वेलकम है आप सभी का. और समय की बात करूँ तो 4:03 हो चुके हैं श्रोताओं. सो प्राची, क्या कहना चाहोगी आज तुम संडे में? मतलब तुम अभी कुछ कह रही थी.
1: वैसे आज संडे है तो हमें लगता है कि दिन बहुत पूरे वीक में मतलब संडे हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है और हम इतना बिजी रहते हैं पूरे दिन. तो मुझे लगता है कि इस दिन हमें अपनी फैमिली के साथ, उन लोगों के साथ जो हम इससे बहुत प्यार करते हैं, हमें उनके लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए. एक तरह से संडे एक रिमाइंडर भी है ना कि हम उस दिन उन लोगों के लिए टाइम निकाल सकते हैं जिनसे हम रोज़ बात नहीं कर पाते, जैसे हमारी फैमिली और जो लोग हमें प्यार करते हैं, क्योंकि उनके लिए टाइम निकालना भी ज़रूरी है. तो
0: बिल्कुल
1: संडे इज़ अ परफेक्ट डे आई थिंक फॉर दैट.
0: बिल्कुल सही कहा आपने. और संडे के दिन ऐसा होता है कि फैमिली वालों के साथ एंजॉय करना, फैमिली वालों को टाइम देना, ये हमारे लिए बहुत बेटर होता है. क्योंकि हम अक्सर हर रोज तो मतलब जब काम में बिजी होते हैं या फिर स्कूल में रहो, वॉट एवर, कहीं भी रहो आप, तो हम टाइम नहीं दे पाते. लेकिन संडे का एक ऐसा दिन होता है, जिसने भी संडे बनाया ना उसको दिल से धन्यवाद. तो संडे को मतलब तुम मोस्टली क्या करती हो
1: संडे के दिन? जैसे कि अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना और वो सारी चीजें करना जो हम नहीं कर पाते.
0: क्या बात है. तो श्रोताओं, आप भी बता सकते हैं कि आप संडे को क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. और अब यहाँ से मैं लेती हूँ जाने की इजाजत. अब आप आनंद के साथ शो एंजॉय करेंगे.
2: क्या करता हूँ, इन दोनों ने तो बता दिया है, अब मेरी बारी है. मैं आपसे पूछूंगा भी और आपको बताऊंगा भी. थैंक यू रीना, तुम आई, अच्छा लगा. संडे में इसको परेशान कर दिया क्योंकि आज मेरी ड्यूटी है, रीना की नहीं है. लेकिन संडे में तू क्या करती है, तू बता फिलहाल हमें.
0: क्यों, कौन
2: तू? संडे को क्या करती है तू? लोगों से पूछ रही है संडे का क्या प्लान है, ये पूछा इसने.
0: मैं तो संडे को झाड़ू. नहीं नहीं यार, झाड़ू
2: करती है, पूरा दिन घर में पड़ी रहती है, कुछ कह नहीं जाती.
0: झाड़ू पोछा डस्टिंग
2: तो
0: कपड़े
2: काम है.
0: नहीं, मैं डस्टिंग डेली नहीं करती हूँ, डस्टिंग सिर्फ संडे करती
2: हूँ. करनी है तो अपने मन की करो यार.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, मन की डस्टिंग.
2: घुसी बैठी है, देख रही है तू प्राची, लाइव एग्जांपल है ना.
0: अरे यार, मैं इधर करके बोल रही हूँ तो उसमें माइक में नोट घुसना. और जब तक हम माइक में घुसेंगे नहीं तो बोलेंगे
2: कैसे,
0: आवाज ही नहीं जाएगी. दूर से तुम बोल रहे हो तो तुम्हारी आवाज देखो कितनी कैच हो रही है.
2: 6 मिनट हो रहे हैं अब. मैं और क्या कहते हैं प्राची, पता नहीं मेरे साथ बैठी की या नहीं, मुझे नहीं पता. लेकिन रीना, थैंक यू वेरी मच. कोई बढ़िया गाना सुना दो, फिर मिलते हैं गाइज आपसे.
0: चलो गाइज.

0: टायर लो सोना जीतो।
1: क्या?
0: जी हाँ,
2: चावला टायर
0: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।
5: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
6: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
7: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
8: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
7: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
9: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

वेलकम बैक है जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। अभी आपने रीना और प्राची को सुना, वो दोनों एक्चुअली गए तो नहीं है लेकिन कुछ काम कर रहे हैं। बट मैंने सोचा चलो भाई आज खुशी नहीं है तो हम लोग मिल मिलके आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम को पेश करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने रीना और प्राची को सुना, अब आप मुझे सुन रहे हैं। सुबह भी हमने आपसे ढेर सारी बातचीत करी थी और जब जब मौका लगता है आपकी बीच बीच में हम आपसे मुखातिब होने आ ही जाते हैं इस स्टेशन पर। श्रोताओं गर्मी बहुत है और इस गर्मी में आप प्लीज पानी जो है पीते रहिए। देखिए 39 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है करंट, मैं देख पा रहा हूँ, तो मतलब अब ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी भयंकर हो रही है आपके घरों के बाहर। 4:22 हो गए, हमारे साथ जुड़े हैं ईदगाह से शफी अहमद अंसारी, रईस दूल्ला अंसारी। लिखते हैं गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आज तो मतलब कमाल हो गया।

बिल्कुल जी, कमाल हो गया है, आपने बिल्कुल सही कहा है जनाब। ये लिखते हैं, आज तो सूरज उल्टा निकल गया, आज शो पर पहली बार रीना मैम की प्रस्तुति सुन रहा हूँ और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति लग रही है और गीत भी लाजवाब सुनवा रही हैं, बेस्ट शो लग रहा है आरजे रीना जी का। अरे वाह, क्या बात है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे लिखते हैं, बिंदास बोल में चार चांद लगाने अब आनंद जी आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। शफी साहब, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इरशाद हुसैन जी हमारे प्यारे लिसनर जुड़े हैं, लिखते हैं प्राची जी की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। सर अब तो आ ही नहीं रही है क्योंकि वो अभी शायद उसकी स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो अपनी स्कूटी ठीक करने गई है। बाकी आप लोग भी श्रोताओं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अच्छा एक चीज और मैं पूछ रहा था, यहाँ पे कोई सवाल चल रहा था शायद कि संडे को आप क्या करते हैं, कुछ तो था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कितने लोगों ने सुना है जरा मुझे बताइएगा जरूर, क्या पूछा था आरजे रीना ने आपसे। कार्यक्रम बिंदास बोल में रीना दीदी जी को और दूसरी दीदी को प्यार भरा नमस्कार। ये हमारे साथ ब्रजेश सिंह जुड़े हैं और ये अपने जो है काम काज में लगे हुए हैं और एफएम सुन रहे हैं। लिखते हैं कि धूप का क्या ही करें, बहुत ही बुरी हालत है, धूप में काम कर रहे हैं, हम तो अपना संडे मंडे की तरह ही मना रहे हैं और हमारे लिए संडे मंडे तो कुछ होता ही नहीं है, रोज काम करने आते हैं और रोज ही काम करते हैं। रीना दीदी जी थोड़ा पास में जो है आप आकर बोलें। ऑल राइट, मतलब हो सकता है कुछ वॉइस में हो जाता है कि मेरी प्रॉब्लम, टेक्निकली भी होता है। और इन्होंने लिखा है, हेलमेट अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको 1,000 रुपए का फाइन देना होगा। अच्छा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप गाड़ी पे निकल रहे हैं, मतलब टू व्हीलर वाहन पे अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज अपना हेलमेट जरूर अपने साथ रखें। ये गुजरात से मैसेज आ गया है, हेलो जी कैसे हाल चाल है, इनको बिच्छू फिल्म का एक गीत सुनना था, इन्होंने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, थैंक यू सो मच। जरूर इस गाने को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में, अगर आप जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आप लोगों ने जो संदेश दिए हैं उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी श्रोताओं आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस बिंदास बोल प्रोग्राम में और बिंदास बता सकते हैं संडे के आपके क्या प्रोग्राम्स रहते हैं, आप संडे को क्या चीज़ है जो करना पसंद करते हैं और क्या चीज़ है जो नहीं करना पसंद करते हैं, ये डेफिनेटली आप बताएंगे। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गीत शफी अहमद जी ने पहुँचाया था, ये ही गाना आप सभी तक पहुँचेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। 4:25 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और ये जो गाना शफी जी आपने भेजा है ना, इस गाने से मैं शादी वाले टाइम में चला जाऊंगा क्योंकि ये वही गाना है जब अक्सर, आजकल तो खैर ट्रेंड चेंज हो गया है लेकिन एक टाइम था जब हम मतलब शादियों में जाते तो इस गाने पे जो है जयमाला दूल्हा दुल्हन की होती थी और ये गाना ना बजे मतलब ऐसा लगता नहीं था कि शादी कंप्लीट हो गई है। जैसे ये गाने का म्यूजिक चला मतलब समझ में आ गया कि दूल्हे की एंट्री हो गई है, बारातियों की एंट्री हो गई है। चलिए गाना सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गीत है और इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे मोहम्मद रफी साहब की आवाज।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th June। TNC अप्लाई। सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
5: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
4: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
5: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
4: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यून इन कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
6: क्या बात है सर, क्या बात है सर।

आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। संडे का दिन है, बिंदास बोल शो चल रहा है। वक्त हो गया स्टेशन क्लॉक में 4:31 और आज 7 जून है। आज हमने आपको बताया आज वर्ल्ड पोहा डे मनाया जाता है। पोहा कितने सारे अलग अलग हिस्सों में बड़ा पॉपुलर है, अलग अलग तरीके से लोग पसंद करते हैं। कोई पोहा जलेबी खाता है, तो कोई पोहा कांदा खाता है, तो कोई पोहा के साथ दही खाना पसंद करता है। आज वर्ल्ड पोहा डे पे हमने ढेर सारी बातचीत करी। इसके अलावा और भी तमाम सारे डे आज मनाए जाते हैं। वैसे आपको भी पोहा पसंद होगा, मुझे तो नींबू और उसके ऊपर जो एक थोड़ी सी वो नमकीन डाली जाती है ना, उसका टेस्ट बदल जाता है। अभी बाकी अपने स्टूडियो में जो लोग बैठे हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे, उन्होंने पोहा लास्ट टाइम कब खाया था और उनको पोहे के साथ कौन सा चीज है जो बहुत पसंद है। पोहा का एक कॉम्बो होता है ना, बहुत बढ़िया होता है। जैसे हमने सुबह आपसे पूछा भी था पोहा कहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में इसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ढेर सारे श्रोताओं ने अपने संदेश दिए थे। एक बार फिर से हम पोहे की तरफ रुख करेंगे वापस से।

0: चांद तारों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल एफ एम मुरादाबाद पे अभी मैं नजर आ रहा हूँ आपको, रेडियो पर सुनाई दे रहा हूँ। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जमाना है, वहां जाके देख सकते हो। और हमारे साथ प्राची वापस जुड़ गई है हमारे इस प्रोग्राम में। प्राची वेलकम बैक है आपका, कैसे हैं आप? टेलिस थोड़ा सा बताएं प्लीज। आपकी वॉइस आ नहीं पाई, फिर से बताओ।
1: हेलो,
0: यस बोलो।
1: मुझे तो बहुत मजा आ रहा है क्योंकि अभी मैं शो एंजॉय कर रही थी आरजे रीना के साथ और अब एंजॉय कर रही हूँ आरजे आनंद के साथ।
0: वेरी नाइस, तो आपको डबल मजा आ रहा है। आपको बड़े पैकेट में छोटे धमाके मिल रहे हैं, छोटे पैकेट में बड़ा धमाका?
1: ना, दो बड़े पैकेट में बड़े धमाके।
0: क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो आपकी स्कूटी सही हो गई?
1: ना, अभी तो देखना पड़ेगा। कल तो बहुत एडवेंचरस रहा हमारी ट्रिप।
0: कोई बात नहीं, हो सकता है। कभी कभी होता है ना, जब आप कुछ सोच के निकलते हो फिर कुछ और ही हो जाता है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो लाइफ आपको ऐसे सरप्राइज देती है, राइट? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा प्राची, अभी रीना ने क्या क्वेश्चन पूछा था? देखो प्राची भूल गई, इसका सेंसिटिव ह्यूमर। पोहा? क्या पोहा, तो मैं पूछ रहा था। वो नॉनसेंस यार प्राची। पोहा के बारे में बात करी थी इसने? यार आप समझ सकते हो प्राची भी कितनी नादान है, रेडियो पर बेचारी ब्लश कर रही है, उसको समझ नहीं आ रहा मुझे बोलना क्या है, मैं बोल क्या रही हूँ। वेल कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। ट्रैक पे लेकर आता हूँ कुछ गर्मियों से और संडे से रिलेटेड। उसने पूछा था कि संडे को आप क्या करते हैं या फिर आप क्या चीज़ नहीं करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था तुम लोगों का?
1: हाँ, हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग ये सही सेगमेंट देते थे।
0: क्या क्या सेगमेंट?
1: कि हम संडे कैसे हम लोग अपने स्पेंड करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए स्पेंड।
0: ऑल राइट, वेरी गुड। आज पोहे के बारे में आपको पता होगा, 7 जून को हर साल हम पोहा डे मनाते हैं, विश्व पोहा दिवस। आपने पहले बताओ पोहा खाया है?
1: पोहा
0: मुझे लगता है कि तुम्हें ना प्राची वहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, बिकॉज वॉइस इट्स नॉट क्लियर, मैं सुन पा रहा हूँ, योर साउंड इज नॉट गुड। तो थोड़ा सा इधर आके इस माइक पे तुम मेरा सपोर्ट करो तो तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा बेहतर होगी। तो अब हम प्राची को इस माइक पे सुनते हैं, यहाँ इसकी आवाज़ अच्छी आएगी। हाँ, बेहतरीन आनी चाहिए और बेहतर आनी चाहिए। आप बताओ प्राची, टेल मी।
1: वेल, पोहा तो मुझे बहुत पसंद है और जब पोहा की बात होती है ना, मतलब जब भी हमें कुछ झटपट बनाना होता है तो पोहा और मैगी जो हमें याद आते हैं।
0: एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, मुझे एक मैम ने आज ही बताया रेडियो पे कि पोहा जो है फीमेल होती है। अब आप मुझे बताओ ये मेल है या फीमेल है, आई एम वेरी कंफ्यूज यार।
1: पर मुझे लगता है कि पोहा मेल होता है क्योंकि हम लोग कहते हैं पोहा बना लिया।
0: अच्छा,
1: पोहा बन गया।
0: गाइस आप बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों से पूछना चाहिए। लिसनर्स आप बताओ, आपको क्या लगता है कि पोहा मेल है या फीमेल है? आई डोंट नो, मुझे तो मेल ही लगता है, तुझे क्या लग रहा है?
1: मुझे भी मेल लगता है पोहा। हेलो
0: ब्यूटीफुल पीपल, आप गुजरात में ही बहुत खाते हैं उसे।
1: हाँ, वो जो चटपटी भुजिया होती है उसको अगर हम सर्व कर देते हैं ऊपर से गार्निश कर देते तो वो बहुत ज्यादा
0: गार्निश कैसे लग रहा है, रेसिपी बनानी सिखा रही है आपको ये तो। वाह, अच्छा एक बात बता, पोहा कहाँ का फेमस है, कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा खाया जाता है, कहाँ पसंद किया जाता है, कौन सी सिटी है?
1: आई थिंक इंदौर।
0: क्या बात है, इंदौरी पोहा खाए? नहीं
1: खाए कभी नहीं,
0: है ना? कोई नहीं, बट वहाँ पर जलेबी के साथ बहुत ज्यादा पोहा पसंद किया जाता है।
1: जलेबी के साथ?
0: एब्सोल्युटली, कभी ट्राई नहीं किया होगा आपने, लेकिन करना चाहिए।
1: अभी तो बहुत अमेजिंग लग रहा है कि जलेबी के साथ कैसे टेस्ट देता होगा पोहा।
0: यही तो कॉम्बिनेशन है। एंड अभी मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे लास्ट टाइम एक वीडियो देखा था जिसमें गोलगप्पे के अंदर एक आंटी ने जो है जलेबी रख के खाया। Can you imagine?
1: गोलगप्पे में जलेबी आ गई।
0: I don't know, छोटे छोटे पीसेस किए, वो कट कट करके, देन वो जो पानी पूरी का एक बाउल होता है ना जिसमें हम पानी ऐड करते हैं, उसके अंदर उन्होंने जलेबी डाला, उसके अंदर फिर पानी डाला, एंड देन वो फिर खा रहे हैं उसको। मतलब सत्यानाश कर दिया पूरी गोलगप्पे का।
1: हमारे नॉर्थ इंडिया में तो हम लोगों को तीखा चाहिए बहुत ज्यादा।
0: पुचका खाया?
1: पुचका तो नहीं खाया, बस ये किस क्या होता है, किससे बना होता है
0: पुचका? अच्छा, और चलो मैं बताऊंगा आपको जरूर, पुचका बहुत अच्छा होता है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हम डिस्कस कर सकते हैं, डोंट एवर कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाए, आई डोंट नो। वेल थैंक यू सो मच। और आज का आपका संडे कैसा रहा? वेल
1: मेरा संडे तो अच्छा रहा है क्योंकि हम जुड़ गए अपने लिसनर्स के साथ और फिलहाल अभी तो हमें बहुत मजा आ रहा है, तो संडे हमारा
0: आपके
1: बहुत
0: लिए
1: अच्छा
0: कोई
1: जा रहा
0: मैसेज
1: है।
0: आया है? इसको पढ़ के सुनाओ मुझे, फटाफट हमारे लिसनर्स को सुनाओ।
1: मैसेज आया है आपके लिए, आरजे आनंद जी के लिए। गुड इवनिंग आनंद जी, कैसे हैं आप? इस वक्त आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप, और आपने सॉन्ग्स भी अच्छे प्ले किए हैं, थैंक यू। रीना जी का यहाँ क्वेश्चन था कि संडे ने संडे आप कैसे बिताते हैं, संडे में संडे कैसे बिताते हैं आप?
0: संडे ने अरे वो लिखना
1: क्या
0: बट रफिश वो लिख रहे हैं कि आप अपना संडे किस तरह बिताते हैं। यार क्या कर रही है, अच्छी खासी स्कूल में पढ़ी हुई थी बढ़िया इंग्लिश।
1: नहीं नहीं आप क्यों लिख रहे हैं, थोड़ा ये थोड़ा जूम इन करो आप। सही तो पढ़ा
0: है। अब देखो यार प्राची ऐसे पढ़ूंगी तो मेरे को जो है बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा मैं माइक इधर कर देता हूँ। हाँ अब बोल।
1: रिया जी का ये क्वेश्चन था कि संडे में अपना संडे आप किस तरह बिताते हैं,
0: संडे में आप अपना संडे किस तरह, मतलब दोनों में बात एक ही थी यार।
1: मैंने वही तो बोला, मैंने वही बोला।
0: नहीं नहीं तो हम आपसे फिरकी ले रहे थे, डोंट वरी, आप बिल्कुल करेक्ट हो, इतना हॉपलेस मत हो। आगे क्या लिखते हैं
1: कि इसकी क्या करते हैं आप, अपने परिवार के साथ में रहना चाहते हैं या बाहर घूमना चाहते हैं? अच्छा ये क्वेश्चन रीना जी के लिए है। क्या आप परिवार के साथ रहना चाहते हैं या फिर बाहर घूमना चाहते हैं?
0: रीना तो बाहर घूमने चली गई है, उसका क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे। चलो

0: कॉल करके पूछ लेंगे। और नीचे क्या लिखते हैं?
1: पोहा सर एक खाने वाली चीज है, इसमें फीमेल या मेल का कोई मतलब नहीं होता। वैसे बहुत अच्छी बात कही है आपने, आपके साथ प्राची जी को सुनकर भी अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
0: हाँ, और एक और मैसेज पहुंच गया है।
1: नमस्कार सर, आप अपना आप हमें गाना सुना दीजिए कोई भी जो आपके कार्यक्रम में अच्छा चल रहा हो।
0: सभी अच्छे चल रहे हैं ना प्राची?
1: हाँ, देखिए ये सारे लिसनर्स हमें सुनना चाहते हैं, राधे श्याम, नीलम, निखिल, रविंद्र सिंह और अंकुश, ये महुआ खेड़ा गंज काशीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, उधम सिंह नगर है ये।
0: क्या बात है, वेरी नाइस। और एक और मैसेज आ गया है,
1: ये मैसेज आया है हमारे लिसनर का, गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? आजाद नगर करूला मुरादाबाद से सैयद शारिक अली बात कर रहा हूँ, फ्रेंड इरशाद अंसारी। आज आपको इवनिंग में सुनकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
0: ओके, और ये
1: ये मैसेज आया है हमारे पास, गुड इवनिंग सर, आपने पोहा को मेल और फीमेल कह के तो हमारा दिमाग ही घुमा दिया है। इसके बारे में हम क्या बात बताएं आपको, इसकी पॉपुलेशन के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं।
0: यार आप में से किसी लिसनर ने मेरे को एक क्वेश्चन भेजा सुबह कि वो आनंद जी पोहा इट्स नॉट मेल दिस इज फीमेल, मैंने कहा डिबेट करते हैं फिर आज हम। तो मेरे साथ दो फीमेल भी है, मतलब रीना और ये दूसरी लड़की प्राची भी है, तो मैंने कहा इनसे पूछते हैं ये क्या लिखते हैं। जो हम पढ़कर भी पढ़ नहीं पाते, राइट? चलो एक काम करते हैं कि अच्छे से गाना सुनते हैं और आपको भी आई एम श्योर ये गाना डेफिनेटली पसंद आएगा, बहुत ही अच्छा गाना है। और हमारे साथ इस वक्त प्राची प्रोग्राम में है और हम पोहे की बात तो कर ही रहते हैं। आज एक और बहुत अच्छा डे मनाया जाता है, पता है आपको? जब हम बाहर खाने पीने जाते हैं तो उस पे ना हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है।
1: अच्छा, तो क्या कहते हैं उस डे को, हमारे लिसनर्स को बताइए।
0: बिल्कुल बताएंगे, लेकिन एक गाने के बाद, ठीक है?
1: ओके,
0: चलो। हाँ, दोबारा बोलो, आवाज कट गई थी, फिर से बोलो।
1: हमें इंतजार रहेगा जानने के लिए।
0: बिल्कुल।

0: सुबह सुबह रेडियो ऑन ना करने से पहले
1: माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। माँ
0: अरे तो भाई चश्मा पहन ले और रेडियो ऑन कर ले।
1: माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है।
0: तो भाई साहब आप भी सुबह से लेकर शाम तक ट्यूनिंग कीजिए आपकी शहर का मोस्ट हैपनिंग रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, क्योंकि जब ये चालू होता है तो हर कोई इसे दिल से सुनता है।
2: क्या बात है सर, क्या बात है सर।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

श्रोताओं, आप इस वक्त आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं बिंदास बोल प्रोग्राम, जिसमें प्राची भी हमारा साथ दे रही है। 4:52 हो गए स्टेशन क्लॉक में, और अभी हम अच्छे गीत संगीत तो आपको सुनवाई रहे हैं, अच्छी बातें भी हम कर रहे हैं, लेकिन जाने का समय हो रहा है। जाते जाते कुछ और खास और महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बता के जाएंगे। स्टेशन ऑफ द नेशन पे रेडियो सुनते रहो। बॉस, कैसे सुबह से शाम हो जाएगी पता नहीं चलेगा।

0: बहुत प्यार किया,
1: गाना गाओ।
0: प्यार किया है रे तुझे, प्यार किया।
1: काइजी कह रही गाना कैसे गाते हैं, अब बताओ मैं क्या करूँ।
2: प्यार किया है,
1: प्यार किया है, प्यार किया है तो डरना क्या। प्यार की वो कह रही है आनंद जी, देखिए ये प्यार व्यार और गाने वालों की बातें ना मेरे से मत कराओ, मुझे बस आरजे बना दो। हाय ब्यूटीफुल पीपल, आगे आ जाओ। हेलो प्राची, प्लीज आ जाओ। वेलकम बैक, वंस अगेन यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद। जाने का हो गया है समय, बिंदास बोल सुन रहे थे आप आनंद के साथ, पिछले घंटे रीना थी आपके साथ। और कैसे टाइम हो गया पता नहीं चल रहा है ना, जाने का समय हो रहा है क्योंकि स्टूडियो क्लॉक में वक्त हो गया है कितना, 4:57। हाँ, अब आप कुछ कह रहे थे प्राची, टेल मी। वो हमने लास्ट टाइम पूछा था ना, अभी जाते जाते आज वर्ल्ड
3: फूड सेफ्टी डे है।
1: एब्सोल्युटली,
3: जो हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो
1: बताओ।
3: तो दोस्तों मैं आपको साथ कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। हाँ। कि दोस्तों वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में ये है कि हमें इसलिए अवेयर किया जाता है कि हम जहाँ भी, कि हम जो भी बाहर, आजकल रेस्टोरेंट वाला कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम बाहर जो भी, बाहर का जो भी खाना खा रहे हैं या फिर हम पैकेट वाला फूड भी हमारी लाइफ का बहुत हिस्सा बन गया है। तो हाँ, हमें क्या करना है कि हमें एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी है, जो भी हमारा कोई भी ड्रिंक्स है, कोई भी हमारे चिप्स, जो भी खाने पीने की चीज़ें रहती हैं, तो ये हमें ये भी याद दिलाने के लिए। और साथ ही साथ हमें जो बाहर का जो भी हमें लगता है कि अनहाइजीनिक है खाना, उससे भी हमें बचना चाहिए, और ज़्यादा ऑयली खाने से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हैं जो हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इसलिए बहुत ज़रूरी बन जाता है।
1: वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन प्राची, थैंक यू सो मच, आपने डिलीवर की। आज आपको पता है एक आइसक्रीम वाला डे मनाया जाता है।
3: हाँ, आइसक्रीम चॉकलेट डे, ये तो हम सबका फेवरेट होता है।
1: तो आप मुझे बताओ, आज इंटरनेशनल चॉकलेट आइसक्रीम डे मनाया जाता है, कौन सी आइसक्रीम है जो तेरे को पसंद है?
3: वैसे आइसक्रीम तो मुझे सब पसंद है, पर फिर भी जो होता है वही जो ये मुझे मैंगो फ्लेवर बहुत पसंद है।
1: ऑलराइट, वेरी नाइस, चलो जी अच्छी बात है। सो फिलहाल अभी हमारे ऑफिस में बड़े मजे की बात है, चाय आई लेकिन चाय पी नहीं पाई क्योंकि वो ठंडी थी। बट फिर प्राची ने मुझे एक बहुत ही अल्टीमेट आइडिया दिया, उसने बोला मेरे पास एक रोटी है वो ले आती हूँ। तो अभी एक रोटी लेकर आई और साथ में एक अरवी की सब्जी लाई है। ये भी एक ही है, दो है अरवी, रोटी तो एक ही है, चार लोग बैठे हुए हैं तो चार लोग एक रोटी कैसे खाएंगे, पहले तो ये बता।
3: अरे प्यार से खाते तो सब सब।
1: तो टिफिन क्यों खोल रही है, रेडियो पर लिसनर देखेंगे नहीं, उनको खुशबू भी नहीं जा पाएगी। गाइस टिफिन खोल के दिखा रही है, इट्स नॉट वीडियोग्राफी, दिस इज ऑडियो यार। तो इसके अंदर क्या क्या डाला है तुमने अरबी में, किसने बनाई है सच बताओ?
3: ये अरबी तो मेरी मम्मी ने बनाई है। वैसे
1: इसमें क्या क्या डाला होगा, कुछ आइडिया है?
3: हम क्या डाल सकते हैं, जीरा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, और बस हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, लाल मिर्च,
1: बस ये बस है।
3: और
1: ये अरबी, काफी मसाले,
3: तेल, और क्या, ये सब हमारे सारे लिसनर्स जानते हैं।
1: तो ऐसे अरबी बन जाती है और इसमें हल्दी भी डालते हैं। और एक रोटी क्यों लेकर आई हो, आपको तीन या चार लानी चाहिए?
3: वैसे मैं दो लेकर आई थी अपने लिए, पर मुझे लगता है कि एक रोटी मुझे शेयर कर देनी चाहिए।
1: तो एक तूने खा ली है, एक तू लेके आई है। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 5 बजे लोग रोटी खाते हैं, चाय पीते हैं और समोसे खाते हैं।
3: फिलहाल मैं तो लंच के लिए रोटी लेकर आई थी, तो रोटी वाला लंच लेकर आई थी।
1: तो तू एक बात बता, दो रोटी वाले दो ही डब्बे लेकर आई, एक में सब्जी और एक में एक रोटी, वेरी नाइस, बहुत चालाक दीदी जी, वाह दीदी वाह, वेरी गुड। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम लंच खा के क्यों नहीं आए हो?
3: मैं लंच, क्योंकि अब मैं तो दोपहर में यहाँ थी ना, तो फिर लंच तो फिर यहाँ ही करना पड़ेगा।
1: दो ही रोटी खाते हो आप? तो आप प्राची को अपने घर पे खाने पे बुलाओ, मैं कह रहा हूँ आज ही बुलाओ, क्योंकि ये आपका बहुत सारा खाना बचाएगी, डोंट वरी, दो रोटी में ही काम हो जाता है इसका, इसीलिए तेरी ये पतली बॉडी का राज है, तेरी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसे मेंटेन है, वेरी नाइस। वेल प्राची थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, अच्छा लगा आप आए। और अभी हमारे पास कुछ मैसेज आ गए हैं, क्या मैसेज आया यहाँ पर?
3: आया है जय श्री राम आनंद भाई,
1: जय श्री राम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये कुछ लिख रहे हैं यहाँ पर,
3: अरे देखिए कितना अच्छा लिख रहे हैं ये, पर थोड़ा इनका मैसेज थोड़ा बड़ा है। कार्यक्रम बिंदास बोल,
1: और ये बिना हेलमेट वाला आपको पढ़ना है मेरे को, जरा बताओ ये क्या लिखा है इन्होंने।
3: बिना हेलमेट हमारा चलान 1000 फाइन दे दिया गया, हमने हाथ जोड़कर सबसे बहुत विनती की लेकिन हमारी बात को उन्होंने नजरअंदाज किया और हमें 1000 का फाइन दे दिया, क्योंकि हम बिना हेलमेट के जा रहे थे। कभी भी हम बिना हेलमेट के नहीं जाते, लेकिन छोटी जगह का मतलब ये भी है कि चलो थोड़ी सी देर से ही वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ, बहुत दुख हुआ इससे। हमें कभी हेलमेट ना ना जाने, लेकिन उसे दिन थोड़ा सा बच गए थे, जो गलती हमें बहुत ही बड़ी लगी। किसी से गाना सुना दीजिए अगर आप सुनवा सकते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आप गाना सुनिए जो आपका मन करता है
1: प्राची। लेकिन यार उन्होंने जो अपने स्टोरी शेयर किया है ना, तूने उसका बैंगन का भरता बना दिया। पीछे से रीना भी हंस रही है कि क्या हो रहा है। वेल प्राची, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू आर सो स्वीट, वेरी अमेजिंग, और बहुत अच्छे से पढ़ा। ये ब्रजेश जी का मैसेज था, इन्होंने बहुत लंबा नहीं कर दिया प्राची।
3: हाँ शायद, पर हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने दिल की बात हमसे शेयर की।
1: और प्राची भी चाहती है कि उसका भी 1000 रुपए का चालान हो, वो भी भरवाना चाहती है, इसलिए वो हेलमेट ही लगाती। मैं उसको हेलमेट दे रहा था कल, हम लोग एक काम से बाहर गए थे, तो मतलब शी इज नॉट एक्साइटेड कि मुझे हेलमेट मत दो बिकॉज मेरे हेयर खराब हो जाएंगे, मेरा स्किन टैन हो जाएगा। आई डोंट नो बट व्हाई यू हैव टू नॉट यूज हेलमेट, जबकि बहुत जरूरी है। तुम क्यों नहीं यूज करती हो? नहीं, अब यूज, कल तो तूने नहीं किया था, झूठी।
3: नहीं, हम लोग हेलमेट यूज नहीं कर रहे थे, हर चौराहे पे
1: नहीं चौराहे। वेल गाइस, हम लोग ऐसा इससे जोक से पार्ट, हम लोग हेलमेट लगाते हैं, आप लोग भी जरूर लगाएं। अगर आप गाड़ियों में हैं तो सीट बेल्ट भी लगाएं,
3: प्लीज जरूर हेलमेट लगाएं और सीट बेल्ट लगाएं,
1: ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: सेगमेंट
1: एब्सोल्युटली फनी तो था ही, लेकिन बाकी जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि हमें जरूर फॉलो करने चाहिए रूल्स, है ना। जब हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे होते हैं तो कौन कौन से हमें ध्यान में रखने चाहिए रूल्स, ये बता जाते हुए कुछ पता है प्राची? यदि कल बताऊंगी, आज मत पूछिए, अभी जाने का टाइम हो रहा है, बहुत देर हो गई है ना। चलो कोई नहीं गाइस, फिर मिलते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। अपना ख्याल रखिए, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रेडियो बजाते रहिए। अभी हम दोनों की तरफ से
3: बाय, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
1: चलो फिर मिलेंगे, बाय बाय। एक अच्छा गाना छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए। चलो शाम हो गई है तो थोड़ा डांस करते हुए चले प्राची।
3: हाँ बिल्कुल।
1: ये कौन सा गाना है? अभी तो पढ़ेगी, उसके बाद बताएगी कौन सा गाना है। अरे म्यूजिक नहीं सुन पा रही है तू, क्या लिखा है? चुनरी चुनरी। हाँ कौन सा गाना है?
3: चुनरी चुनरी।
1: तो ये तो तुझे कब का बताना था यार प्राची। चलो कोई नहीं, हम प्राची की वो आरबीएन रोटी चेक करते हैं। फिलहाल आपको फिर मिलेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू प्राची, एक रोटी लाने के लिए थैंक यू। इंसान को चाहिए एक रोटी, कपड़ा और
3: मकान,
1: वो तू लाई नहीं, वो तो तेरे घर पे ही है। चलो कोई नहीं, फिलहाल एक रोटी सी काम चलाते हैं। बाय गाइस, बाय बाय, हैव अ फैबुलस संडे।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: अरे सुनो वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841।
5: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
5: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
6: अपोजिट
5: मधुबनी पार्क मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
6: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: योजनाओं ने 140 करोड़ देशवासियों को नई ताकत दी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हुआ। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुआं मुक्त रसोई, पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को आर्थिक मजबूती और आयुष्मान भारत से आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिली।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।

0: राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: तुम मजाक कर। कर रही हो या लाइन मार रही हो?
4: लाइन मार रही हूं।

0: दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। प्रोग्राम का नाम है खेती किसानी। जी हाँ किसान भाइयों, राम राम आप सभी को। कैसे हाल चाल है आपके? मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। श्रोताओं एक बार फिर से हमारे साथ एक और विशेषज्ञ मौजूद हैं। जी हाँ, आपने इनको पहले भी सुना है, डॉक्टर विनय कुमार जी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। एक बार फिर से हम चर्चा करने वाले हैं आप ही के काम के विषय पर। जी हाँ, मतलब ये जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, जिसपे हम आज चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है गर्मी के मौसम में गन्ने की फसल का वैज्ञानिक प्रबंधन। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी पर बात करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, डॉक्टर विनय जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद के स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर। धन्यवाद
0: जी। जी सर, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय एक बार फिर से निकाला और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए शुक्रिया सर।
1: जी धन्यवाद सर।
0: सर हमारा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि गर्मियों में गन्ने की फसल को पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है क्या सर?
1: जी हाँ, देखिए गर्मियाँ क्या है कि सभी लोगों के लिए जल आवश्यक होता है, और फिर बेसिकली जब गर्मियाँ चल रही हो तब तो वो जो है जल मांग जो है कई गुना बढ़ जाती है, चाहे जीव हो, चाहे जीव में कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जानवर हो, पशु पक्षी हो, या हमारी फसलें हो, या हमारे पेड़ पौधे हो, कोई भी हो, कई गुना हमारा वो बढ़ जाता है। तो जैसे गन्ने की बात करें तो गर्मियों में मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। हल्की भूमि में सिंचाई जल्दी करनी पड़ सकती है।
0: जी ओके, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जो ड्रिप सिंचाई का उपयोग भी लाभकारी हो सकता है क्या, और इससे पानी की बचत होती है क्या, और पौधों को पर्याप्त नमी भी मिलती है क्या?
1: जी देखिए, ड्रिप सिंचाई जिसको हम लोग बेसिकली बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, हमारे जैसे जहाँ पे जल की समस्या होती है, सिंचाई जल जहाँ पे कम होता है, और बाकी अगर अमूनता अगर देखा जाए तो हमें तो यही लगता है कि प्रत्येक किसान को ये चीजें धीरे धीरे अडॉप्ट करनी चाहिए।
0: हाँ जी, हाँ
1: क्योंकि एकदम
0: हाँ
1: से इसको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ड्रिप सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपलाइन पड़ती है, उसमें गन्ने की जो लाइन होती है उसी में ये पाइपलाइन डाल करके बूंद बूंद पानी डाला जाता है। इसमें अतिरिक्त जल जो होता है हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही जल हम पौधे को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई जैसे फर्टिलाइजर देना है, जिसको उर्वरक कह सकते हैं, उर्वरक देना है, या कोई और हमको जो है पेस्टिसाइड या फंजीसाइड कुछ भी हमको देनी है, तो हम सिंचाई जल के साथ में उनको प्रेषित करके हम अपने फसल को उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे अतिरिक्त जल भी हमारा बचता है और किसान की जो है कह सकते हैं कि उनको जो है अतिरिक्त मेहनत नहीं

0: करनी पड़ती, एक बार हमारी पाइपलाइन डल जाती है तो हमेशा वो यूज कर किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, तो गर्मी के मौसम में खरपतवार तेजी से बढ़ता है और फसलों से पोषक तत्व और नमी भी छीन लेता है, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, जिसे समय पर जो है निराई गुड़ाई आवश्यक होती है।
1: हाँ जी।
0: कोई भी फसल हो।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: गन्ने की ही नहीं बल्कि कोई भी फसल हो, समय पर निराई गुड़ाई आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशी, जिसको हम लोग जो है वीडिसाइड भी कहते हैं, का उपयोग करना चाहिए।
1: जी जी।
0: और प्रयास करना चाहिए कि अगर हाथों से इस काम को कर सके, क्योंकि कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, और हमारे अगर हाथों से नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा फैल चुका है, तो उस स्थिति में हम खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं। और खेत को खरपतवार मुक्त बनाए रखना ये जरूरी होता है, क्योंकि इससे जितना ज्यादा खरपतवार होगा उतनी ही फसल हमारी गुणवत्ता कम होगी और उसमें पैदावार भी घट जाएगी।
1: ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए अर्थिंग अप, जिसको हम लोग मिट्टी चढ़ाना भी कहते हैं।
1: हाँ जी, हाँ।
0: जब पौधे जो है हमारे बढ़वार की ओर अग्रसर होते हैं, इसमें कई सारी हमको जो है निराई गुड़ाई करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम अभी पीछे हम चर्चा कर चुके हैं। तो जब हमारा बरसात या वर्षा ऋतु आने से पहले अंतिम जुताई होने के बाद हम इसमें जो है अर्थिंग अप की प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। इसमें मिट्टी का जो है, मिट्टी जो होती है बीज की क्यारियों के दोनों लाइनों के बीच की जो खाली जगह होती है, वहां पे निराई गुड़ाई करके, और जो इसकी मिट्टी होती है वो भुरभुरी किस्म की करके उसको चढ़ा दिया जाता है, जिससे क्या होता है टिलर्स जिनको हम लोग कहते हैं वो ज्यादा निकलते हैं, और मिट्टी चढ़ने से हमारा रूट एरिया मजबूत हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी फसल गिरती नहीं है, गिरने से बच जाती है। और यदि हमारी फसल गिर जाती है, ऐसा नहीं अगर हम करेंगे और हमारी फसल गिर जाती है, तो हमारा उत्पादन भी कम हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, आप लगातार तमाम जानकारियां हमारे श्रोताओं को दे रहे हैं, इसी बीच में आपसे पूछना चाहूंगा कि गर्मियों के मौसम में संतुलित उर्वरक देना बहुत आवश्यक है क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए संतुलित, जैसे हम लोग भी भोजन की थाली जो हम लोग लेते हैं, तो उसमें भी हमको दाल चावल और रोटी सब्जी और सलाद अचार इत्यादि तरीके के हम लोग संतुलित चीजें खाएं। जितना ही संतुलित हम लोग रहेंगे उतना ही हमारी लाइफ भी संतुलित रहेगी। इसी तरीके से पेड़ पौधों में भी होता है, जैसे गन्ने के लिए है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास इत्यादि का संतुलित उपयोग करें, मिट्टी का परीक्षण अवश्य कराएं, जैसा ही परीक्षण रिपोर्ट आती है उसके आधार पर उर्वरक देना ही हमको लाभकारी रहता है। जिंक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी कमी होने पर उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी ओके, अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में कई प्रकार के कीट एवं रोग फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए गर्मी चल रही है, इसमें टॉप बोरर, पायरिल्ला, दीमक इत्यादि कीटों का नियमित निगरानी रखें। अगर कोई ऐसा दिख रहा है तो उसका समुचित उपचार करें, रोग ग्रसित पौधों को तुरंत हटाएं, कृषि विभाग की सलाह के अनुसार दवा का अवश्य प्रयोग करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्या किसान भाई ट्रेस मल्चिंग अपना सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल, देखिए ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जिसे जो किसान भाई जानते सब हैं, जैसे पेड़ी गन्ना होता है तो उसमें क्या होता है गन्ने की सूखी पत्तियां होती हैं, तो उनको अमूनता लोग क्या करते हैं जला देते हैं, जलाने को उसको आसान समझते हैं, लेकिन ये हमारे लिए दुष्प्रभावित होता है। गन्ना पत्ती को अगर जलाते हैं तो पर्यावरण प्रदूषित भी होता है और जो है हमको जो है कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव आग की चपेट में आके नष्ट हो जाते हैं, हमारी मिट्टी की यानी कि खेत की ऊपरी सतह जो होती है आग के संपर्क में आके जो है कठोर हो जाती है। धीरे धीरे अगर हम नियमित ऐसा करते रहेंगे तो हमारी एक दिन भूमि बंजर हो सकती है, तो इसलिए हमको ट्रेस मल्चिंग अपनाना चाहिए। ट्रेस मल्चिंग क्या होता है कि जैसे गन्ने की सूखी पत्तियों को खेत में बिछाने से मिट्टी में जो है नमी बनी रहती है, हमको ज्यादा अंतराल पे पानी की आवश्यकता पड़ती है। अगर ट्रेस मल्चिंग नहीं करेंगे तो हमको जल्दी जल्दी पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे हमारे पृथ्वी में और हमारे जो है खेत की ऊपरी सतह पे पड़ेंगी, तो उसमें जल हानि ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, ट्रेस मल्चिंग अपनाएंगे तो हमारी सूखी पत्तियां जो है उस डायरेक्ट सनलाइट को रोक लेंगे, जिससे क्या होगा कि मिट्टी की नमी हमारी संरक्षित रहेगी। इससे क्या होगा कि अगर पलवार या जैसे कह सकते हैं ट्रेस मल्चिंग ऊपर पड़ी हुई है तो उसमें नीचे की तरफ से अंकुरित होने वाले खरपतवार भी कम से कम आएंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी हमारी बढ़ेगी, क्योंकि कम खरपतवार भी जो है हमारे लिए लाभकारी हो सकते हैं, क्योंकि खरपतवार अगर होंगे तो वो भी सूक्ष्म जीव अवशोषित करेंगे, जल भी अवशोषित करेंगे और हमारी फसल के बीच में कंपटीशन भी क्रिएट करेंगे। तो इसलिए जो ट्रेस मल्चिंग जो है अगर संभवतः जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पेड़ी में उसको करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे से आपने विस्तार से इस पे चर्चा करी। अच्छा, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, यही अच्छी पैदावार के लिए उन्नति प्रजातियां भी महत्वपूर्ण है क्या?
0: जी बिल्कुल, अहम भूमिका रहती है उन्नतशील प्रजातियों का, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ऐसी कहावत हमारे गांव देहात में चलती है। किसान भाई सभी लोग जानते हैं प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। चीनी मिलें क्या करती हैं, जब चीनी मिल प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होता है, तो वो यही कहती हैं कि जो भी प्रजातियां हैं जो प्रमाणित हैं या अनुशंसित हैं उन्हीं को ही आप लोग सप्लाई के लिए चीनी मिल में आपूर्ति करें। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई भी रिजेक्ट वैरायटी को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है उनको तुरंत तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब आपूर्ति का समय आता है तब उनको दिक्कत होती है। तो हमारी अपील है समस्त किसान भाइयों से कि अपना जो है गन्ना क्षेत्र जो है वो प्रमाणित और अनुसूचित प्रजातियों का ही चयन करके बोएं, रोग मुक्त बीज का प्रयोग करें, इससे उत्पादन और चीनी प्रतिशत दोनों ही वृद्धि होगी और दोनों को ही लाभ होगा, चाहे चीनी मिल हो चाहे किसान भाई हो, दोनों लाभकारी होंगे तभी ये जो है चल पाएगा। अगर किसान को लाभ होगा और चीनी मिल घाटे में चली गई तो वो ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। तो आप ऐसी प्रजातियों का चयन करें जिनमें शर्करा प्रतिशत यानी कि जिसमें शुगर परसेंटेज भी हो और पैदावार भी अच्छी हो, तो दोनों के ही कोलेबोरेशन से ये चीज सक्सेसफुल हो सकती है। तो हमारी अपील है कि प्रमाणित और अनुशंसित प्रजातियों का ही किसान चयन करें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, किसानों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव जो आप देना चाहें।
0: जी बिल्कुल, आइए कुछ हम महत्वपूर्ण सुझावों जानते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकते हैं जिसे खेत में जल भराव बिल्कुल ही ना होने दें। जैसे कि हमारे आज के चर्चा के विषय में ही लिखा हुआ है कि हमारा जो है ग्रीष्म ऋतु चल रही है, यानी कि हमारे जो समर सीजन चल रहा है, ज्यादा टेम्परेचर है, धूप की किरणें बहुत तेजी से मतलब हमारे शरीर को हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जल भराव अपने खेत में कर देंगे तो उसमें क्या होगा कि जल भी गर्म होगा और गर्म जल में अगर हमारा पौधा रहेगा तो स्ट्रेस में चला जाएगा और वो अपनी बढ़वार को खो देगा, यानी कि धीरे धीरे उसकी बढ़वार कम होती जाएगी। जब आवश्यक हो तभी जल आपूर्ति करें, यानी कि तभी उसमें सिंचाई करें। अब व्यर्थ में जल भराव ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश ना करें, जल भराव हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए नुकसानदायक है। दूसरा है समय पर सिंचाई करें, जब आवश्यक हो तभी सिंचाई करें, संतुलित उर्वरक का उपयोग करें, रोग और कीट पर नजर बनाए रखें, क्योंकि आपने अगर उसका निदान कर लिया और पड़ोस वाले खेत से उड़ करके आपके यहाँ भी आ सकते हैं, तो इसलिए रोग और कीट का समय पर जो है उपचार जरूरी होता है, तो इसलिए उस पे नजर बनाए रखें। अगला हमारा है कह सकते हैं कि गन्ना जो पत्तियां होती हैं उनको ना जलाएं, जैसे हमने पिछले अभी अपने प्रश्न आपके प्रश्न में जो है हमने बताया था,
1: जिक्र किया था
0: कि गन्ने की पत्तियां जो होती हैं उनको जलाया ना जाए, उनको आप मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कई सारी मशीनें आ गई हैं, मल्चर वगैरह आते हैं, उनको पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आपके खेत में बिखेर देता है, जिससे वो आसानी से कह सकते हैं डिकम्पोज हो जाती हैं। तो गन्ने की पत्तियों को प्रयास करें कि ना जलाएं। अगर आपको नहीं रखना है तो आप वो कंपोस्ट पिट बना करके उसमें आप डाल सकते हैं, जिसकी आप खाद बना करके फिर से अपने फसल में यूज कर सकते हैं। अगला हमारा है एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि कृषि वैज्ञानिकों की जो है सलाह लेते रहें, जो भी हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं आपके यहाँ पे, कृषि विज्ञान केंद्र हैं या चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी गण हैं या समिति के जो गन्ना पर्यवेक्षक गण हैं, उन लोगों से संपर्क में बनाए रहें और उनसे समय समय पर सलाह लेते रहें।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण सेशन में, इस श्रृंखला में आपने तमाम जानकारियां दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देंगे, कोई एक प्रेरणादायक मैसेज जो आप देना चाहें?
0: जी देखिए, अभी जैसे कि हमारे शीर्षक में ही है कि ग्रीष्म ऋतु, तो सामान्यतः 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें, गन्ने की सूखी पत्तियां जो है नहीं जलाएं, मल्चिंग जो है अपनाएं, मल्चिंग नहीं आप कर सकते हैं तो उसको कंपोस्ट पिट में उसको आप डिकम्पोज करके अपनी पत्तियों से खाद बनाएं, जिससे आपको उर्वरक में या फर्टिलाइजर में आपको अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ेगा।
1: बहुत बढ़िया, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ मेरे पास सवाल भी है हमारे किसान भाइयों के, अगर आप चाहें तो उस पर भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: जी। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास आया है कि मतलब एक बहुत ही अच्छे श्रोता ने हमें भेजा है, किसान भाई ने, कि गर्मी में गन्ने की सिंचाई कितने दिनों तक और कितने अंतराल पर हमें करनी चाहिए?
0: जी जैसे कि अभी हमने पीछे बता दिया है कि गन्ना होता है तो उसमें जितनी फसलें होती हैं, सबसे ज्यादा जल मांग अगर किसी फसल की है तो वो गन्ने की है, क्योंकि ये पूरी वार्षिक रहती है, पूरे वर्ष चलती है, इसमें कई सारी सिंचाइयां करनी पड़ती हैं। अमूनता कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है हमारा, तो इसमें टेम्परेचर ज्यादा यानी कि तापमान ज्यादा होने के कारण जल मांग बढ़ती है। जैसे ही हम जल मांग आती है तो वो कम दिनों के अंतराल पे ही हमको सिंचाई करनी पड़ती है, तो 10 से 15 दिन के अंतराल पर अमूनता उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है।
1: जी एक और किसान भाई का प्रश्न आया था कि क्या गन्ने की सूखी पत्तियां हमें जलानी चाहिए?
0: जी नहीं, अब ये सूखी पत्तियां हमारे लिए लाभकारी हो सकती हैं, इनको हम मल्चिंग में प्रयोग कर सकते हैं, इनका हम जो है जैसे अभी कह सकते हैं कि डिकम्पोज करके हम लोग इसका जो है खाद बना सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसकी जो रोलर एक मशीन आती है उसमें रोल बना करके जी, इनको जी। हम लोग बेच करके अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक श्रोता और है हमारे जिन्होंने हमें प्रश्न किया है, डॉक्टर साहब की सर्वेक्षण में गलती होने पर क्या करें?
0: देखिए अगर सर्वेक्षण जैसे कि अगर गन्ना सर्वेक्षण हुआ है, गन्ने की सर्वेक्षण के समय आप जो है अपनी स्लिप अवश्य लें, स्लिप में आप कोई भी गलती अगर पाते हैं तो तुरंत ही संबंधित कार्यालय या अधिकारी से संपर्क करें और उसको संशोधन करने के लिए आप अपील करें।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला, हमारे श्रोताओं को तमाम जानकारियां दी, पूरे विस्तार से आपने चर्चा करी, तो ये एक खास बातचीत खेती किसानी के माध्यम से आप सुन रहे थे, आप एक खास बातचीत सुन रहे थे डॉक्टर विनय जी के साथ, और आज हमने तमाम विषयों पर चर्चा करी, जैसे हमने गन्ना सर्वेक्षण का महत्व जाना, किसानों की जिम्मेदारी पर हमने बात करी, गर्मियों में गन्ने की वैज्ञानिक देखभाल पर हमने चर्चा करी, सिंचाई ये क्या था सर, उर्वरक ओके हमने श्रोताओं आज हमने चर्चा करी, साथ ही साथ सिंचाई, उर्वरक एवं कीट प्रतिबंधन के ऊपर हमने जो है तमाम चर्चा करी। और अभी मैं डॉक्टर साहब आपसे जाते जाते ये और पूछना चाहूंगा कि आप अगर कुछ और आपको लगता है कि किसान भाइयों को आपने बताना चाहिए तो आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते?
0: देखिए ये जो जानकारी जो भी आपको दी गई है, इसमें हमारा जो अभी जो मौसम चल रहा है ये बहुत ही सावधानी पूर्वक रहन सहन के लिए है, चाहे हम हों, पशु पक्षी हों, हमारे जानवर हों या हमारी फसलें हों, क्योंकि ज्यादा तापमान में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता।
1: Correct.
0: तो दिन प्रतिदिन तापमान बढ़ता जा रहा है, जब तक बरसात नहीं होगी ऐसा ही समय रहेगा, तो इसके लिए हमको अपना और अपनी फसलों का, अपने जीव जंतुओं का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि समय पर जैसे फसलें हैं तो उनको समय पर पानी देना चाहिए, कोई कीट, कोई रोग या कोई अन्य व्याधि हमारे खेत में अगर हमको प्रदर्शित हो रही है तो उसका अतिशीघ्र हमको जो है उपचार करना चाहिए।
1: बहुत बढ़िया, और श्रोताओं हमें आशा है कि आपको ये जानकारियां बहुत उपयोगी लगी होंगी और आपके लिए सिद्ध भी होंगी, तो यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन से संपर्क कर सकते, हमारे व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, 9837896896 ये हमारे स्टूडियो का नंबर है जो आपके लिए अवेलेबल है, आप इस पे हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम जरूर डॉक्टर साहब तक पहुंचाएंगे। और मैं हूं आपका साथी आनंद, और अब आपसे लेता हूं अलविदा, अब आपको बोलूंगा टाटा बाय बाय, अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद सर,
1: जी
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं आप सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।
2: बहुत बढ़िया।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।
2: दिस साइड आरजे रीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
3: देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनुरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: तो सबसे
2: सही।
3: बड़ी चीज है, ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
2: सही का,
3: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
3: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही सर, और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
3: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
2: बिल्कुल सर, तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है।
3: देखिए, आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटम ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटम ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटम ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटम ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटम ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो बात, जो अदालत ने जो बात कह दी है, आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
2: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
3: देखिए, कंटम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक सिविल कोर्ट का कंटम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कोर्ट, सिविल कंटम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है, तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती

0: सुना सकते बिल्कुल।
1: जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
0: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
1: देखिए, अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकती है। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
0: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
1: विशेष तौर पे 5 तरीके की रिट्स होती है ये। भारत में कुल जो 5 तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो 5 रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे LLB के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
0: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
1: अलग अलग, हर रिट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रिट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पे जो हैबियस कॉर्पस रिट होती है ये रिट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको। थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पर रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये है कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके लिए इसमें विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाई कोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
0: या नहीं है।
1: हाँ। तो मुख्यतः ये 5 रिट होती है, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते।
0: अंत में सर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
1: देखिए कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है, हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शंस हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ।
0: परफेक्ट हूँ बिल्कुल।
1: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
1: मेरे को मानत उपाधि एक यूनिवर्सिटी से मिली थी और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में मानत उपाधि मिली हुई है।
2: वैसे
1: बाइक क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है और अभी नाउ आई एम परसुइंग एलएलएम।
0: LLM. तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
2: देखिए
1: बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा
2: खुद का ड्रीम था,
1: हाँ मुझे एमकॉम करना है, उसके बाद मेरे को एमबीए करना है, लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
0: हाँ सर वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
1: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी
0: थी,
1: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
0: बिल्कुल क्या बात,
1: क्योंकि इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
0: बिल्कुल,
1: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा और मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में।
0: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
1: बस तो एक एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
0: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
1: मिलती है, और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर सही।
1: मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
1: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम चलते रहना है सुबह शाम।
0: बिल्कुल,
1: तो बस यही लाइफ है
0: सर। किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल। किताबें ही आपकी
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।

0: बसंतीन के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: क्या आप सर दर्द, कमर दर्द या गर्दन दर्द से परेशान हैं? अब आपकी हर न्यूरो समस्या का समाधान है डॉक्टर अभय सिंह के पास, जहां मिलता है एक्सीडेंट की चोट, मिर्गी, ब्रेन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की बीमारी और स्लिप डिस्क का विशेष इलाज। मुलाकात करें क्लेस हॉस्पिटल 4 से 6 बजे, नए मुरादाबाद हमारे सेंटर पर दोपहर 1 से 2 और शाम 6 से 8 बजे। डॉक्टर अभय न्यूरो केयर सेंटर, संपर्क करें 9548539705।
3: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को सवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: टायर लो सोना जीतो।
3: क्या?
2: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए, विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
4: अपोजिट
2: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
4: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के शहर का अपना सामुदायिक रेडियो और आपका फेवरेट प्रोग्राम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गया हूँ मैं आपका दोस्त आनंद और मेरे साथ हैं
1: आरजे रीना।
0: यस दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकास की, विरासत की और उन स्वादों की जो हमारी मिट्टी की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए हैं।
1: और आज हम पहुँचे हैं पूर्वांचल के धड़कन यानी गोरखपुर में, जहाँ की बोली में अपनापन है और खाने में देसी स्वाद का जादू।
0: बिल्कुल, और आज का हमारा विषय है एक ऐसा व्यंजन जो गरीब से लेकर अमीर तक, छात्र से लेकर अधिकारी तक और हर किसी की पहली पसंद बन चुका है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे मशहूर देसी व्यंजन लिट्टी चोखा की।
0: वाह, नाम सुनते ही जैसे देसी घी की खुशबू हवा में घुल गई हो।
1: और अब इस स्वाद को नई पहचान देने जा

0: रही है योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुंजीन यानी ODOC योजना।
1: जिस तरह ODOP योजना ने प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाया है, उसी तरह अब ODOC योजना जिलों के पारंपरिक व्यंजनों को ग्लोबली पहचान दिलाने जा रही है
0: और गोरखपुर जिले की पहचान के रूप में चुना गया है। स्वाद और सेहत का अनोखा संगम लिट्टी चोखा।
1: दोस्तों, लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं है बल्कि पूर्व यूपी की संस्कृति, गांव की मिट्टी और देसी जीवन शैली का हिस्सा है।
0: सही कहा। पहले गांव में जब खेतों में काम खत्म होता था तो शाम को चूल्हे पर कड़े की धीमी आंच में लिट्टी सेकी जाती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर उसे चोखा और घी के साथ खाता था।
1: यानी लिट्टी चोखा सिर्फ खाना नहीं बल्कि परिवार, अपनापन और परंपरा का स्वाद है।
0: और सबसे खास बात, यही स्वाद जितना लाजवाब है उतना ही सेहतमंद भी।
1: तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लिट्टी बनती कैसे है।
0: सबसे पहले गेहूं के आटे को अच्छे से गूंधा जाता है, फिर उसके अंदर भरा जाता है चने का सत्तू।
1: लेकिन ये कोई साधारण भरावन नहीं होता, इसमें मिलाया जाता है अजवाइन, मुगरेला, लहसुन, हरी मिर्च, अचार का मसाला, नींबू और सबसे जरूरी देसी सरसों का तेल।
0: उफ, सोच कर ही भूख बढ़ जाए।
1: फिर इसी भरी हुई लिट्टी को कंडे यानी उपले की धीमी आंच पर धीरे धीरे सेका जाता है। लिट्टी को बार बार पलटा जाता है ताकि हर तरफ से वो सुनहरी और कुरकुरी हो जाए।
0: और जब गर्म गर्म लिट्टी तैयार होती है तो उसे देसी घी में डुबो दिया जाता है। घी की खुशबू और सत्तू का स्वाद, यही तो इसकी असली पहचान है।
1: अब बात करते हैं इसके साथी यानी चोखे की।
0: चोखा बनाने के लिए भुने हुए बैंगन, उबले आलू और टमाटर को अच्छे से मैश किया जाता है।
1: फिर उसमें डाला जाता है प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया, नमक और कच्चे सरसों के तेल की धार।
0: यही सरसों का तेल चोखा को वो देसी फ्लेवर देता है जो हर निवाले को खास बना देता है।
1: और दोस्तों, जब गरम लिट्टी को तोड़कर उसमें चोखा भरकर खाया जाता है तो स्वाद सीधे दिल तक पहुंच जाता है।
0: यही वजह है कि गोरखपुर में लिट्टी चोखा हर वर्ग के लोगों की पसंद बन चुकी है।
1: छात्र संघ चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज रोड, तारामंडल क्षेत्र, हर जगह आपको लिट्टी चोखे की दुकानें नजर आ जाएंगी।
0: छात्र हो, कामकाजी लोग, रिक्शा चालक, व्यापारी या पर्यटक, हर कोई बड़े चाव से लिट्टी चोखा खाता है
1: क्योंकि ये स्वादिष्ट भी है, पेट भरने वाला भी है और जेब पर भी भारी नहीं पड़ता।
0: और दोस्तों, एक समय था जब लिट्टी चोखा सिर्फ ठेले और रेहड़ी पर मिल जाता था,
1: लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज गोरखपुर में आधुनिक आउटलेट्स खुल चुके हैं,
0: यानी देसी स्वाद अब मॉडल स्टाइल में भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
1: कुछ आउटलेट्स में तो मिट्टी के कुल्हड़ में चोखा परोसा जाता है ताकि ये ग्राहकों को पूरा देसी अनुभव मिल सके।
0: और सोशल मीडिया के दौर में भी तो लोग पहले फोटो खींचते हैं फिर लिट्टी खाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा अर्जिरीना।
0: इतना ही नहीं, अब दूसरे शहरों में फ्रेंचाइजी की मांग भी आने लगी है।
1: यानी लिट्टी चोखा अब सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी पहचान बनाएगा।
0: सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
2: सबसे पहले हमें अपना नाम बता दें।
3: मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। मैम,
2: विकास जी, आपका ये प्रतिष्ठान कब से गोरखपुर में स्थापित है?
3: ये हमारा जो है 15 जनवरी से हम लोगों ने इसको ओपन किया।
2: जी जी, तो बाटी चोखा ही क्यों?
3: बाटी चोखा क्या है कि हम लोगों ने पूर्वांचल की चीजों को देखा है और जो सबसे ज्यादा चलने वाली चीजें हैं, जैसे कि पूर्वांचल में बाटी चोखा एक रिलेटेड है, अपने मट्टी की खुशबू को लेते हुए हम लोगों ने इस चीज को किया है, बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट किया है। हर जगह जो है आजकल देखा जाए तो व्यंजन तो बहुत है, चाइनीज है, इंडियन है, कई चीजें मिल जाती हैं जो अपनी मिट्टी की चीजें नहीं मिल पाती, इसलिए हम लोगों ने बाटी चोखा का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई कुछ अपना किया जाए उसको।
2: जी जी। अच्छा, जहाँ इतने सारे चाइनीज विदेशी व्यंजन अब उपलब्ध हैं, तो आपको ये थोड़ा रिस्क नहीं लगा कि बाटी चोखा पे हम इतना बड़ा शोरूम बना रहे हैं क्या हमारे पास कस्टमर्स आएंगे?
3: नहीं, इस दरअसल था ऐसा, लेकिन फिर मैंने ये अपना सोचा गया कि देखिए हमारा जो भी है, जो भी यहाँ रहते हैं, जो भी लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूर्वांचल की मिट्टी से ही जुड़े हैं। आज भले वो कहीं भी रहें, किसी दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन वो उठे ही हैं देहात से। तो इसीलिए हमने बस इसको जो है इस पे जोर दिया गया।
2: शहर में कई सारे बाटी चोखा के प्रतिष्ठान हैं, तो आपका स्पेशल क्या है?
3: हमारा देखिए स्पेशल क्या है कि हमारा जो बाटी चोखा है वो सॉफ्ट है।
2: जी।
3: आप कई जगह खाई होंगी बाटी चोखा, तो जो उसकी परत होती है बहुत टाइट होती है, बच्चे नहीं खा सकते हैं। आप हमारे यहाँ खाएंगी तो बच्चे भी बहुत आराम से उस चीज को खा लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी बाटी चोखा है बहुत सॉफ्ट होता है, एकदम मुलायम, वो हर तबके के चाहे वो बूढ़े हों बच्चे हों सबको पसंद आएगा हमारा।
2: जी जी, ये बताइए कि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रहती है, युवा की रहती है या फिर फैमिली ज्यादा आती है?
3: तो ये हमारे यहाँ जो भी है फैमिलियाँ ज्यादा आती
2: है। फैमिली ज्यादा
3: जी मैम।
2: हमारे जो माननीय
3: मुख्यमंत्री
2: के द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया गया एक जनपद एक व्यंजन,
3: हाँ एक जनपद एक व्यंजन
2: जी, जिसके तहत हम आके आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे महाराज जी के लिए?
3: महाराज जी के लिए तो क्या कहा जाए, महाराज जी तो खैर अपने आप में खुद ही बहुत अच्छे सीएम है वो, और अगर उन्होंने कोई चीज पहल की है तो बहुत अच्छी पहल की है।
0: और दोस्तों ODOC योजना सिर्फ व्यंजनों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे जुड़े कारीगरों रसोइयों छोटे दुकानदारों और उद्यमों को भी सीधे लाभ मिलने वाला है।
4: बिल्कुल, सरकार इस योजना के तहत लिट्टी चोखा बनाने और बेचने वाले लोगों को प्रशिक्षण कौशल विकास और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
0: स्वयं सहायता समूह महिलाओं उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं ताकि स्थायी स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिल सके।
4: साथ ही बेहतर ब्रांडिंग पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के माध्यम से छोटे विक्रेताओं और पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले लोगों को बड़े बाजारों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
0: इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और स्थानीय खाद्य व्यवसायों को नई पहचान मिलेगी।
4: यानी ODOC योजना सिर्फ स्वाद को दुनिया तक पहुंचाने की पहल नहीं है, बल्कि स्थानीय कारीगरों दुकानदारों और उद्यमों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
0: पर्यटन विभाग भी अब प्रमुख आयोजनों और पर्यटन स्थलों पर लिट्टी चोखा के विशेष स्टॉल लगने जा रहे हैं।
4: यूपी दिवस के समारोह में भी लिट्टी चोखे का स्टॉल लोगों को आकर्षण का केंद्र बना देता है।
0: और सच कहें तो लिट्टी चोखा सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की एक स्वादिष्ट मिसाल है,
4: क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज देसी और प्राकृतिक होती है।
0: गेहूं, सत्तू, सरसों का तेल, बैंगन, टमाटर सब कुछ स्थायी किसानों और बाजारों में आता है।
4: यानी इस एक व्यंजन से किसान, हलवाई, दुकानदार और छोटे कारोबारी सभी को रोजगार मिलता है।
0: यही तो है ODOC योजना की सबसे बड़ी ताकत, स्थानीय स्वाद को वैश्विक पहचान देना।
4: दोस्तों आज फास्ट फूड के दौर में लोग फिर से देसी और हेल्दी खाने की तरफ लौट रहे हैं
0: और लिट्टी चोखा इस बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण बन चुका है।
4: देसी स्वाद, देसी खुशबू और देसी मिट्टी का एहसास, सब कुछ एक ही प्लेट में।
0: तो अगर आप कभी गोरखपुर आए तो यहाँ का लिट्टी चोखा जरूर खाइए,
4: क्योंकि एक बार जो इसका स्वाद चख ले वो इसे कभी नहीं भूल पाता।
0: और योगी सरकार की ODOC पहल अब इस स्वाद को दुनिया के हर कोने तक पहुँचाने की तैयारी में है।
4: तो दोस्तों आज हमने जाना कैसे लिट्टी चोखा सिर्फ भोजन नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता की पहचान है,
0: और कैसे ODOC योजना स्थानीय व्यंजनों को नया बाजार, नई पहचान और नए अवसर दे रही है।
4: इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश एक नए सफर में। नमस्कार। तो दोस्तों आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
2: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइंस नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
3: कॉल 8826213131।

0: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
2: और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई दो विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल एक में आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ निरंतर विकास की राह पर अग्रसर है। रिंग रोड के निर्माण से जहां यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया और संगठन से मजबूती के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। श्री चौधरी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
3: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। यह सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है।

0: और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है, उन दोनों कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2017 से भी बड़ा बहुमत लेकर के हम चुनाव जीतेंगे।
1: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जन संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौहा के लखौली गांव में नल से जल योजना के तहत जलापूर्ति न होने के मामले को गंभीरता से लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। वहीं परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने आज आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में कहा कि देश की जनता के आशीर्वाद से 10 जून को सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त होगा।
4: 10 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
1: प्रदेश के ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने आज मऊ में मधुबन क्षेत्र स्थित इंदिरा गांधी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में एडीप और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत 2,500 से अधिक दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क ट्राई साइकिल और अन्य सहायक उपकरण का वितरण किया। देवरिया में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने खनुआ नदी में बृहद स्वच्छता एवं सफाई अभियान चलाया। इस दौरान नदी से शैवाल जलकुंभी अवशेष पदार्थ को नाव जेसीबी की मदद से साफ किया गया। कृषि मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया। अभियान में SDRF और PSC 26वीं वाहिनी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम हैं।
5: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। लखनऊ में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 979.50 रुपए हो गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कल से अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। इस दौरान बुंदेलखंड और प्रयागराज में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी जिलों में 10 जून से कहीं कहीं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जून से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है राजधानी। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए कल से 10 जून तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच चलाई 2 विशेष ट्रेनें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में अगले दो दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की जताई आशंका। बुंदेलखंड में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ देखने का, बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे स्पेस आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खाक देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनेगी। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा हैं,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा हैं वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं। धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नजारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जोड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, रिटेन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय स्वादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
1: जी
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत दिल्ली में 2,800 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन आवेदन का आज आखिरी दिन, मध्यरात्रि में बंद हो जाएगा पोर्टल। दिल्ली में सार्वजनिक यातायात सेवाओं के विस्तार के लिए दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इसके तहत भारत सरकार की पीएम ई ड्राइव स्कीम, प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट के अंतर्गत पूरी तरह से इलेक्ट्रिक 2,800 एयर कंडीशन्ड लो फ्लोर बस दिल्ली परिवहन निगम DTC के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई गई है।
6: इस अभियान में 1,409 मीटर और 1,412 मीटर वाली इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं। इस पहल से दिल्ली में सार्वजनिक यातायात तक पहुंच बेहतर होगी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगी। ये पहल दिल्ली सरकार के उस दृष्टिकोण का हिस्सा है जिसका लक्ष्य पूरे शहर में सार्वजनिक यातायात के लिए DTC की बसों की संख्या बढ़ाना और जीरो एमिशन आधारित यातायात संसाधनों की हिस्सेदारी को भी बढ़ावा देना है। दिल्ली में लगभग 4,300 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, जो इसे देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बस फ्लीट में से एक बनाती है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक इस संख्या को बढ़ाकर लगभग 7,500 इलेक्ट्रिक बसों तक पहुंचाना है। दिल्ली सरकार के इस पहल से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने, वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और लोगों को साफ, सुरक्षित और भरोसेमंद सार्वजनिक यातायात प्रणाली उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
5: दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। मुख्यमंत्री अभियान में नागरिकों के साथ मिलकर स्वच्छ और स्वस्थ यमुना के संकल्प को मजबूत करेंगी। श्रीमती गुप्ता ने कहा है कि यमुना केवल नदी नहीं बल्कि दिल्ली की सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय धरोहर है। यमुना के संरक्षण का दायित्व सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: 14 जून को आयोजित होने वाले यमुना तट स्वच्छता अभियान 2026 के अंतर्गत यमुना रिवर फ्रंट के प्रमुख घाटों पर एक साथ स्वच्छता और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इस अभियान में लगभग 500 सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और स्वयंसेवी संगठनों के साथ हजारों स्वयंसेवकों की भी भागीदारी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी नागरिकों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवकों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सहभागिता से ही स्वच्छ, निर्मल और जीवनदायिनी यमुना का सपना साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भी यमुना व उसके घाटों को स्वच्छ बनाने के लिए मेरी यमुना मेरा कर्तव्य अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कार्यक्रम में हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया था और 12 टन से अधिक अपशिष्ट वेस्ट एकत्र कर उसका वैज्ञानिक निस्तारण किया गया था। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष का अभियान और अधिक व्यापक स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दिल्ली नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा, आपातकालीन सेवाओं और स्वच्छता संबंधी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
5: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान मेजर बराक की उत्कृष्ट सेवा और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत के लंबे योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि देश की अनेक युवा बेटियों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापना के प्रयासों में मेजर बराक की उत्कृष्ट कार्यकुशलता और अनुकरणीय नेतृत्व ने वैश्विक पटल पर देश का सर गर्व से ऊंचा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी। मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में इंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हैं। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रूपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रूपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रूपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
5: इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रूपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रूपए है। दिल्ली के जल और सिंचाई मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज वरुणालय में क्षेत्रीय राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान पूर्ण पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम करने पर बल दिया। इस बैठक में सभी अधिकारियों को निवासियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने, उनकी चिंताओं को समझने और निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नागरिक को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं और लाभों के बारे में जानकारी हो। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी में साइकिलिंग अभियान पैडल द बीट संडे ऑन साइकिल आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस रैली में बच्चे, युवा, महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और फिटनेस प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अभियान का आयोजन जनकपुरी में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इससे जुड़ना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से नियमित रूप से खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया।
9: संडे ऑन साइकिल भारत सरकार का एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। खेलों और फिटनेस के इकोसिस्टम को प्रमोट करने की भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पहल है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इस पहल को दिल्ली की गलियों तक ले जाना फिटनेस के इकोसिस्टम को बढ़ाने का एक प्रयास।
5: दिल्ली पुलिस ने आज करावल नगर में एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर संडे रेस कार्यक्रम का आयोजन किया। भागता भारत नाम का यह संगठन राष्ट्रीय स्तर के धावक बनने की आकांक्षा रखने वाले पेशेवर धावकों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करता है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस उपायुक्त संदीप लांबा ने संवाददाताओं को बताया कि प्रत्येक रविवार को अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल IDFC फर्स्ट बैंक और AU फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। दिल्ली पुलिस ने आज रोहिणी से एक अवैध शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी के पास से अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल की गई एक गाड़ी जब्त की गई। मामले की जांच की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सी ब्लॉक में 4 मंजिला इमारत में आज दोपहर आग लग गई। 3:40 पर घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 4:05 पर आग पर काबू पा लिया गया। इस मामले में स्टेशन ऑफिसर राजकुमार ने बताया कि टीम ने तुरंत सीढ़ियां लगाई, बचाव अभियान शुरू किया और आग बुझाने का काम शुरू किया। उन्होंने बताया कि कुल 8 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी सभी के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दोहराती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। भारत ने कल गोवा के मडगांव में खेले गए फाइनल में मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार खिताब अपने नाम किया। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत दिल्ली में 2800 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होंगी। दिल्ली सरकार 14 जून को यमुना तट स्वच्छता अभियान का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के पुनर्मूल्यांकन आवेदन का आज आखिरी दिन, मध्यरात्रि में बंद हो जाएगा पोर्टल। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: ये देख कैसे।
11: हैप्पी बर्थडे भाई।
10: देखा?
12: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
13: हमेशा शॉपिंग।
11: आई नो माँ,
12: बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
13: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
14: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
11: आई नो ना।
14: RBI कहता है,
15: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
16: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। श्रोताओं, कविता सिर्फ शब्दों का जोड़ नहीं होती, यह वो धड़कन है जो समाज के सुख दुख को अपनी आवाज देती है। और जब बात आकाशवाणी की हो तो यह मंच गवा रहा है भारतीय काव्य परंपरा के उस स्वर्णिम काल का जिसने इतिहास की दशा को बदला है। 9 दशकों का ये सफर दरअसल हमारी भावनाओं, हमारे आंदोलन और हमारी कलात्मक अभिव्यक्ति का एक ऐसा गंतव्य है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सींचा है।
17: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
18: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
17: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
18: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
19: कॉल 7500153841।
20: टायर लो सोना जीतो।
21: क्या?
20: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
22: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
23: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
1: अरे भाभी आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
0: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
2: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
3: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
4: इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विश्वसनीय स्थान SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन,
5: वर्लपूल ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। 0% ब्याज की सुविधा के लिए विजिट करें SS ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, सिविल लाइन्स नियर दयानंद डिग्री कॉलेज, मुरादाबाद।
6: कॉल 8826213131।
7: नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद और इस वक्त आपने ट्यून इन किया है आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 FM, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और आज दिल से दिल का जो कनेक्शन है वो मेरे अकेले RJ आनंद का नहीं, मेरे साथ दो और कमाल के लोग हमारे स्टूडियो में उपस्थित है, मौजूद है। उनसे ढेर सारी बातचीत करेंगे आज हम, और वो आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आए हैं ये मैं नहीं, वो ही बताएंगे, जिसमें से एक को आप बहुत अच्छे से जान चुके होंगे अब तक, क्योंकि जब रेडियो पे कोई एक बार अगर सुनाई देता है तो फिर उसकी पकड़ और पहचान दोनों ही हो जाती है। यही तो खास बात है फिर मुरादाबाद में, जो आते हैं फिर वो फेमस हो जाते हैं। चलो जी, ये तो हुई हमारी थोड़ी सी फालतू बात, अब करते हैं काम की बात। आज हमारे स्टूडियो में दो लोग बहुत ही कमाल के हैं जैसे मैंने बताया, और दोनों के नाम डेफिनेटली मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम उन्हीं से उनका तारूफ जो है आपसे सीधा करा दें तो ज्यादा बेहतर है। फिलहाल आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, क्योंकि ये आज की जो बेहतरीन महफिल है ना, ये आपको बहुत कुछ आनंदित करने वाली है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर जानने को सुनने को मिलेगा। तो आप स्टे ट्यून रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे प्यारे से, जो अब हमारे श्रोता हैं और हमारे प्यारे गेस्ट भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका FM मुरादाबाद में। एक बार अपने बारे में थोड़ा बताएं जी। सर पहले मैं चाहूंगा आप, सर आपसे जो है थोड़ा परिचय हो।
8: ये तो लखनऊ की संस्कृति थी कि पहले आप ये मुरादाबाद में भी लागू हो गई है जी।
7: बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए दूसरी आवाज आपने पहली आवाज से पहली सुन ली, लेकिन उनको मुखातिब आपसे थोड़ी देर के बाद ही कराएंगे, क्योंकि थोड़े स्पेशल लोगों को वेट कराना चाहिए। जी सर आप थोड़ा सा बताएं।
9: जी जी बिल्कुल आनंद जी, मैं हाजिर हूँ। श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
7: जी जी बिल्कुल, आपको भी मेरा नमस्कार।
9: सब भी मुझे जानते हैं, आप सब जानते हैं, आप सबका प्यार मुझे मिलता रहता है। मैं हूँ मनोज मनु मुरादाबाद से, और दिल से शायर भी, कवि भी, हिंदी में भी और उर्दू में भी कहने की कोशिश रखता हूँ। और मेरे साथ जो साथी आज एक अजीम हस्ती है, जो मुरादाबाद से ही ताल्लुक रखती है, शहर जिगर से ही ताल्लुक रखती है, ये हैं शुभम कश्यप जी। शुभम कश्यप जी आपको अपने बारे में खुद बताएंगे। शुभम कश्यप जी कुछ अपने बारे में हमारे श्रोताओं को।
8: FM मुरादाबाद 89.6 के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं शुभम कश्यप, शुभम मुरादाबादी, और बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे आप सबसे मुखातिब होने का ये मौका मिला है। उसके लिए मैं FM मुरादाबाद की सभी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर पे मैं मनु जी का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस लायक समझा कि FM मुरादाबाद के सभी श्रोताओं से मैं रूबरू हो सकूं।
9: नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे बीच में हैं, हमारे श्रोताओं के लिए।

0: रवायत है पहले आप तो क्यों ना हो, हमारे यहाँ की जो राजधानी है एक्चुअल वो है तो लखनऊ ही
1: राजधानी है,
0: हमारे योगी बाबा लखनऊ में विराजते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो लखनऊ है तो हम
1: ऐसी बातचीत तो बिल्कुल आपने सही कहा मनु जी, बहुत अच्छा बोला आपने, लखनऊ तो लखनऊ है और लखनऊ वालों की बात ही अलग है। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में तो नहीं मुरादाबाद में हैं। फिलहाल एक बढ़िया सा गीत लेते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं, उसके बाद जल्दी से लौट कर आएंगे तो फिर ये जो महफिल है इसको और अच्छे से सजाएंगे। शुभम जी हमारे साथ हैं, मनु जी हमारे साथ, तो आप कहीं मत जाइए, मेरा भी साथ आपके साथ ऐसे ही बरकरार।

0: एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने प्रोग्राम में सुना, और आज का ये जो प्रोग्राम है बेहद खास है क्योंकि इस प्रोग्राम को बहुत ही उम्दा खूबसूरत बना रहे हैं। हमारे साथ मनु जी हैं और साथ में शुभम भैया हैं, और शुभम जी से तो खैर हम पहली बार मुखातिब हो रहे हैं और वो स्टूडियो में भी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो भैया आपको अच्छा लग रहा है हमारे ऑफिस में आके? पहले
1: बहुत अच्छा लगा, खासकर वर्क कल्चर का बहुत अच्छा है, और संडे की छुट्टी आपने अपनी कुर्बान में रूपा करी, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: कोई दिक्कत नहीं है भाई, ऐसा है जब अपने जैसे कलाकार लोग मिलते हैं तो उनके लिए दिल से सलाम निकलता है क्योंकि एक कलाकार कोई कलाकारी पहचान।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: बिल्कुल सही बात
0: है ना सर
2: जी, बिल्कुल सही।
0: तो बस वही चीज है, और जब जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना वो ऑडियंस का प्यार चाहते हैं, और जब प्यार मिलता है तो कलाकार की खूबसूरती अपने आप बढ़ जाती है। क्यों?
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
0: चलिए तो पहले ये बताइए, आप पहले आप या पहले आप, मतलब पहले भैया आपसे शुरुआत करें। देखिए मनु जी से तो हमने बहुत कुछ सुना है और आज भी

0: नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ ना कुछ स्पेशल तो वो सुनाएंगी जब आए हैं तो, अपना चिट्ठा लेकर आते हैं वो पूरा। लेकिन हम सोच रहे हैं आप आए हैं तो हमारे लिसनर्स के लिए कुछ नया और बेहतर हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैं करता हूँ, और क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत तो थोड़ा सा खुशनुमा बनाए।
0: हाँ बिल्कुल, खुशनुमा ही होनी चाहिए भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल
1: करते हैं कि मतलब अर्ज करता हूँ कि ये किसने कह दिया होती है खुदकुशी अच्छी।
2: वाह,
1: ये किसने कह दिया होती है खुदकुशी अच्छी, हर एक बात ही देखी गई खरी अच्छी। ये किसने कह दिया होती है खुदकुशी अच्छी, हर एक बात ही देखी गई खरी अच्छी। और ये शेर और साथ में नसीहत के, घरों को करते हैं बर्बाद तो शुभम दोनों, घरों को करते हैं बर्बाद तो शुभम दोनों। गलत न मिस्त्री अच्छा न स्त्री अच्छी, गलत न मिस्त्री अच्छा न स्त्री अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगा कि मनु जी भी कुछ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने भी बहुत ही उम्दा बात की अधी बातों बातों में। मुझे लगता है कि कुछ कुछ शायरी मनु जी ऐसी होती है जो एकदम सच्चाई से हमें रूबरू कराती
2: है। बिल्कुल सही
0: है ना। और अब मैं चाहूंगा कि आप भी कुछ बेहतरीन पेश करें।
2: देखिए आज का दिन तो शुभम जी के नाम है।
0: बिल्कुल, लेकिन बीच में आप भी साथ देंगे तो ये महफिल में और चार चांद लग जाएंगे।
2: बिल्कुल सही,
0: मतलब
2: बिल्कुल सही आपने कहा।
0: जी।
2: मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले प्रोग्राम में एक नज्म के ऊपर बात हमारी,
0: हाँ हाँ, और वहीं से हमारे जो बातों का सिलसिला था वो खत्म हुआ।
2: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो मैं आनंद जी ये चाहता हूँ कि एक नज्म अपने दर्शकों के, अपने श्रोताओं के।
1: बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है।
2: और जाहिर सी बात है श्रृंगार में वियोग और संयोग दोनों ही होते हैं।
0: करेक्ट।
2: और जितने जुड़े हुए दिल खास होते हैं, टूटे हुए दिल उससे भी ज्यादा खास होते हैं। तो नज्म मैं हाजिर करता हूँ अपने श्रोताओं की पेश नजर है। इसका उन्वान है कभी तुमसे वफा की जुस्तजू। देखें किस तरह अपना सफर तय करती है नज्म। कभी तुमसे वफा की जुस्तजू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
0: वाह।
2: कभी तुमसे वफा की जुस्तजू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। तेरी हर एक अदा लगती थी प्यारी कभी तुझ में खुदा सा दिखता था। तेरी हर एक अदा लगती थी प्यारी कभी तुझ में खुदा सा दिखता था। तेरे एहसास की शिद्दत बला थी मैं खुद से भी जुदा सा दिखता था। कभी मरकज वफा की तू ही तू थी, कभी मरकज वफा की तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
0: क्या कहने,
2: देखें किस तरह रवानी है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि आप भी जिसके साथ ये कैफिया बीती हो वो इससे रिलेट करें।
0: बिल्कुल।
2: कभी पहरों निकल जाते थे यूं ही झलक पाने तेरी राहों में पल भर।
0: क्या कहने,
2: नजर मिल जाए तो वो कैफियत थी हलक में सांस थम जाती थी अक्सर। कभी पहरों निकल जाते थे यूं ही झलक पाने तेरी राहों में पल भर, नजर मिल जाए तो वो कैफियत थी हलक में सांस रुक जाती थी अक्सर। महज मंजिल सुकून की तू ही तू थी, महज मंजिल सुकून की तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मुझे कोई खजाना मिल गया हो कि जिन लम्हात में पाया था तुझको।
0: क्या कहने,
2: कहां चाहा उन्हीं गहराइयों से कि जैसे कर चाहा था तुझको।
0: क्या कहने,
2: मुझे कोई खजाना मिल गया हो कि जिन लम्हात में पाया था तुझको। कहां चाहा उन्हीं गहराइयों से कि जैसे टूट कर चाहा था तुझको। मेरा हासिल खुशी बस तू ही तू थी, मेरा हासिल खुशी बस तू ही तू थी मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है। मगर अफसोस अब कुछ भी नहीं है।
0: क्या बात,
1: क्या कहने, बहुत सुंदर,
0: खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल क्या बात है सर, आपने जो लास्ट में बोला ना मजा आ गया इसको सुनकर।
2: शुक्रिया।
0: नब्ज यही जो होती है, जो नज्म होती है सर उनकी बात ही अलग होती है सर, मतलब वो अंदर तक हमें चीजों से रूबरू करा देती है। बहुत ही बेहतरीन। शुभम भैया आप क्या अर्ज करना चाहेंगे इसी बात पे?
1: पहले तो मैं मनु जी को बधाई देना चाहूंगा, बहुत शानदार आपकी नज्म रही और जो टूटे हुए दिल की गूंज थी वो यहाँ तक आ रही थी।
2: शुक्रिया शुक्रिया दोस्त।
0: जब तक शुभम भाई तैयारी कर रहे हैं तब तक हम एक गाना सुन लेते हैं, छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद वी कम बैक। डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आज की जो महफिल है बहुत ही खूबसूरत है, उसमें तीन पत्ती का जो साथ है वो एक साथ मिल रहा है। शुभम जी यहाँ पर है, मनु जी है और मैं भी हूँ। देखिए मैं सिर्फ सुनने के लिए बैठा हूँ, एज ए ऑडियंस मुझे बहुत मजा आ रहा है, आई एम श्योर आपको भी आ रहा होगा। तो शुभम भैया कुछ सुनाने की तैयारी में थे, तो अब जरा चलते हैं सीधा उनके पास। जी सर
1: जी, मैं सुनाने को तो बहुत कुछ था,
0: पहले ये बताओ आपको मजा आ रहा है या नहीं? सॉरी मैं बीच में।
1: बिल्कुल आनंद जी, आपकी महफिल में रह के बिल्कुल आनंद आ रहा है।
0: क्या बात।
1: और मैं जब से मनु जी की अभी नज़्म सुनी है तो मैं उसी में खो गया था और मैं सोच में पड़ गया था कि क्या पढूं। तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे कि जब मनु जी ने इतना अच्छा आगाज कर दिया है कि उसके बाद क्या करेंगे, और जब आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। आप सभी श्रोताओं को,
2: बहुत अच्छा होगा,
1: श्रोताओं को मजा आएगा,
0: मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट।
1: तो मैं अर्ज करता हूँ कि आशना हो गया अजाब से भी,
0: वाह
1: आशना हो गया अजाब से भी,
0: जी जी
1: दोस्त अनजान था जवाब से भी।
0: क्या बात है।
1: आशना हो गया अजाब से भी, दोस्त अनजान था जवाब से भी, और शेर है कि मेरी कोशिश का वो नतीजा था, मेरी कोशिश का वो नतीजा था, चांद निकला था जो नकाब से भी, चांद निकला था जो नकाब से भी। और शेर है कि जो एक आशिक होता है उसका यही मोटिव रहता है कि उसे हासिल किया जाए, तो शेर उसी के लिए है कि कैसे हासिल उसे किया जाए, कैसे हासिल उसे किया जाए, मांग होती रही ये ख्वाब से भी, मांग होती रही ये ख्वाब से भी। और जब प्रेमी अपनी प्रेमिका का वर्णन करता है तो उसको श्रृंगार किस तरीके से देता है कि उसकी आवाज में तरन्नुम था,
2: वाह वाह वाह,
1: उसकी आवाज में तरन्नुम था, नर्म लहजा था वो गुलाब से भी, नर्म लहजा था वो गुलाब से भी। और शेर देखे कि जब उसका दिल टूट जाता है फिर क्या करता है कि पहले आशिक का हम शक्ल वो समझ,
2: वाह बात है,
1: पहले आशिक का हम शक्ल वो समझ, अब बुलाती है जी जनाब से भी, अब बुलाती है जी जनाब से भी। और एक दौर वो आता है जब आशिक बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसमें उसके लिए कहता है कि जिस दिन मिली थी आंखें ये, उनसे जिस दिन मिली थी आंखें ये, दिन में दिन था वही खराब से भी, दिन में दिन था वो खराब से, वही खराब से भी। और शेर है जिंदगी का निजाम है जारी, जिंदगी का निजाम है जारी, है हवा धूप से तो आप से भी, है हवा धूप से तो आप से भी। और शेर है कि जब शादियां होती है उसके लिए शेर है कि शादियों के निकलते मुहूर्त हैं, शादियों के निकलते मुहूर्त हैं, ज्योतिषों के लगे हिसाब से भी, ज्योतिषों के लगे हिसाब से भी। और शेर है के मकता है कि आस्तीनों में सांप देखे हैं,
2: क्या बात है,
1: आस्तीनों में सांप बैठे हैं, अपने अपने शुभम हिसाब से भी, अपने अपने शुभम हिसाब से भी। बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत अच्छी,
0: बहुत ही आनंद आया मुझे। और ये जो अपने नाम के साथ आप चीजों को ऐड कर रहे हैं ना, गजब लाजवाब
2: जी। आनंद जी इसे तखल्लुस कहा जाता है,
0: और क्या कहा जाता है?
2: तखल्लुस कहा जाता है।
0: उपनाम का मतलब क्या होता है?
2: ये उपनाम
1: होता है कायदे में, इसको पेन नेम कहा जाता है।
0: ऑलराइट,
1: जैसे धनपत सहाय मुंशी प्रेमचंद हो जाते हैं।
2: जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। और ये जो इन्होंने अपनी गजल
0: कलाकार पकड़ के लाए हो आप, मतलब
2: अरे ये मेरे
0: कहां छुपा के रखा था,
2: जानता था
0: अल्टीमेट हीरा,
2: बाकी ये गदर कर देंगे।
0: हाँ हाँ, नहीं नहीं, नो डाउट।
2: आनंद जी मैं,
0: एक तो इनका तलफ्फुज़ इतना बढ़िया है, इनकी आवाज इतनी लाउड है, तो इनके हिसाब से बड़ी मस्त लग रही है जो भी कर रहे हैं शेर व शायरी, सब कुछ बेहतर है।
1: शुक्रिया, बस आपकी जरा नवाजी।
2: तो आनंद जी, गजल के अरूज में एक बात ये आती है कि जहाँ से गजल शुरू होती है,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: उस पहले शेर को मतला कहते हैं।
0: वाह।
2: और जिसमें अपना ये उपनाम शामिल, पेन नाम शामिल किया जाता है आखिरी शेर में, उसे मख्ता बोलते हैं गजल की दुनिया में।
0: क्या बात है।
2: तो बस हालांकि सब जानते हैं लेकिन फिर भी कह देना,
1: अपने श्रोताओं का थोड़े से नॉलेज में इजाफा करना इसको कह सकते हैं हम।
2: हाँ हाँ,
1: और साथ ही साथ अगर मनु जी के साथ में रहने का यही फायदा है कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इसी बात में।
2: चार मिसरे रखता हूँ,
1: सुनाइए। अर्ज,
2: किसे हक है तेरी मर्जी में कोई भी दखल दे दे, किसे हक है तेरी मर्जी में कोई भी दखल दे दे, जो तू चाहे کرشمے کو حقیقت کا عمل دے دے اور بھلا تجھ سا کرم فرما سوا تیرے کہاں ہوگا, بھلا تجھ سا کرم فرما سوا تیرے کہاں ہوگا, کہ جنت کی رہائش ایک نیکی کا بدل دے دے, کہ جنت کی رہائش ایک نیکی کا بدل دے دے. اور چار مصرے یہ کہ خدا بھی, گاڈ بھی, بھگوان بھی, واہے گرو بھی تو.
1: کیا کہنے,
2: خدا بھی, گاڈ بھی, بھگوان بھی, واہے گرو بھی تو, ہماری کوششوں کے حوصلے کا دم شروع بھی تو.
1: کیا کہنے.
2: دراصل شبھم جی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو پہلا مصرہ ہے یہ جناب ساحل سحری نینی تالوی صاحب نے ہمیں دیا تھا جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ کہو آپ, کیونکہ ہم اس سمے وقت بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے, نیا نیا پدارپن ہوا تھا غزلیات کی دنیا میں. اور یہ میری بڑی خوش نصیبی ہے, استاد شاعروں کی فہرست میں آتے ہیں وہ, یعنی جیل سنگھ صاحب کے ساتھ میں انہوں نے نیشنل لیبل کے مشاعرے پڑھے ہیں.
1: کیا بہت اچھی بات.
2: تو مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک وقار کتنا بڑا رہا. تو انہوں نے جو یہ مصرع دیا تھا تو اس پر یہ چار مصرے ہوئے ہیں.
1: جی, اور اچھے ہوئے ہیں.
2: یہ جو بھی اس میں خاص ہوا ہے وہ میں ان کے اس مصرے کو دیتا ہوں, کیونکہ جب خاص چیز ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک خاص مقام بھی رکھتی ہے. نہایت ہی ایک خوبصورت چیز نکل کر آتی ہے کہ خدا بھی, گاڈ بھی, بھگوان بھی, واہے گرو بھی تو,
1: کیا بات ہے,
2: ہماری کوششوں کے حوصلے کا دم شروع بھی تو,
1: ویری نائس,
2: تیری مرضی سے ہوتا ہے یہاں ذرہ بھی سورج سا, بسا ہے مجھ میں تو ہی اور میرے روبرو بھی تو,
1: کیا کہنے,
2: اور میرے روبرو بھی تو, خدا بھی, گاڈ بھی, بھگوان بھی, واہے گرو بھی تو.
1: بہت سندر, قسم سے سر آپ نے تو چار چاند لگا دیے یہ بات بول کے. مطلب کچھ میں نے پہلے بھی کہا تھا شروع میں کہ کچھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مطلب شعر و شاعری, نظم, غزل, جو بھی چیزیں بنی ہیں وہ سب کچھ ہمیں ایک دم نا ریالٹی سے کنیکٹ کرتی ہیں. جیسے ہم آج کے یوتھ ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں نہیں پتہ ہیں, بٹ ابھی جب آپ کی یہ چیزیں سن رہے ہیں تو بڑی کلیئرٹی مل رہی ہے کہ ہاں یہ چیز یہ ہے اور یہ چیز یہ میسج دے رہی ہے.
2: آنند جی, اگر یہ بات جو آپ نے کہا ہے اگر ہمارے شروتاؤں تک پہنچ رہی ہے,
1: بالکل
2: ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے. دراصل کیا ہے کہ آج کل کا جو بہت فاسٹ ٹائم چل رہا ہے, بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگ ترجیح دیتے ہیں,
1: بالکل,
2: تو یہ ہوتا ہے کہ غزل جو ہے اس کا اپنا مقام ہے.
1: کریکٹ.
2: اور یہ بات ایک محسوس کرنے کی ہے کہ اس کا جو دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوٹ سکتی ہو. آپ اس میں ایموشنز کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس میں رشتوں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس میں خوشی کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس میں غم کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس میں ایون کے ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس میں ہر رشتوں کو جی سکتے ہیں. ماں کو جیا, منور صاحب کو دیکھیے,
1: بالکل,
2: کہ وہ ماں کے نام سے اتنے فیمس ہوئے کہ آج تک لوگ جو نے ماں کے دام سے جوڑ کر اس شاعری کے لیے جوڑ کر دیکھتے ہیں. تو یہی بات ہے, یہ چیز اگر شروتاؤں تک ہمارے پہنچ رہی ہے تو یہ ہماری بہت بڑی سفلتا ہے اپنے کاریکرم کی.
1: بالکل سر, بالکل پہنچ رہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ جتنے ہمارے لسنرز ہیں, جتنے بھی ہمارے شروتا ہیں, جو بھی ہمیں ینگ لوگ سن رہے ہیں, ان کو بھی یہ پروگرام ڈیفینیٹلی پسند آ رہا ہوگا. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اور میں اور شبھم جی مل کے کر رہے ہیں, یہی چیزیں جو ہمارے پروگرام کو بہتر سے بہترین بنا رہی ہیں. باقی شبھم اور سر کے پاس واپس لوٹ کر آئیں گے, ہم کچھ اور نئی چار چیزیں ان سے سنیں گے بہترین, اور کچھ نیا سیکھنے کو بھی ملے گا نو ڈاؤٹ. آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ, سنتے رہیے ایف ایم مراد آباد 89.6, آپ کے شہر کا اپنا سامودائک ریڈیو. رکتے ہیں ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کے لیے, اس کے بعد جلدی ملیں گے اس اسٹیشن آف دا نیشن پر.
3: کیا آپ سر درد, کمر درد یا گردن درد سے پریشان ہیں؟ اب آپ کی ہر نیورو سمسیا کا سمادھان ہے ڈاکٹر ابھی سنگھ کے پاس, جہاں ملتا ہے ایکسیڈنٹ کی چوٹ, مرگی, برین ٹیومر, ریڑھ کی ہڈی کی بیماری اور سلپ ڈسک کا وشیش علاج. ملاقات کریں گریس ہاسپٹل 4 to 6 PM, نئے مراد آباد ہمارے سینٹر پر دوپہر 1 to 2 اور شام 6 to 8 PM. ڈاکٹر ابھی نیورو کیئر سینٹر, سمپرک کریں 9548539705.
4: خبریں, اگر آپ اپنے خاص موقعوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں کچھ بہترین گہنے تو آج ہی آئیے اتسو جویلرز. یہاں آپ کو ملیں گے خوبصورت کندن, پول کی نقاشی اور ناگری پر وشیش چھوٹ.
3: ہمارے یہاں 25% ڈسکاؤنٹ ڈائمنڈ پر اور 100% ہال مارک جویلری کے ساتھ پرانے سونے پر 100% واپسی بھی کی جاتی ہے.
4: پتہ لائن پارک, پرکاش نگر چوراہا, مراد آباد. موبائل نمبر 7055070552.
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
6: में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
8: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
6: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है। हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया च्वालिन्स्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
6: टायर लो सोना जीतो।
7: क्या?
6: जी हाँ,
8: चावला टायर
6: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए।
8: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड अपोजिट मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
9: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430। नमस्कार, आपसे
1: जोड़कर देखते हैं तो यही बात है। ये चीज

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
3: स्किन, बाल, नाखून, समस्त चर्म रोग एवं एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सुविधाओं के लिए विजिट करें डॉक्टर ऋषि गोयल डर्मेटोलॉजी एंड एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी सेंटर, ऑपोजिट लवीना रेस्टोरेंट, कांट रोड, मुरादाबाद।
4: टायर लो सोना जीतो।
5: क्या?
4: जी हाँ,
6: चावला टायर
4: पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
6: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड,
7: अपोजिट
6: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
7: ऑफर वैलिड टिल 10th जून, TNC अप्लाई।
8: अरे वाह, गजब, बेहतरीन। तो श्रोता,

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, जहां आनंद के साथ आज की जो महफिल है वो बहुत ही एकदम धाकड़ वाली हो गई है भाई, क्योंकि यहां पर हमारा साथ दे रहे हैं शुभम जी, मनु जी, और लगातार कुछ ना कुछ नई नई बातें कर रहे हैं प्रोग्राम में। तो जो शेर व शायरी का माहौल बना हुआ है महफिल में बहुत ही बढ़िया, लेकिन बीच बीच में मजे की बात है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग नए नए शब्द, नई नई जानकारियां, और जो ये बता रहे हैं, जो ये सुना रहे हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब, हम चाहेंगे आप ऐसे ही हफ्ते भर में एक दो बार चक्कर लगाएं और कुछ नया सिखा कर जाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: आप बुलाते रहेंगे तो हम आते, आप बुलाते रहेंगे हम आते रहेंगे।
0: अरे शुभम जी, आपका तो बुलाते रहेंगे, वाई नॉट। और मनु जी तो खैर हमारे साथ जुड़े हैं ही, तो अब जो है पहले कौन शुरुआत करेगा, और क्या अभी हमारा लास्ट है, तो अब जाने से पहले कुछ अच्छा हमारे श्रोताओं के लिए जो आप चाहें।
3: फिर वही लखनऊ की, पहले आप आ गया,
2: उम्र हजार में ज्यादा फर्क नहीं है।
0: देखिए मुझे लगता है कि भाषा कोई भी उसमें तहजीब होनी चाहिए।
3: मैं जहां तक समझता हूं कि हाँ। ये जो हमारी बातचीत चल रही है इसे बोलते हैं अदब।
0: अदब
3: और अदब के मामले में जो लखनऊ है वो एक स्कूल है,
0: स्कूल है,
3: रामपुर एक स्कूल है।
0: एग्जैक्टली,
3: तो जाहिर सी बात है कि जो जहाँ की बात चलेगी वहाँ का जिक्र हमेशा होता ही
0: बिल्कुल, और वो हमारे अंदर भी प्रवेश कर जाता है, जिसे कह सकते हैं वो हम मतलब बैठे मुरादाबाद में होते हैं लेकिन पहुंच लखनऊ में जाते हैं। मजे की बात है। चलिए कोई नहीं, फिलहाल
3: छोटा सा याद आ रहा है भाई,
0: सर प्लीज अर्ज
3: के दिल में ही रहती है तस्वीरें यार, दिल में ही
2: रहती है तस्वीरें
3: यार, जब जरा नजरें झुकाई देख ली।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही
3: शेर कहे गए हमारे उस्तादों द्वारा।
2: और इसी शेर से याद आता है कि मुझे शेपर रसूल साहब का, कि मैंने भी देखने की हद कर दी, मैंने भी देखने की हद कर दी, वो भी तस्वीर से निकल आया।
3: क्या बात है, वाह वाह वाह,
0: गजब, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा शुभम जी आप आए, मनु जी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत ही आनंद आया, आई एम श्योर जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी बहुत आनंद आया होगा। तो अब जाने का समय हो रहा है, हमारे तमाम सारे श्रोता हैं जो चाह रहे हैं कि ये प्रोग्राम और ज़्यादा चले, लेकिन अभी इस प्रोग्राम को हम जो है यहीं पर समाप्त इसलिए करेंगे क्योंकि अगर जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे।
2: बिल्कुल
0: क्यों शुभम जी,
2: बिल्कुल
0: दोबारा भी तो बुलाना है यार, सारा पिटारा आज ही थोड़ी खुलवा लेंगे भाई।
2: सही बात,
0: तो शुभम जी फिलहाल मैं लेकिन चाहूंगा कि जाने से पहले आप कुछ चार शब्द हमारे लिसनर्स के लिए कहकर जाएं, कुछ बेहतरीन सा सुनाकर जाएं जो आपके लिए भी बेहतर हो और हमारे श्रोताओं के लिए भी।
2: मैं
0: और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा हमारे लिसनर्स।
2: बिल्कुल बिल्कुल, एफएम मुरादाबाद 89.6 में आके मुझे बेहद खुशी हुई, और आनंद जी से खास तौर पर मिलके जिस सादगी से आपने इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया, और साथ ही में कई बार क्या होता है जो एंकर होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बोल जाते हैं, इसमें क्रिटिसाइज इसलिए ऑडियंस उनको करती है कि जो हमारे जो मेन गेस्ट हैं उनको सुनने को नहीं मिल पाता, बट मैं इस चीज में आपकी तारीफ करूंगा कि आपने गेस्ट को टाइम दिया एक तो उसके लिए, और बहुत ही आपका बोलने का बहुत शानदार लहजा है, उसके लिए भी आपको मुबारकबाद मेरी तरफ से।
0: आप जैसे लोग आते हैं तो सीख जाते हैं यार, थोड़ा थोड़ा कुछ इनसे सीखा कुछ।
3: ये तो शुभम जी समझने की बात है कि हम जिनके साथ रूबरू हैं, जो हमारे आरजे हैं आनंद, उनका नाम ही आनंद है।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: और तो साथ में आनंद आ गया देखकर, इनसे मिलकर, इनके प्रोग्रामों के साथ अगर आनंद ना आए तो क्या बात है,
0: क्या बात है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल। तो जाते जाते मैं एक देशभक्ति के कलाम से इजाजत लूंगा सभी श्रोताओं से, कि
3: बहुत अच्छी बात है देशभक्ति,
2: क्योंकि देशभक्ति का माहौल भी मैं समझता हूँ होना चाहिए, देश प्रेम होना बहुत जरूरी है आज के समय में।
3: जी नहीं, बिल्कुल सही बात।
2: तो मतलब अर्ज करता हूँ कि एक तरफ गीता सजी है, एक तरफ कुरान है,
0: क्या बात है,
2: एक तरफ गीता सजी है एक तरफ कुरान है, ये मेरे हिंदुस्तान की दोस्तों पहचान है, एक तरफ गीता सजी है एक तरफ कुरान है, ये मेरे हिंदुस्तान की दोस्तों पहचान है। और हिंदुस्तानी आदमी कैसा है कि इवन महिलाएं भी, मतलब एक हिंदुस्तानी होने का क्या अर्थ है कि सर कटाता है मगर सर को झुकाता ही नहीं,
0: क्या बात है,
2: सर कटाता है मगर सर को झुकाता ही नहीं, काबिले तहसीन मेरे देश का इंसान है, काबिले तहसीन मेरे देश का इंसान है। काबिले तहसीन का अर्थ मैं बताता चलूं कि तारीफ लायक, काबिले तहसीन यानी तारीफ के काबिल। और शेर है कि चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे हिंदू हो कि मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई हो, ए वतन तेरे लिए हर एक ही कुर्बान है ए वतन तेरे लिए, हर एक ही कुर्बान है। और शेर है कि है हमारे खून की बेशक चमन में सुर्खियाँ,
0: वाह
2: है हमारे खून की बेशक चमन में सुर्खियाँ, देश की सेवा हमारी जिंदगी की शान है, देश की सेवा हमारी जिंदगी की शान है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ गीता सजी है, एक तरफ कुरान है। इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा FM रेडियो 89.6 के सभी श्रोताओं से, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और साथ ही आनंद जी, वेरी मच, जोरदार तालियां यार, आपने तो माहौल अलग ही कर दिया। मतलब मुझे तो लग रहा था मैं 26 जनवरी के दिन तो नहीं आ गया हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही अच्छा आपने सुनाया। और जाते जाते ये बड़ा हमारे श्रोताओं को अच्छा लगेगा और उनके लिए एक यादगार भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी आपने जो है बात कह दी।
3: नहीं, इसके साथ साथ एक चीज और बहुत अच्छी हुई है, जो इनका संदेश था
0: जी
3: वो कौमी एकता के लिए है, जो हिंदू है।
0: हाँ बिल्कुल, वो एक मैसेज भी था।
3: उसके साथ साथ मतलब अपने रिलीजियस को मानते हुए राष्ट्र सेवा सर्वोपरि का जो संदेश है, ये भी बहुत अच्छा। और इन्होंने जो काबिले तहसीन, जो तहसीन हैं, उसके जरिए इनके जो उस्ताद हैं वो भी तहसीन साहब हैं, तो उनको भी जिक्र कर लिया है।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तहसीन मुरादावादी साहब मेरे उस्ताद हैं, और मैं कहूँ कि मुझे शायरी का काका हरा उन्होंने ही सिखाया है, क्योंकि इससे पहले मैं हादसे में लिखता था और कुछ भी लिखता था। मैं कहूँगा गालिब साहब का एक शेर है कि बकरा हूँ जुनून जुनू में क्या क्या कुछ कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो समझ नहीं थी, उम्र कम थी, 10-11 साल में पिछले जो भी सीखा हूँ ये सब उन्हीं की मेहरबानी है। और
3: बेहतर है, बहुत अच्छी बात है।
2: और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे मनु जी का लगातार सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। जब भी मैं कहीं अटकता हूँ तो मनु जी को ही याद करता हूँ कि भाई यहाँ अटका हूँ।
3: ये तो मोहब्बत है भाई आपकी,
2: तो
3: अदरवाइज तो हम सीखते हैं आपसे।
2: नहीं नहीं, तो ये है।
0: थैंक यू शुभम भाई, बहुत बढ़िया लगा, और मैं आपको दोबारा ज़रूर इनवाइट करूंगा, आमंत्रित करूंगा, और मेरे श्रोताओं को भी इंतज़ार रहेगा और मुझे भी इंतज़ार होगा। मनु जी, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे पता है श्रोता बहुत आनंद ले रहे हैं, लेकिन हम दोबारा के लिए भी चीज़ें बचा के रखना चाह रहे हैं। तो मनु जी, आप जाते जाते कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइनें, कुछ अर्ज़ करना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे तमाम मुरादाबाद की जनता को?
3: आनंद जी, जैसे आपने कहा संदेश की बात है, एक शायर अपने कलाम से ही
2: बिल्कुल
3: कोई भी बात कह सकता है, तो वही कहने की कोशिश है। देखिए, आपने सुना होगा कि ताली एक तरफ एक हाथ से नहीं बजती है।
2: करेक्ट, बिल्कुल।
3: तो आप इस चीज को नजर में रखें और 2-3 मिसरे देखें।
2: बिल्कुल
3: शुभम भाई, आप भी देखें।
2: स्वागत है।
3: खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है।
2: क्या कहने,
3: खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है, किस तरह की चाहिए आवो हवा दोनों पे है। और तू है बीमारे तमन्ना और मैं बीमारे इश्क, आ बराबर बैठ दोनों की दवा दोनों पे है।
2: क्या कहने, बहुत।
3: आ बराबर बैठ दोनों की दवा दोनों पे है। और कौन किसके साथ कितना बावफा है दोस्तों, कौन किसके साथ कितना बावफा है दोस्तों, बावफाई बेवफाई मसला दोनों पे है।
2: क्या कहने, क्या कहने,
3: मसला दोनों पे है। और इस कदर भी टूट कर, इसे ताईद भी समझ सकते हैं, इस कदर भी टूट कर क्या चाहना इस राह में, इस कदर भी टूट कर क्या चाहना इस राह में, निस्बतें किसकी बदल कर हूं जुदा दोनों पे है।
2: क्या कहने,
3: खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है, किस तरह की चाहिए आबो हवा दोनों पे है। और बस निभाने के लिए या खुशनुमा कर लीजिए, देखिए परिवारों पे भी ये चीज़ें अक्सर रही हैं, बस निभाने के लिए या खुशनुमा कर लीजिए, आपसी रिश्तों का बेहतर सिलसिला दोनों पे है।
2: क्या कहने, क्या
3: आपसी रिश्तों का बेहतर सिलसिला दोनों पे है। और ये गजल का शेर गजल में ज़रूरी हो जाता है, तो देखें कि झुक गई दोनों तरफ दोनों निगाहें देखकर,
2: वाह,
3: झुक गई दोनों तरफ दोनों निगाहें देखकर, खानदानों की विरासत मरहबा दोनों पे है।
2: क्या कहने,
3: खानदानों की विरासत मरहबा दोनों पे है। खूब तर तो है मगर ये फैसला दोनों पे है, किस तरह की चाहिए आबो हवा दोनों पे। तो साथियों श्रोतागणों से मैं अपने कहना चाहता हूँ कि केवल ये इंतज़ार ना करते रहें कि पहले आप, ये एक अच्छी बात तो है, लेकिन इसके पीछे एक चीज़ ये भी छुपी हुई है कि कई अच्छे मौक़ों पर पहले आप की वजह से हम लोग इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, तो हमें वो दूरी कम करनी है और हम ऐसे जहाँ हमारे रिश्ते बसते हों, जहाँ हमारे संबंध बसते हों, जहाँ हमारे लिए एक अच्छी बातें होती हों, उसमें पहल करने में कभी चूकना नहीं चाहिए। और फैसला दोनों पे होता है तो निश्चित रूप से सामने से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ऐसा मेरा मानना है।
0: क्या बात है, क्योंकि विश्वास पर आपका मानना ही हमारा मानना है। आपने जो है मेरी बातों को एकदम यहीं पे प्रोग्राम को टीएन कर दिया है। थैंक यू सो मच शुभम एंड मनु जी, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं एफएम मुरादाबाद और आरजे आनंद में। उम्मीद करता हूँ श्रोताओं आपको ये प्रोग्राम डेफिनेटली पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके जरूर बताना। फिलहाल लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, छोड़ के जा रहा हूँ एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। जल्दी होगी आपसे मुलाकात और फिर से लेकर आएंगे शुभम जी को साथ में मनु जी को। तब तक के लिए कीप लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6, सुनते रहिए आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
4: आज ब्लू है पानी पानी पानी।
5: अरे भाभी, आज बड़ी एक्साइटेड हो रही हो।
4: हाँ छोटी, आज हम सब समुंदर की लहरों और वाटर स्लाइड का मजा लेने प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम मुरादाबाद जा रहे हैं। खूब सारी मस्ती, खाना पीना, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत कुछ।
6: प्रेम वंडरलैंड एंड वाटर किंगडम, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: चतुरा एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: समय से पहले जन्मे शिशुओं की विशेष देखभाल, कम वजन वाले नवजात शिशुओं का उपचार, जन्म के बाद सांस लेने में तकलीफ, पीलिया, संक्रमण एवं अन्य गंभीर नवजात समस्याओं का विशेष इलाज, अत्याधुनिक NICU सुविधाओं के साथ सुरक्षित देखभाल, नवजात शिशुओं के लिए रेडियन हिंट वार्मर, न्यू नेटल वेंटिलेटर जैसी आधुनिक सुविधाएं के डॉक्टर आकाश सिंघल द्वारा नवजात शिशुओं के लिए फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7060022430।
1: टायर लो सोना जीतो।
2: क्या?
1: जी हाँ, चावला टायर पर योकोहामा टायर्स के 4 टायर्स खरीदने पर पाइए गोल्ड कॉइन जीतने का मौका। जल्दी कीजिए,
3: विजिट योकोहामा क्लब नेटवर्क, चावला टायर्स, कांट रोड
0: अपोजिट
3: मधुबनी पार्क, मुरादाबाद। कॉल 9412211111।
0: ऑफर वैलिड टिल 10th जून। TNC अप्लाई।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: लेकर यार नाटक लेकर नचना यार नचना।
1: अरे अरे छोड़ो यार, मैं नहीं नाचूंगा वाचूंगा।
2: ओए पुत्र नचना, पहनती सगाई चे तो पहनो नचना ही पहनता है।
1: हाँ हाँ, तो फिर बड़े भैया को नचाओ ना।
3: क्यों, तेरी भी तो पहन है।
4: गल चंगी बोली।
5: ओ कम ऑन शेखर, नाचो ना।
1: नहीं नहीं, मुझे नहीं नाचना।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हरित अभियान को मिल रहा है नया विस्तार। पौधारोपण, अमृत वन और जन भागीदारी से प्रकृति को संवारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। 13 रामसर साइट और जैव विविधता का संरक्षण करते हुए यूपी में विगत 9 वर्षों में रिकॉर्ड 242 करोड़ से अधिक पौधारोपण किया गया। इस बार भी पर्यावरण दिवस को बनाए खास, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को जन आंदोलन बनाए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।